0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हर्षवर्धन का बांसुरी पर बजाया राग ललित। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
3: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
4: People to people connect.
1: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के

आंतरिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुराधा पौड़वाल और सोनू निगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन, और अब सुनते हैं भाई त्रिलोचन सिंह रागी की आवाज़ में ये शब्द। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे ये शब्द, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत, आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और इसी भजन के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग।

चैतन्य महाप्रभु का नाम उनके माता पिता ने प्रेम से विशंभर रखा था। माता पिता प्रेम से उसे निमाई कहते थे। निमाई को पढ़ने में बहुत रस आता था। 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ डाला। पिता अपने पुत्र की चतुराई सुनकर बहुत खुश हुआ करते थे और सोचते थे कि निमाई को बड़ा विद्वान बनाएंगे, पर होने के आगे किसका वश चलता है। एक दिन अचानक उनके पिता को तेज ज्वर आया और वो चल बसे। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ को देखकर निमाई ने कम उम्र से ही परिपक्वता को धारण कर लिया। उन्होंने अपने साथ साथ माँ को भी संभाला। व्याकरण के साथ साथ अब उन्हें बहुत सी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो गया था। उनके ज्ञान की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। लोग उन्हें अब निमाई जी कहते थे। निमाई के बहुत गहरे मित्र थे रघुनाथ जी। रघुनाथ जी भी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। इन दिनों वो एक ग्रंथ लिख रहे थे। उस ग्रंथ में रघुनाथ जी बेहद मेहनत कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब ये ग्रंथ लोगों के सामने आएगा तो उनकी विद्वता की चर्चा अवश्य होगी। तभी कहीं से उन्हें ये पता चला कि उनके मित्र निमाई जी भी उसी विषय पर एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ये सुनकर रघुनाथ जी निमाई जी के घर पहुंचे और बोले, मैं न्याय पर एक ग्रंथ रचना कर रहा हूँ, क्या तुम भी न्याय पर कुछ लिख रहे हो? रघुनाथ जी की बात सुनकर निमाई जी मुस्करा कर बोले, अरे रघुनाथ जी, मैं कहाँ विद्वान हूँ। विद्वान तो आप हैं जो ग्रंथ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सुनकर रघुनाथ जी बोले, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कृपया मुझे बताएं कि आपने ग्रंथ में क्या लिखा है। निमाई जी मना करते रहे, लेकिन जब रघुनाथ जी किसी तरह नहीं माने तो वे बोले, अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, सुन लेना, पर अभी मैं गंगा जी की ओर जा रहा था। रघुनाथ जी बोले, ग्रंथ को भी साथ ले लीजिए ना, नाव पर सैर करते हुए सुना देना। रघुनाथ जी की विकलता और अधीरता देखकर निमाई बोले, ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने ग्रंथ

को ले लिया और गंगा जी की ओर चल दिए। एक नाव में बैठकर निमाई रघुनाथ जी को तन्मयता से अपना ग्रंथ सुनाने लगे। निमाई जी जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते जाते वैसे वैसे रघुनाथ जी का चेहरा फीका पड़ता जाता। आखिरकार रघुनाथ जी अपने आवेगों पर काबू न रख पाए और बिलक बिलक कर रोने लगे। ये देखकर निमाई जी दंग रह गए। उन्होंने अपने ग्रंथ को एक ओर रखा और रघुनाथ जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात है मित्र, रो क्यों रहे हो? रघुनाथ जी बोले, निमाई जी, मैंने अथक प्रयासों के बाद न्याय पर एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन तुम्हारी अवधारणाओं और विचारों के आगे वो कुछ भी नहीं है। मित्र की बात सुनकर निमाई जी मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? इसके बाद उन्होंने झट अपना ग्रंथ गंगा को समर्पित कर दिया और बोले, ये तो मात्र मेरे लिए रचित एक ग्रंथ है, मित्र के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। निमाई जी का त्याग देखकर रघुनाथ जी दंग रह गए और उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, मित्र तुम महान हो और तुम्हारी महानता को अनेक पीढ़ियां याद रखेंगी।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। चिंतन में आपने सुना है चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस के बालकांड का भाग 55।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बालकांड का भाग 55। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में

0: घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
2: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
1: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a Uniform Civil Code bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incident.

इसी के साथ आज का संगीतिका कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। संगीतिका कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ की आवाज़ में भजन। तबले पर संगत कर रहे थे सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गुनगुनाती सुबह ने दस्तक दे दी है। बहुत ही सुहानी सुबह है और एक नई शुरुआत, एक नए दिन की, और यूँ कह के अपने जीवन में एक और पन्ने को लिखने की और इस कार्यक्रम को भी सुनने की। जी हाँ, आज फिर इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत होंगे और बहुत सारी बातें आपसे करने का मन हो रहा है, पर बातें करेंगे तो कैसे चलेगा, गीत भी होने चाहिए। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत हेमलता की आवाज़ में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और गीतों भरी गुड मॉर्निंग में एक और प्यारा सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में सुनते हैं।

बहुत ही प्यारा गीत सुरीला सा, अभी तो जी लेने फिल्म से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग तो आप सबकी भी हो ही गई हो गई, ऑफिस जाने की तैयारी शुरू हो गई होगी, जो भी जिस काम को करता है उस काम में लग गया होगा, और जो नाइट शिफ्ट में रहते तो उनके लिए हम क्या ही कह सकते हैं, उनकी सुबह तो बाद में ही होगी। और बहुत सी बातें तो हो ही रही हैं, गीत भी चल रहे हैं, और बहुत सी बातें हमारा दिल कहता है कहने का कि आपकी भी दिन की जो शुरुआत है बहुत अच्छी हो, बल्कि पूरा दिन अच्छा जाए, और एक और पॉजिटिविटी के साथ आप उठें और अपने काम को करें, और क्यों कहें शाम के वक्त कि वाकई दिन सुहाना था। और इस दिन की जो शुरुआत है बहुत प्यारे प्यारे गीतों के साथ, आप जो सुन रहे हैं उसके साथ हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई आप लोगों से मैं बात कर पा रही हूँ और प्यारे प्यारे गीत सुन रही हूँ, बहुत ही सुरीले कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि अब कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त भी आ चुका है, और मुझे यानी शोभा को इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। पर जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा गीत आपके इंतज़ार में है। और दोस्त, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर सुबह आप कितनी सुहानी हो कि कोई भी गम आपको याद ना आए, और बहुत ही खुशियाँ हों, नया दिन यूँ कहें नई शुरुआत लेकर आए, और बहुत ही प्यारा पॉजिटिवली आप जाएं और सब काम आपके होते जाएं। तो बस इस तरह से आपके सब काम होंगे और आप एक ऊर्जा से भरे होंगे तो वाकई दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इसी दुआ के साथ मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पर जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा गीत आपके इंतज़ार में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घ कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने

0: नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
7: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे। एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार

0: and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leave 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे, उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: असम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि असम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक्किद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिस

0: इसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के ज़ुमरे से ममनू के ज़ुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमरीका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर ज़रूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात घपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को ख़त्म कर दिया है जिनका सबूकदोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने ज़रई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। ज़रई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियां, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वज़ीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि ज़रई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से ज़रई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दतकार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ारत ख़ारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि मुतहद अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहद अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहद अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल जरूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं, जिनकी मजमूई मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहद अरब अमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर ज़रूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: भदोही ज़िले में सबसे ज़्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मिर्ज़ापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद ज़िलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय महकमाए मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरक़ी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो रोज़ा मुज़ाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुज़ाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मजकूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आज़म के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा अब्राहिम मुआहिदे पर मबनी हैं। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मजकूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेज़ी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीज़न में 400 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुँचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी 6 सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है। CBSE की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल मजमू तौर पर 85.2 2-0 طلبہ کامیاب ہوئے، لڑکیاں آگے رہیں۔ تمل ناڈو میں 144 ممبران کے ساتھ وجے

0: अक्सरियत साबित की। इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाये की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज अभय रुस्तम सोपोरी से संतूर पर राग बसंत मुखारी। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे अभय रुस्तम सुपोरी से संतूर पर राग बसंत मुखारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। कर्मचारी किसी भी संगठन की मानव पूंजी होते हैं। मानव पूंजी उन कौशलों का समूह है जो अपने प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं, जिससे बाजार में आपका महत्व बढ़ता है। तकनीकी प्रगति, हाइब्रिड कार्य मॉडल और वैश्वीकरण के कारण मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR अब कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। बदलते औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव संसाधन की भूमिका अब केवल प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक हो गई है। एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय कार्यबल विकसित करना किसी प्रतिस्पर्धी के लिए प्रौद्योगिकी खरीदने या पूंजी जुटाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। HR न केवल प्रतिभाओं का प्रबंधन करते हैं, बल्कि व्यवसाय की सफलता के लिए संस्कृति, प्रौद्योगिकी और कार्यबल को संरेखित करने की भूमिका निभाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। बदलता इंडस्ट्री इकोसिस्टम, टैलेंट से ट्रांसफॉर्मेशन तक। द एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लिमिटेड में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री अमित सिंह बेदी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
2: अमित सिंह बेदी जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्ते दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को बुलाया इस प्रोग्राम में। आई फील वेरी ऑनर्ड, और जो भी मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन साझा कर पाऊंगा मेरी खुशकिस्मती होगी, और जो भी मैं हेल्प कर पाऊँ सुनने वालों का इस माध्यम से, मेरे लिए तो यही बड़ी सौभाग्य की बात है।
2: आपका एक लंबा अनुभव है, आप 22 साल से मल्टी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने कई कंपनियों में काम किया है। अब जबकि भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए दीर्घकालिक योजनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि उद्योगों का विकास, व्यवसाय की वृद्धि और उसके लिए आवश्यक योग्य लोगों की आवश्यकता किस तरह की है, और उसके लिए किस तरह के एक इकोसिस्टम की जरूरत है, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में, वैज्ञानिक संस्थानों में या औद्योगिक संस्थानों में?
3: तो दिलीप जी, अगर हम बात करें, काफी अरसे से हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि भारत देश में पॉपुलेशन काफी है, टैलेंट काफी है, बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास, हमारे देश में क्वालिफाइड टैलेंट है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग लग रहे हैं, हमारे यहाँ कई कई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कई कई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बट हमारे पास पॉपुलेशन में वो टैलेंट की अवेलेबिलिटी होना कि जो वो कार्य कर सके, वो चीज़ एक डेफिनेटली एक सोचने का विषय है। अगर आप देखें हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से वो एक लक्ष्य लेके चल रही है विकसित भारत का 2047 तक, और जिसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रही हैं, इंस्टीट्यूट्स बना रही हैं, तो अकेली गवर्नमेंट या कोई भी केंद्रीय सरकार या स्टेट सरकार नहीं वो लक्ष्य प्राप्त कर सकती जब तक हम सब उसके साथ जुड़े ना। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आज की डेट में और आने वाली तारीखों में किस टाइप की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से हमें उस शिक्षा की तरफ जाना है और अपने आप को तैयार करना है। अगर आज की डेट में आप बात करेंगे, डेटा एनालिटिक्स की बहुत बात हो रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ये बहुत बड़े विषय हैं, तो उसमें हमें समझना है कि हम आज उसमें क्या कर सकते हैं, जो आज का नई जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, उसमें उसको क्या शिक्षा लेनी है, क्या अपने आप को तैयार करना है, वो जानना जरूरी है और उस लक्ष्य के लिए काम करना जरूरी है। और आज की इंटरनेट की दुनिया में इतना कुछ अवेलेबल है, वो कहते हैं ना इंटरनेट इज अ ओशन ऑफ नॉलेज, बट आपको पता होना चाहिए उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। तो इस विषय में मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आज की पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो जाए हो उसको ढंग से स्टडी करे, रादर देन जो टाइम स्पेंड करती है आज की डेट में सोशल मीडिया पे, उसको सही यूज करे नॉलेज के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में भी काफी नॉलेज है। तो अपना रुझान नॉलेज और लर्निंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे और जाने की कोशिश करें कि आज की डेट में क्या नए विषय चल रहे हैं।
2: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लोग नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, तो जो नौकरी देने की क्षमता उसी में आ सकती है कि जो पहले अपना एक आधारभूत संरचना का

0: विकास कर ले, जो उद्योगों का विकास करे, स्थापित करे, उसे रन करे, तभी वो किसी और को इंगेज कर सकता है अपने यहाँ। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि आपका तो बहुत पुराना अनुभव है, बड़ा अनुभव है आपका, और आपने देश विदेश की कई कंपनियों से आप जुड़े रहे हैं। वर्तमान में जो आप जिस कंपनी के मुख्य प्रबंधक हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो चीजें होती है, उसमें आप लोग जब किसी प्रतिभा का चयन करते हैं अपने यहाँ के विभिन्न विभागों के लिए, तो उसमें किस तरह के पहलुओं पर आप गौर करते हैं और क्या क्या बातें महत्वपूर्ण मानते हैं किसी को कंपनी में जुड़ने के लिए?
1: दिलीप जी, अगर देखा जाए तो काफी टाइम से, काफी सालों से हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी को हायर कर रही होती है, वो एक्सपीरियंस देखती है। आज भी एक्सपीरियंस देखा जाता है कि वो वही एक्सपीरियंस, वही स्किल सेट लेके आ रहा है जो हमें अपनी करंट जॉब में करवाना है। बट इसके अलावा हमारी कंपनी द एग्जीक्यूटिव सेंटर और हमारी जैसी काफी कंपनीज जो आज की डेट में काफी डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, वो सिर्फ आज की जरूरतों को ही नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि जो बंदा हम हायर कर रहे हैं, वो जब हम आगे ग्रोथ करेंगे अगले 3 या 5 साल में, तो ये बंदा उस चीज के लिए भी रेडी है कि नहीं, उसमें वो लर्निंग कर्व है कि नहीं। तो एक्सपीरियंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अलावा हम देखते हैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है नई चीजों को जानने का, नई चीजों को सीखने का और उसको अमल करने का, अपने आप को अडेप्ट करने का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम हमेशा अपने कैंडिडेट्स में देखते हैं जब भी हम हायर करते हैं द एग्जीक्यूटिव सेंटर में।
0: चलिए, बहुत अच्छा। जो टैलेंट एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट की बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उस शैक्षणिक संस्थान ने अपने यहाँ के जो छात्र है उसको किस तरह से एक प्रारूप दिया, किस तरह से विकसित किया है नॉलेज में। तो जैसे कि आपकी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, मुख्य रूप से ये कंपनी किस तरह के कार्यों से जुड़ी होती है, और इस तरह के कार्यों में हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ की एक बड़ी आबादी है, लोगों को रोजगार की तलाश है, तो इस तरह के कार्यों में रोजगार के अवसर क्या हो सकते हैं या होते हैं?
1: तो अगर आप देखें, जो हमारी कंपनी है द एग्जीक्यूटिव सेंटर, वो को वर्किंग या फ्लेक्स वर्क स्पेस में की इंडस्ट्री में है, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता था, कोविड से पहले स्पेशली या उससे भी काफी अरसे पहले, कंपनीज हमेशा अपना एक स्टैंड अलोन ऑफिस लेती थी। बट जिस हिसाब से कंपनीज को और जिस हिसाब से ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है और चेंजेस आते हैं, तो कंपनीज को भी यह आभास हुआ है कि अपने फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि को वर्किंग या फ्लेक्स वर्क स्पेस ले लें। तो हमारा जो कंपनी है द एग्जीक्यूटिव सेंटर, हम फ्लेक्स वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जिसमें से अगर हम देखें हमारा क्लाइंटल 95% मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अपने ऑफिस हमारे सेंटर में बनाते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे यहाँ मोस्टली हम टैलेंट लेते हैं, वो हम लेते हैं ऑपरेशंस का, हॉस्पिटैलिटी का और अपना इंगेजमेंट टीम का। तो वो टीम जो क्लाइंट्स का जितने भी नीड्स होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो फ्लोर पे या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, उन सबको पूरा करते हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारा कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट है, और तकरीबन हम 1000 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, हम तो 1000 से ज्यादा टीम मेंबर्स हम बुलाते हैं उनको।
0: निश्चित रूप से इस तरह के जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें रोजगार के विभिन्न अवसर भी होते हैं, जैसे कि आपने चर्चा की, आजकल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात होती है, हॉस्पिटैलिटी की भी मैनेजमेंट है, टूर मैनेजमेंट है, और अभी मुझे इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से जुड़े कुछ कंपनियों के मालिकों का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला, और हमें भी और हमारे सुनने वालों को भी पता लगा कि एक्चुअली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो बड़े गेम्स होते हैं, तो उसमें क्या क्या तरह के काम होते हैं, क्या क्या उसमें भी लोग एम्प्लॉयड है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, और उसमें भी वो इंगेज होते हैं।
1: दिलीप जी, आप ताज्जुब होंगे कि जिस हिसाब से देश विकसित हो रहा है और जिस हिसाब से स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। अब उसके अलावा आप देखिए आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अब आज की डेट में जो पहले हॉस्पिटल होते थे और आज के हॉस्पिटल में आप देखिए बहुत अंतर आ चुका है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, तो हमारी जो जनरेशन है उसको ये जानना का जरूरी है कि कौन सी नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं और क्या क्या चल रहा है, जिसके हिसाब से उस मुताबिक अपने आप को ढाल सकें, अपने आप को तैयार कर सकें फ्यूचर के लिए। तो अगर आप इवेंट्स की बात करें, आज की डेट में आप देखिए कितने बड़े बड़े सिंगर्स और यू नो म्यूजिशियंस इंडिया आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। अब सिर्फ सीमित नहीं हो रहे सिर्फ मेट्रोस के लिए, छोटे छोटे शहरों में भी जा रहे हैं। तो देश के लिए काफी अच्छा मौका है कि हम उस क्षेत्र में अपने टैलेंट को तैयार करें।
0: आपने इशारा किया कि देश को भी चाहिए कि एक टैलेंट विभिन्न क्षेत्रों के लिए तैयार करे, तो यहाँ बात होती है एक प्रबंधन शिक्षा की। तो जो भारत में जो प्रबंधन शिक्षा है, ये आपको चूंकि अभी तो विश्व के मुकाबले जाने की कोशिश कोशिश कर रहा है, क्योंकि

0: विश्व के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो इसमें बहुत आगे हैं, खास करके जो NIRF के रैंकिंग की जो या इंटरनेशनल रैंकिंग की बात होती है। तो भारत में प्रबंधन शिक्षा के लिए, आपको विकसित होने के लिए, विश्व स्तर तक आने के लिए, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कुछ और चीजें की जानी चाहिए, या मतलब जरूरत है कि इस दिशा में भी कार्य होना चाहिए उच्च स्तर पर?
1: तो सबसे पहली बात तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारी सरकार जो है विभिन्न विभिन्न लेवल्स पे ये काम कर रही है, चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। हमें ऐसे इंस्टीट्यूट डेवलप करने हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए। साथ ही साथ हमारा जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनको भी ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिल के काम करना चाहिए कि जो जान सके कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है कि यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स अपने हिसाब से जो उनको पता लगता है वो उस हिसाब से प्रोग्राम को डिज़ाइन करती है। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसको बीच में कोई लाने के लिए कोई माध्यम और ज़्यादा बड़े स्तर पर होने चाहिए जो समझ सके कि आज की ज़रूरत को और आने वाले समय की ज़रूरतों को उस हिसाब से अपने मॉड्यूल्स, अपने प्रोग्राम्स, अपनी ट्रेनिंग्स तैयार की जाए, इंटर्नशिप लेकर आया जाए। जैसे कंपलसरी इंटर्नशिप होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो नव युवक है जब वो पढ़ाई करके निकलता है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल सके। तो उससे क्या होगा, उसकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, उसको भी समझ आएगा। जो वो अभी तक सोचता आ रहा था कि कंपनीज में क्या होता है, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाएगा जब वो इंटर्नशिप या ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जाएगा।
0: आप मुख्य अधिकारी हैं, मानव संसाधन अधिकारी हैं, जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। आपने बात की कि स्कूल एजुकेशन की भी किस तरह से मैनेजमेंट पे होना चाहिए। आजकल पढ़ा ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी जो है उसमें पेशेंस की भी कमी है। वो जो है थोड़ा चाहती है कि जल्दी से कोई अच्छा पैकेज मिल जाए, कुछ ये हो जाए। तो अंत में हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो युवा हैं, जो शिक्षा में तो जुड़े हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कई बार अच्छे पैकेज न मिलने से या अच्छे अवसर न मिलने से हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: इसको मैं दो तरीके से लेता हूँ। अगर आपके पास संसाधन है तो मैं तो हर नवयुवक को, हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को यही कहता हूँ कि आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं वो करिए। और फिर देखिए, सारी ज़िंदगी नौकरी करनी है, सारी ज़िंदगी कमाना है, तो पहले अपने आप को तैयार करिए उस चीज़ के लिए। बट अगर हम जिस देश में रह रहे हैं, हर किसी के पास वो संसाधन नहीं होते हैं, ये भी एक सच्चाई है जिससे हम परे नहीं रह सकते। तो अगर आपको लगता है कि जो भी आपके हालातों की वजह से अगर आपको कोई नौकरी लेनी पड़ रही है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई मत छोड़िए, अपनी लर्निंग मत छोड़िए। और मतलब आज ये बात करते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज की डेट में इंटरनेट पर इतना कुछ अवेलेबल है, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे से मिल रही है, काफी चीजें आपको फ्री भी मिल रही हैं, काफी कुछ है। मैं कहता हूँ ना, बार बार मैं ये सबको, नई जनरेशन को कहता हूँ, इंटरनेट इज अ ओशन ऑफ नॉलेज, यू नीड टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट। तो आपको पता होना चाहिए वो नॉलेज लेनी कैसे, तो अपनी पढ़ाई मत रोकिए। तो
0: अच्छा,
1: अगर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैंने जॉब करनी शुरू की थी तो उसके 6 साल तक मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। आज की डेट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को अपडेट रख सकूँ। और यही हम जो हम बात कर रहे हैं ना कि आज की डेट में क्यों हमारा टैलेंट बाहर देशों में जाता है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज की वजह से जाता है। और इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें अपनी नॉलेज पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको किसी तरह किसी तरह बढ़ाते रहना चाहिए।
0: बहुत अच्छा। मैं खुद देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। आपने XLRI जमशेदपुर जैसे माननीय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट HRM में लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट लिया है सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और सरदार पटेल कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट से भी किया है। तो निश्चित रूप से रुकना नहीं है, बल्कि ज्ञान अर्जित के जो प्रयास है, आगे बढ़ने के जो प्रयास है, वो लोगों को करते रहना चाहिए, युवाओं को करते रहना चाहिए। श्री अमित सिंह बेदी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े, खास करके जो प्रतिभा का जो विकास है, प्रतिभा का जो चयन है, और उन्नत व्यवसाय और उद्योगों के विकास में किस तरह की प्रतिभा की आवश्यकता है और उसको किस तरह से एक युवा को स्वीकार करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, जो आपने मेरे को यहाँ बुलाया और मौका दिया, एक अवसर दिया अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बदलता इंडस्ट्री इकोसिस्टम, टैलेंट से ट्रांसफॉर्मेशन तक, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थे द एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लिमिटेड में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री अमित सिंह बेदी, और भेंटकर्ता थे दिलीप झा। अतीत में मानव संसाधन निर्धारित नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करते थे और सरल मापदंडों पर नजर रखते थे, जैसे नियुक्त कर्मचारियों की संख्या या दिए गए प्रशिक्षण के घंटों की संख्या। पर अब प्रबंधन के नए सिद्धांत केवल संख्याओं और अनुपालन पर नहीं, बल्कि परिणामों और नतीजों पर

0: ध्यान केंद्रित करने की मांग करते हैं। मानव संसाधन पेशेवरों को भी ये देखना चाहिए कि कर्मचारी अपने द्वारा सीखे गए कौशल का उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: उद्योग पत्रिका।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बिच या सोशल मीडिया से अगर उसका कोई भी धीर भावें वह कंपनी है या कोई यूजर है, अगर उसका कोई इस तरीके से गल सामने आती है कि उसका मिसयूज किया गया है, उसकी परमिशन के बिना उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसका जो डाटा है उसको लीक किया गया है, तो सरकार उस पर जरूर एक्शन ले सकती है। इसलिए असं देखते आवेंगे जो भी असी कोई किसी सॉफ्टवेयर से या किसी सोशल मीडिया आई डी से जो असं आई डी बना लगते हैं तो एक एग्रीमेंट ही आता शुरू से, लोग असं पढ़ते नहीं, असं यस यस कर देने हैं, लेकिन उसमें पढ़ना जरूर चाहिए। बेसिकली अपना साडा निजता का ही एग्रीमेंट होंगे है, तो हालांकि वो लोग एश्योर करते हैं कि असं किस किस तरीके तुहाडे डाटा ने सिक्योर रखा तो किस किस वास्ते असं इसका यूज़ कर सकते हैं, पहले ही सानू दस दिता जाता है, हालांकि असं लोग ध्यान नहीं देंगे दे, गल अलग है। तो तीसरा जो है एक हुण सरकार ने 2023 बनाया डिजिटल परसनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो साडा निजी डाटा है उसनों सिक्योर करन वास्ते विशेष तौर पर जो सोशल मीडिया कंपनीज ने उन्होंने हूँ इस दायरे में लिया गया है कि साडा जो इंडियन सिटीजनस ने उन्हों जो डिजिटल डाटा है उसका जो कदरे मिसयूज़ ना हो, उसकी लीकेज ना हो, उन्होंने कंपनीज़ में इस बारे लायबल बनाता है, उन्होंने जिम्मेदार बनाता है। असं कह सकते हैं कि सरकार वालों काफ़ी सारे कदम चुके गए हैं जोड़े हालिया ने, हालांकि इस तो पहला जो अभी पुराने समय की गल करिए तो ब्रिटिश सरकार के समय तो एक इंडियन टैलीग्राफ एक्ट सीगा, उस विच भी सरकार ने ऐसी बंदोबस्त किया कि किसी की चिट्ठी एवें नहीं पढ़ी जा सकती बिना जब तक कोई अदालत वगैरह का आदेश हो। फिर फोन आ गए, फोन भी टैपिंग होंगे सी, तो वो उत्थे भी फिर अदालतों ने आदेश किया कि बिना किसी लोड़ दे बिना किसी अदालती आदेश दे किसी का फोन टैप नहीं किया जा सकता, उसकी जासूसी नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो साड़ी संविधान है अदालतों ने विशेषकर साड़ी सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत थावां ते जो सिटीजनस ने जो नागरिक ने उसके जो निजता के अधिकार की बहुत अच्छे लैवल से सुरक्षा की है।
1: अच्छा, तुसीं हुणे फोन टाइपिंग की गल की तो
0: जी
1: मेरे जहन 'च एक सवाल आया कि जदों फोन अज कल असीं फोन ते गल करते हैं
0: जी
1: तो फोन दे विचों कई लोग कॉल रिकॉर्ड करते हो जो ऑप्शन हुंदी है कॉल
0: हाँ जी
1: रिकॉर्डिंग
0: हाँ
1: दी,
0: जी
1: तां की वो कॉल रिकॉर्डिंग करना वो निजता दे अधिकार का मतलब उलंघन है?
0: जी बिल्कुल है। दो तरह की ऐप्स होंगे ने, एक तो ऐप ऐसी होंगी है जो फोन कॉल रिकॉर्डिंग शुरू होने लगती है तो उस पर मैसेज आता है जो कॉल करने वाले सुनाई देता है कि हूँ तुहाडी कॉल रिकॉर्ड होने लगी है, तो उस तरीके का तो वैलिड है क्योंकि अगर वो बंदा नहीं चाहेगा कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो तो फोन कट देगा। तो लेकिन कई ऐप्स ऐसिया होंदिया ने जिन्हें पता नहीं लगता, चुप चुपीते तरीके नाल कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, यह गैर कानूनी है, 100% गैर कानूनी है। किसी की जानकारी बगैर उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, किसी की जानकारी बगैर उसका वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जिवें असीं देखते हैं कि अपनी वैसे तो असीं सिक्योरिटी वास्ते CCTV लगाने हैं, लेकिन अगर किसी को पता नहीं, मान लो हुण कोई लेडी है किसी को पता नहीं उत्थे CCTV लगा, अपने कपड़े ठीक करन लगे कुछ ऐसा करे, तो उसका जरूर उसका नुकसान होएगा। तो इस करके हर किसी को पता होना चाहिए कि कितने CCTV लगा है। तो अक्सर असी लोग देखते हैं कि थां थां ते लिखा होता सावधान यहाँ पे आप कैमरे की निगरानी में है, वो लिखा इस वास्ते होंगे जो कि जायज़ है, लेकिन कई थावां ते नहीं भी लिखा होंगे, तो जिते नहीं लिखा होंगे फिर वो गैर कानूनी हो जाता है।
1: मतलब ये जे कि CCTV कैमरा लग्या है तो ये लिखा होना चाहिए है कि तुहाडे CCTV कैमरा लग्या हो, इस करके तुसी मतलब सावधान रहो।
0: जी,
1: मान लो किसी दे निजता दे अधिकार का उल्लंघन होंदा है किसी भी तरीके नाल, जिवें असीं अलग अलग तरीके दसे,
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो उहदे लई फिर साडे जिहड़े कानून न जिन्हां दी तुसीं हुणे गल कीती इहदे विच किस तरां दी सज़ा वगैरह दा प्रबंध कीता गया है इहदे बारे
0: हाँ
1: दस्सो।
0: जी हाँ जी देखो जे तो सोशल मीडिया, वैसे अजकल सब तो ज़्यादा तो सोशल मीडिया ते ही उसका मिसयूज़ हो रहा है कि बहुत सारियाँ जिदा लड़कियां दी असीं तस्वीरां दी गल करिए तो उसनों लोकी कॉपी करके कोई AI विच यूज़ करके उसका वीडियो बना देता है या उसका होर गलत तरीके की तस्वीर बना देता है। ते कुछ होर ऐसा होंदा है कि कई बारी मियाँ बीवी दे या होर जानकार लड़के लड़कियां दे आपस से कुछ रिलेशन होंदे ने, वो गलत उसके बारे गुमराहकुन जिन्हों जानकारी वो फैलाना शुरू कर जाते हैं, जिस दे नाल वाकई उसकी जो रेपुटेशन तो फर्क पैंदा है। तो उत्थे फिर जो क्रिमिनल डिफेमेशन होंदा, जो अपराधक मानहानि की गल हुंदी है,
1: उत्थे मानहानि दा कानून जिहड़ा है वो आ
0: अपराधक,
1: जांदा।
0: हाँ जी हाँ जी, जो पता लगता कोई शरारत कर रहा है तो बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट बनता है। तो उत्थे सिर्फ पुलिस नूं कंप्लेंट दई है तो नाल थोड़ा जा जानकारी दई है कि किस तरीके साडी जानकारी का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, तो जो सज़ा बनती है वो मिलेगी उसनों। लेकिन उसके अलावा जेकर असी मुआवजे वगैरह की गल करनी हुई है, कई बार सानू उसने फाइनैंशियल लॉस भी आता है, क्योंकि ऐ नहीं होता कि पर्सनल, कई बार कंपनियों के बारे भी गलत जानकारी फैला दी जाती है, तो इसी तरीके नकली वीडियो बना के जां, क्योंकि अजकल बहुत सारे लोग रीलां बनाते हैं तो इन्फ्लुएंसर बनते, कंपनी का प्रोडक्ट खराब है या इन्हां दी नीतियां खराब ने, इस नाल इहनू खाण नाल तुहानू नुकसान हो जाएगा। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਰਿਮ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी।

0: Messa maggiore.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आइए आ जाइए, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये वक्त है आपका और हमारा। और वैसे मुझे पता है कि आप लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो स्क्रीन है वो बता रही है कि इतने सारे संदेश जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज है मस्ती भरे गीत, और इन मस्ती भरे गीतों को लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त ज्योति शर्मा।

गाने को सुनकर मैं तो थिरकने लग गई। मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आया होगा ये गीत। और आपको बता दें कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जिन्हें नहीं पता है कि कैसे जुड़ना है, तो आपको बता दें हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार फिर से सुनिए, ipradiodelhi@gmail.com। और इस पर आप अपने संदेशें हम तक पहुंचा सकते हैं, और संदेशे तो हम देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, और ये टैगोर गार्डन से जुड़ी है। उन्होंने कहा है आइए आइए आइए। बिल्कुल, हम आ गए हैं प्यार भरे और मस्ती भरे गीत लेकर। और हमारे साथ हमारे अगले जो दोस्त जुड़े हैं वो हैं सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना। और अगले जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। ये जुड़े हैं हमारे साथ झारखंड से। और भोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। हमारे साथ चरण दास भी जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये जुड़े हैं हमारे साथ हिसार से देवतरम, कमला देवी, माया देवी, ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ जी, और इनके साथ हैं अर्पणा, प्रणय, प्रतिभा, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। और उसके अलावा सतीश अनेजा भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये लिख रहे हैं नमस्कार ज्योति बहन जी, बिल्कुल आपको हम भी नमस्कार करते हैं। और इनके साथ ही चंडीगढ़ सिटी से जुड़े हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।

अरे कारे नैना तो खूबसूरत होती हैं, और वैसे आंखें तो सभी की खूबसूरत होती हैं, बस जो खूबसूरत नज़रों से हम खूबसूरती को निहारते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। और फिलहाल हम स्क्रीन की तरफ निहार रहे हैं, बहुत से संदेश आए हैं आपके, हमारे साथ जुड़े हैं। ये लिखते हैं ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल, पूरे परिवार के साथ सुपर हिट प्रोग्राम सुन रहे हैं और बड़ा ही लुत्फ़ उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें भी शामिल कर ले, इनायत होगी। बिल्कुल, आपको शामिल कर लिया है। जमशेदपुर से जुड़े हैं ये हमारे साथ हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, और उसके अलावा हमारे साथ कमल पाठक जी भी जुड़े हैं। ये हैं इनके साथ सुनील पाठक, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, और उसके अलावा अगले जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं आपकी पसंद कार्यक्रम सुनना चाह रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये कह रहे हैं मेरा मेल शामिल नहीं। अब ये शिकायतें शिकायतें तो इतनी अच्छी भी नहीं लगती है ना। चलिए खैर, आप दोस्त हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, पर हाँ अब शिकायत आपकी हो गई ख़त्म, क्योंकि आपका हो गया है संदेशा शामिल। ये हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर देहात से रामेश्वरम कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, और समस्त कठेरिया परिवार हमारे साथ जुड़ा है। और इसके अलावा पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं सुधीर, नूतन, संदीप बुलकानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये जुड़े हमारे साथ लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये जुड़े हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, और ये लिख रहे हैं कि इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और ये हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारा, और सीताराम भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, एकता कॉलोनी रोहतक से, और अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं अपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, ये हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी, नगद परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, और फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बा नवासी, और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि सब कार्यक्रम सुनते हैं, और फिर हमें भी मज़ा आता है कि लगता है ना, हाँ कोई हमारी बात सुन रहा है, कोई प्यारे प्यारे गीत सुन रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें गीत सुनाएं। फिलहाल और एक और दोस्त हैं जिनका हम संदेशा पहले शामिल कर लेते हैं, ये हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, और झुमरी तलैया झारखंड से हैं, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, वसंत लावसा, अभय कुमारी, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं टीडी मल्होत्रा, ये हैं इनके साथ ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, और डॉक्टर अमनदीप मोहाली चंडीगढ़ से। चलिए एक गीत जो है ना वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, इसे सुन लेते हैं।

जुड़े हैं इंद्र प्रज्वलन के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मेरे साथ यानी ज्योति शर्मा के साथ। और आप हमारे साथ जुड़े हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंशु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और हमारे साथ और हमारे दोस्त जुड़े हैं। ये हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से और मधु नायक भी इनके साथ हैं। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये जो हमारे दोस्त, इनका नाम है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, ये जुड़े हैं हमारे साथ डबवाली से। और उसके अलावा हमारे साथ तुलसी मस्कीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। और इनके साथ हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। और ये लिख रहे हैं कि ये रेगुलर शो होता है, बिल्कुल आपके संदेश हमेशा आते रहते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं। और जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। बाबू भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ है भारती देवी, ये जुड़े हैं हमारे साथ जवाहर नगर उदयपुर से। और अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं ये लिख रहे हैं कि हमारा नाम शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल देखिए आपका नाम शामिल हो गया है, ये है मधु किरण हमारे साथ जुड़े हैं। और उसके अलावा हमारे साथ SP गोयल जी भी जुड़े हैं और रोहिणी दिल्ली से, प्रकाश गोगिया जागृति इंक्लेव से जुड़े हैं हमारे साथ, और रमेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये राजेंद्र जी, राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा जटोलिया, पूजा जटोलिया, कोमल जटोलिया और आरव जटोलिया, नई दिल्ली नहीं, ये जुड़े हमारे साथ दिल्ली नांगलोई से। और उसके अलावा रुपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, ये हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रत्येश संघई हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ये जो हमारे दोस्त हैं, इनका नाम है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। भाई बहुत अच्छे अच्छे गीत मैं लेकर आई हूँ आपको, उम्मीद करती हूँ पसंद आ रहे होंगे। फिरोजपुर पंजाब से जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और उसके अलावा ये हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं भोपाल गढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार।

गीत ऐसे होते हैं ना कि जब वो हम सुनते हैं और बिना थिरके तो ना रहा नहीं जाता। ये कह लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डांस करने में माहिर होते हैं, जिनकी नृत्य कला बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नृत्य कला उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कोई गीत अपनी पसंद का बजता है ना

तो फिर जहाँ बैठे होते हैं वहाँ थिरकना शुरू कर देते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि देखो, अपने आप को ना डांस करने से या नाचने से रोकना नहीं चाहिए। हाँ, जगह आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मन नाचने का करता है तो नाचना चाहिए। और अगर आपकी पसंद का गीत हो प्ले, तो फिर तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ना नाचने से जो आप एक कहते हैं ना सुकून पाते हैं, वो अपना ही अलग होता है। एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ ही साथ आपका जो मन है ना वो भी शांत होता है। करके देखना। चलिए, उसके लिए और भी गीत हैं हमारे पास। फिलहाल आपके संदेश जो है वो हम शामिल कर लें। हमारे साथ जुड़े हैं, ये मुंबई से जुड़े हैं, अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापसड़ा बॉर्डर, नई दिल्ली से जुड़े हैं बिटिया आमना, नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतसा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। और इसके अलावा सुभाष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और ये सुन रहे हैं कार्यक्रम पंजाब फजिलका से, और कह रहे हैं कोई भी गीत सुना दीजिए। बिल्कुल, बहुत प्यारे गीत हैं अभी हमारे पास। और नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हैं हमारे साथ कलानौर से। इनके साथ है किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, जो कार्यक्रम सुन रहे हैं। उसके अलावा उत्तम कुमार भगत भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ है श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और मुन्ना भगत और गुड्डी भगत भी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा प्रकाश गोगिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ हैं सत्य प्रकाश, अनीता वर्मा नई दिल्ली से। और हमारे साथ स्वर्ण सिंह जी भी जुड़े हैं। इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और उसके अलावा भागवत वर्मा, शांति देवी, ललितावती, लीलावती, विनीता शर्मा, नहीं विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लिख रहे हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है। तो अगर आपकी पसंद का गीत प्ले होना, तो फिर ज़रूर ज़रूर थिरकना है आपको। फिलहाल एक और थिरकने वाला गीत।

घूमर घूमर में तो इतना घूम लिए ना कि घूम घूम के थोड़ा सा थक भी गए, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आता है जब ऐसे प्यारे प्यारे गीत होते हैं ना। और अगर मैं कहूँ तो मुझे ये गीत बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। और अब हम कर लेते हैं शामिल संदेशों को, हमारे साथ जुड़े हैं अनवर साबरी जी और इंद्रभान सिंह भी हमारे साथ जुड़े, इनके साथ है अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जुड़े हैं चिरमरी कुसारिया कालरी से। और उसके अलावा नीतू मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये नाराज़गी भरा मैसेज कर रहे हैं कि शामिल नहीं करते हैं। भाई दोस्त, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सबके संदेश शामिल करें, लेकिन हाँ कभी कुछ रह जाए तो इतना तो चलता है ना, इतनी तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो अब तक स्क्रीन पे मैसेज आया है ना, उनको पूरी तरह से शामिल करने की कोशिश की है। आप किशनगंज बिहार से जुड़े हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, और कुछ हमारे दोस्त हैं ना, वो एक की जगह 10 बार मैसेज भेजते हैं तो बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। भाई आप भी हमारा ख्याल रखिए ना, हम आपका ख्याल रखते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और नमित, ये हमारे साथ जुड़े हैं जलालाबाद से। और उसके अलावा स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे दोस्त जुड़े हैं, ये जुड़े हैं हमारे साथ डी बी राणा, नेहरू विहार, नई दिल्ली से। और संदीप मकर भी हमारे साथ जुड़े हैं जलंधर पंजाब से, इनके साथ है कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जलंधर पंजाब से। और हमारे दोस्त जुड़े हैं रविंद्र मोहनदास, एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे साथ, नीतू मल्होत्रा, प्रकाश गोगिया हमारे साथ जुड़े हैं, और ये शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान और अनु खान जुड़े हैं हमारे साथ। और उसके अलावा अनिल मोहन एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे साथ, अहमद बागवान हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ है नूर आयशा, अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना, आसमा, राबिया, परी, आशु, जूही, सदफ़, और उसके अलावा अदीबा, अफसरी, इस्माइल, आज़ाद, नन्हे राजा, फ़याज़, फिरोज़ आलम, भाई शाह आलम और वली आलम जी हमारे साथ जुड़े हैं। फ़िलहाल एक और डांस नंबर हम सुनते हैं और फिर आपके पास आते हैं।

जी ये वाला गीत आप सुनने वाले हैं, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जो है वो यहीं संपन्न करना होगा, क्योंकि घड़ी घड़ी जो है ना, उसकी सुई जो है वो इशारा कर रही है कि अब समय खत्म होने वाला है। लेकिन हाँ, हम आपको जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक छोटी सी कोशिश कीजिए अपने सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी लाने की। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। फिलहाल मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, यानी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ बने रहिए। और ये गीत जो है वो आप बिल्कुल सही सुन लीजिए। और जाते जाते बाबू भाई जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, और ये लीजिए ये गीत और इसे एंजॉय कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेज़ी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4th भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The two-day meeting of BRICS foreign ministers being hosted by India is underway in New Delhi. The meeting is being chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries are participating in the meeting. Making the initial remarks, Dr. Jaishankar said that the meeting is happening at a time of considerable flux in international relations.

पंडित विश्व मोहन भट्ट के शिष्य और सुपुत्र हैं। सात्विक वीणा का जनक आपको कहा जाता है। हवाईयन गिटार में कुछ बदलावों के साथ आपने इसे सात्विक वीणा का नाम दिया है। आप वर्षों पुरानी और समृद्ध संगीत विरासत के उत्तराधिकारी हैं और ग्लोबल इंडियन म्यूजिशियन के रूप में आपको ख्याति प्राप्त है। चाहे एकल संगीत कार्यक्रम हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हो, अनोखी जुगलबंदी हो या वैश्विक संगीत संयोजन हो, आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। प्री ग्रैमी पुरस्कार नामांकन सहित अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आप प्रसार भारती और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के मुख्यालय में आपने प्रस्तुति दी है। जर्मनी की संसद के भीतर प्रस्तुति देने वाले आप पहले भारतीय कलाकार हैं। राष्ट्रीय संगीत गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। प्रिंस ऑफ राग उपाधि, संगीत भूषण अवार्ड, कला साधना अवार्ड, ग्लोबल इंडियन की उपाधि और भी कई पुरस्कार और सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आपको भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार पंडित अभिषेक मिश्रा। आज की प्रथम प्रस्तुति रहेगी पंडित रविशंकर जी द्वारा ही प्रचारित और प्रसारित और खोजा गया राग, राग परमेश्वरी में। आप आनंद लेंगे आलाप, जोड़ और झाला का। विलंबित, मध्य और द्रुत रचनाएं 3 ताल में निबद्ध हैं। कलाकारों से अनुरोध है, आप प्रस्तुति आरंभ करें।

स्वरांजलि कार्यक्रम में आज पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट हवाईयन गिटार की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें कुछ बदलावों के साथ आपने अपने वाद्य यंत्र को सातवीं वीणा का नाम दिया है। आइए अब आनंद लीजिए पहाड़ी धुन का।

0: आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आज स्वरांजलि कार्यक्रम में तंत्री सम्राट पंडित सलिल विश्व मोहन भट्ट ने सात्विक वीणा की प्रस्तुति दी हवाईयन गिटार। आपने कुछ बदलावों के साथ अपने वाद्य यंत्र को सात्विक वीणा का नाम दिया है और आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर पंडित अभिषेक मिश्रा। आज के कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से भी लिया गया। तकनीकी सहयोग रहा प्रकाश थपलियाल, गौरव सेन, भावना भारद्वाज और अमित कुमार का। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था आकाश गौतम, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देश

0: की साझा सहमति है।
1: स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
2: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. A 2-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "Peace and security remain central to the global order." He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security.

घर आंगन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं नई ऊर्जा, नए विचार और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। इस खास प्रस्तुति में आपका दिल से स्वागत है। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और उम्मीद है आप सभी अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर नया दिन हमें एक नया मौका देता है कुछ बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का। तो चलिए इस सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए और याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर पल है खास।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी प्रेम नगर। ये आकाशवाणी है। बस ये तीन शब्द सुनते ही जैसे यादों की एक पूरी दुनिया आंखों के सामने उतर आती है। वो सुबह की भक्ति धुनें, दो

दोपहर के समाचार, शाम की कहानियां और रात में बजते मधुर गीत। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं था, यह हर घर का सदस्य था। एक ऐसी आवाज जो दिलों तक पहुंचती थी। आकाशवाणी के 90 साल। आज हम बात करेंगे उस जादू की जिसने देश के कोने कोने को एक सूत्र में बांधा, उस आवाज की जिसने भावनाओं को शब्द दिए, दूरियों को रिश्तों में बदल दिया। जब टेलीविजन नहीं था, मोबाइल और इंटरनेट का दौर नहीं था, तब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम था। गाँव की चौपाल हो या शहर का ड्रॉइंग रूम, हर जगह रेडियो की अपनी एक अलग पहचान थी। किसानों के लिए खेती की जानकारी, विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए विशेष स्तुतियां और जवानों के लिए देशभक्ति के गीत। आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज को शिक्षित भी किया, जागरूक भी बनाया। युद्ध के कठिन समय हो या देश के ऐतिहासिक क्षण, आकाशवाणी हर परिस्थिति में देशवासियों की आवाज बनी। रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही रही कि इसमें चेहरा नहीं था, फिर भी हर आवाज एक अपनापन से जुड़ जाता था। दादा दादी से लेकर आज की नई पीढ़ी तक, हर किसी की यादों में रेडियो की एक खास जगह है। आज तकनीक बदल गई है, सुनने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन रेडियो का जादू आज भी वैसा ही है, क्योंकि आवाज़ जब दिल से निकलती है तो सीधे दिल तक पहुंचती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि भारत की भावनाओं, संस्कृति और यादों का इतिहास है। तो आइए इस अनमोल सफर को सलाम करें, उन आवाजों को धन्यवाद जिन्होंने वर्षों तक हमारे जीवन में संगीत, संवेदना और विश्वास घोला।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म थी तलाश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने न सिर्फ आसमान को छुआ बल्कि समाज की सोच को भी नई उड़ान दी। ये कहानी है सरला ठकराल की। महज 21 साल की उम्र में सरला ठकराल ने अपना पायलट लाइसेंस हासिल किया। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं के लिए घर की चौखट पार करना भी मुश्किल था, सरला ने आसमान को अपना रास्ता बना लिया। उन्होंने जिप्सी मॉट विमान को अकेले उड़ाया और वो भी 1000 घंटे की उड़ान पूरी की। और ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी दोस्तों, ये एक संदेश था कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी आसमान दूर नहीं है। लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा। जब उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने का सपना देखा तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से सिविल एविएशन ट्रेनिंग पर रोक लग गई। किसी और के लिए हो सकता है ये अंत होता, लेकिन सरला जी के लिए नहीं। उन्होंने अपने जीवन को फिर से संवारा, खुद को एक नई पहचान दी, एक सफल उद्यमी, फैशन डिज़ाइनर और पेंटर के रूप में। सरला ठकराल सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो हर उस महिला की प्रेरणा है जो हालातों से लड़कर अपनी जीत की कहानी लिखती है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स वाला देश है, लेकिन इस उड़ान को आसान सरला ठकराल जी के जैसे लोगों ने बनाया। तो उनकी इस कहानी को हर उस महिला तक पहुंचाइए जिसे अपने सपनों को पंख देने की जरूरत है, क्योंकि जब हौसले आसमान छूने लगते हैं उड़ान कहानी बन जाती है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और खूबसूरत और स्वस्थ त्वचा कौन नहीं चाहता, लेकिन हर बार महंगे प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं होते। कभी कभी हमारी रसोई में ही छुपा होता है आपकी त्वचा को चमकाने का राज। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ आसान और नेचुरल ब्यूटी आइस क्यूब्स के बारे में, जिन्हें आप घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा जेल आइस क्यूब्स। एलोवेरा जेल को 4 घंटे के लिए फ्रीज कर लें और रोज़ चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ऑयल कंट्रोल होता है और सूखेपन और खुजली से राहत मिलती है। खीरे के जूस के आइस क्यूब्स। खीरे का रस फ्रीज करें और रोज़ इस्तेमाल करें। इससे जो आपकी त्वचा है बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होगी, जल्दी से चमक आएगा और आँखों के किनारे जो डार्क सर्कल्स हो जाते

होते हैं, एक्ने होते हैं, वो कम होने में मदद मिलती है। और आपको एकदम से इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो ट्राई कीजिए चुकंदर और गुलाब जल के आइस क्यूब्स। चुकंदर के जूस में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाकर फ्रीज करें। रोज़ चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा गुलाबी, चमकदार, ताज़ी दिखती है, साथ में पिगमेंटेशन भी कम होता है। और आखिर में कस्तूरी हल्दी और गुलाब जल के आइस क्यूब्स, इसे रोज़ चेहरे पर लगाने से स्किन रेडिएंट बनती है, एजिंग के संकेत धीमे पड़ते हैं और मुहांसे कम होने में मदद मिलती है। तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर स्किन, हर त्वचा जो है वो अलग होती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म थी प्रेम कहानी। और इन दिनों भारतीय पारंपरिक फैशन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, चाहे वो उच्च फैशन के मंच हो, ऑस्कर समारोह हो या पश्चिमी संगीत वीडियो, हर जगह भारतीय परिधान और आभूषण छाए हुए हैं। जो बिंदी हम जल्दी में लगाकर भूल जाते हैं, वही बिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय फैशन बन चुकी है। जो झुमके हमारी दादी नानी की याद दिलाते हैं, आज वही बोहो एथनिक शैली के आभूषण बनकर पूरी दुनिया को लुभा रहे हैं। हमारा दुपट्टा वो क्या बन गया है, वो स्कैंडिनेवियन स्कार्फ बनकर विदेशी अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है। नाम बदला है पर पहचान वही है दोस्तों। हमारी मेहंदी जिसे हम खुशियों और रस्मों में रचाते हैं, वही मेहंदी अब हेना टैटू के नाम से वैश्विक चलन बन चुका है। और हमारी बांधनी प्रिंट, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। बांधनी प्रिंट का लहंगा जिसके हर रंग में परंपरा की कहानी छुपी है, वह आज लेयर्ड स्कर्ट बनकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन का हिस्सा बन गई है। यहाँ तक कि हमारी धोती और कोल्हापुरी चप्पलें, जिन्हें हम कभी साधारण समझ लिया करते थे, आज वही बोहो शीक शैली के नाम पर दुनिया भर में प्रचलित है। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या अपना रही है, सवाल यह है कि कहीं हम तो नहीं इन्हें भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को अपनाना कोई चलन नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ है। तो अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, एक बिंदी लगाइए, झुमके पहनिए, दुपट्टे को शान से ओढ़िए, क्योंकि जो अपना है वही सबसे खूबसूरत है। फैशन बदलता है लेकिन पहचान नहीं। जो रंग अपनी मिट्टी में है वो कहीं और कहाँ, जो बात अपनेपन में है वो बाजारों में कहाँ। दुनिया सजा रही है जिसे, वो हमारी पहचान है, अपना लो उसे दिल से, यही सबसे बड़ा सम्मान है। अपनी संस्कृति को अपनाई, क्योंकि असली शैली वही है जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हो।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को फिल्म अभिमान से। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत की मिट्टी में कला बसती है, लेकिन क्या कभी ऐसे गांव के बारे में आपने सुना है जहां हर घर में एक कलाकार रहता हो, जहां दीवारें भी कहानी सुनाती हों और रंगों में संस्कृति सांस लेती हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं रघुराजपुर, उड़ीसा का एक ऐसा गांव जिसे हेरिटेज आर्ट विलेज कहा जाता है। ये छोटा सा गांव पुरी के पास स्थित है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि भारतीय कला और परंपरा की जीवित मिसाल की है। यहाँ लगभग हर घर में कोई ना कोई कलाकार है। कोई पत्तचित्र बनाता है, कोई ताड़पत्र पर नक्काशी करता है, तो कोई लकड़ी और पत्थर से अद्भुत कलाकारी करता है। रघुराजपुर की सबसे प्रसिद्ध कला है पत्तचित्र। कपड़े या सूखे पत्तों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई गई ये पेंटिंग्स भगवान जगन्नाथ और भारतीय कथाओं को जीवंत कर देती है। और सबसे खास बात, यहाँ कला सिर्फ काम नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। बच्चे बचपन से ही रंगों और ब्रश के साथ बड़े होते हैं। यही गांव प्रसिद्ध ओडिशी नृत्य गुरु केलू चरण मोहापात्रा की जन्मभूमि भी है। यानी यहाँ सिर्फ चित्रकला ही नहीं, संगीत और नृत्य भी संस्कृति की तरह बहते हैं। रघुराजपुर की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक खुली आर्ट गैलरी हो। रंग बिरंगे घर, हाथों की महीन कारीगरी और हर चेहरे पर अपनी कला के लिए गर्व। आज जब दुनिया मशीनों की ओर बढ़ रही है, ऐसे में रघुराजपुर हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता इंसानी हुनर और परंपरा में बसती है। तो दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा। और हाँ, कभी उड़ीसा जाएं तो इस अनोखे गांव की गलियों में जरूर घूमिए, क्योंकि यहाँ हर घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक कला मंदिर है।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म थी आराधना, और अब हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की थाली के उस राज की जो स्वाद भी बढ़ाता है और सेहत भी, यानी दक्षिण भारत के फर्मेंटेड फूड का विज्ञान। साउथ इंडियन जो फूड होता है वो सिर्फ स्वाद के लिए ही मशहूर नहीं है बल्कि उसकी सेहतमंद परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पम और सांभर ये सिर्फ व्यंजन नहीं है बल्कि विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल इन व्यंजनों की खासियत ये है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया, जब चावल और उड़द दाल को भिगो कर पीसा जाता है और कुछ घंटों के लिए रखा जाता है, तो उसमें प्राकृतिक रूप से जो मौजूद अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। यही सूक्ष्म जीव उस घोल को हल्का, खट्टा और पौष्टिक बना देते हैं। तो फर्मेंटेशन की इस प्रक्रिया से खाने में प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं, यानी ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। और यही वजह है कि इडली और डोसा जैसे व्यंजन हल्के भी होते हैं और आसानी से पच भी जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्मेंटेशन से भोजन में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे उड़द दाल और चावल में मौजूद जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं वो समूह फर्मेंटेशन के बाद और बेहतर तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत की बात कर रही है, लेकिन भारत की परंपरागत रसोई सदियों से इस विज्ञान को अपनाए हुए हैं। हमारी दादी नानी की रसोई में मौजूद ये फर्मेंटेड भोजन आज के आधुनिक पोषण विज्ञान में भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अगली बार जब आपकी थाली में गर्मा गर्म इडली या कुरकुरा डोसा आए तो याद रखिए ये सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि विज्ञान और सेहत का भी कमाल है।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले को, फिल्म थी तीसरी कसम। और दोस्तों, गर्मियों में बार बार प्यास लगना, शरीर में गर्मी और थकान महसूस होना, तो आज ट्राई कीजिए एक ऐसा देसी सुपर ड्रिंक, गोंद कतीरा शरबत। गोंद कतीरा शरीर को अंदर से ठंडक देता है, लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों की थकान दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये स्किन और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये इंस्टेंट बॉडी कूलिंग ड्रिंक। तो सबसे पहले एक चम्मच गोंद कतीरा रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह तक ये फूल कर बिल्कुल जेली की तरह दिखने लगेगा। अब एक गिलास में डालें एक बड़ा चम्मच भीगे हुए सब्जा के सीड्स, 8-10 पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई मिश्री और 1 चम्मच नींबू का रस। अब इसमें ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बस तैयार है आपका रिफ्रेशिंग गोंद कतीरा शरबत। तो इस गर्मी शरीर को रखें फ्रेश, हाइड्रेटेड, देसी अंदाज में। और हाँ, हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। गौरी शंकर वर्मा जी, सुदर्शन मुखी जी और नवीन भाटिया जी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

सुन रहे हैं हेमलता को फिल्म अखियों के झरोखों से। आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल

0: संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य परियोजना तथा गंगटोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A two-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, peace and security remain central to the global order. He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Syed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato' Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al-Marar and Ronald Lamola from South Africa, among others. Foreign ministers of BRICS member countries will also call on Prime Minister Narendra Modi this afternoon. The theme for India's BRICS chairship this year is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Meanwhile, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Indonesian counterpart Sugiono on the sidelines of the meeting this morning. In a social media

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अश्रोताओं, अब वक्त है हम सभी के मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत जिससे कि आपको पता लगेगा कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जी दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, 1983 में बनी यह एक भारतीय प्रेम की फिल्म थी जिसका नाम है बेताब। दोस्तों, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा था और राहुल रवेल ने निर्देशित किया था, विक्रम सिंह देहल ने निर्मित किया था और फिल्म में मुख्य रोल में थे सनी देओल और अमृता सिंह। ये इनकी पहली भूमिका फिल्म थी। साथियों, फिल्म का कथानक विलियम शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रू पर आधारित था और संगीत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहुल देव वर्मन ने दिया था।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: साथियों, बेताब का उद्घाटन 1981 में दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र और सायरा बानो की उपस्थिति में किया गया था। बेताब की रिलीज से पहले सनी देओल ने 1982 में आई फिल्म मैं इंतकाम लूंगा में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके पिता धर्मेंद्र जी मुख्य भूमिका में थे। दोस्तों, बेताब एक बड़ी सफल फिल्म रही थी, 1983 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई थी, जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म को 1987 में रमेश बाबू के साथ तेलुगु में सम्राट और 2011 में कार्तिक शेट्टी के साथ कन्नड़ में कार्तिक के रूप में भी रिमेक किया गया था।

श्रोता, हम बात करें इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं की, तो वो इस प्रकार थी। सनी देओल थे सनी कपूर के रूप में, अमृता सिंह रोमा सिंह के रूप में, शमी कपूर सरदार दिनेश सिंह गिरजी के रूप में, और निरूपा राय थी सुमित्रा कपूर के रूप में।

प्रेम चोपड़ा ने रोल किया था बलवंत का और राजीव आनंद ने यशवंत का। अनु कपूर ने किया था चेला राम का रोल।

साथियों, इस फिल्म में पांच लोकप्रिय गाने हैं जिनके बोल आनंद बख्शी और लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने गाए थे, और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और इस फिल्म में सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी बहुत ही पसंद की गई थी।

दोस्तों इसी गीत के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम समाप्त कर दें, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और सुनिए ये गीत।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसअत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वज़ीर आला के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सरे फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अमन व सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया

0: मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमरा अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जायगार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ एक मामले में छापे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ये छापे गैर मुल्की करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक कानून FEMA फेमा के जाब्तों के तहत 14 लोगों और कंपनियों से वाबस्ता मकामात पर मारे जा रहे हैं। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि इस मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है कि जायगार टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूल रही है। और बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की एमेली शुल्स को स्ट्रेट गेम्स में 28 मिनट में 21-13 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं सत्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के बरियान जेनेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल को स्ट्रेट गेम्स में 21-12 21-19 से हराकर आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2 रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर 2 तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए VD सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तबाही का आलमी बहरान महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. 2-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the 2-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
2: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.

0: than ever before. The U.S. president arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese president. The U.S. president has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the president are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: Our discussions must advance.
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति

0: है इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड।

0: कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक

0: के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, TRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आज के खास रेडियो प्रोग्राम एक ही कलाकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, रेडियो सफर में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस शख्स की जिन्होंने रोमांस, संगीत, दोस्ती और युवा दिलों की धड़कनों को फिल्मों में इस अंदाज से पिरोया कि उनकी फिल्में आज भी ताजगी का एहसास देती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे निर्माता, निर्देशक, लेखक नासिर हुसैन की। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं बनाते बल्कि एक दौर बना देते हैं। एक ऐसा दौर जिसमें प्यार था, संगीत था, दोस्ती थी, सफ़र था और ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीने का अंदाज था। आज का ये सफ़र समर्पित है उस फिल्मकार को जिसने कहा नहीं बल्कि अपनी फिल्मों से महसूस कराया कि ज़िंदगी एक खूबसूरत गीत है। हम आज बात कर रहे हैं नासिर हुसैन की, उनकी फिल्मों की, उनके अनसुने किस्सों की और उन गीतों की जो आज भी दिलों में बसे हुए हैं।

नासिर हुसैन का जन्म 16 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत फिल्मों में लेखक के रूप में की थी। उनकी लेखनी में भावनाएं थीं, संवादों में अपनापन और कहानियों में मनोरंजन। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1957 में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। इस फिल्म में शम्मी कपूर की छवि भी बदल गई। शम्मी कपूर का मस्तमौला अंदाज और नासिर हुसैन की युवा सोच, दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड शुरू किया।

अगर किसी निर्देशक की फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा बन जाए तो समझ लीजिए कि वो जादूगर है। नासिर हुसैन की फिल्मों का संगीत सुपरहिट रहा। उनकी फिल्मों में आरडी बर्मन और ओपी नैयर जैसे संगीतकारों ने कमाल किया। और फिर आए वो गीत जो आज की पीढ़ी भी गुनगुनाती है। उनकी कमाल की फिल्में रहीं जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, कयामत से कयामत तक, यादों की बारात, कारवा, हम किसी से कम नहीं, दिल दे के देखो जैसी फिल्में शामिल थी। तो अब सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो आज भी युवा पीढ़ी के जुबान पर है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं नासिर हुसैन। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। और अब बढ़ते हैं, नासिर हुसैन का विवाह आयशा खान से हुआ। उनके पुत्र मंसूर खान भी निर्माता निर्देशक रहे, जिनकी बेटी भी अभिनेत्री जाइन मारी खां हैं। आपको ये भी बता दें कि नासिर हुसैन की पत्नी आयशा खान असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, जिन्होंने उनकी फिल्में बहारों के सपने और हम किसी से कम नहीं में काम किया। आर डी बर्मन के साथ 9 फिल्मों में काम किया, साथ ही सबसे ज़्यादा काम उन्होंने आशा पारेख के साथ किया, जिनमें दिल देखे देखो से लेकर प्यार का मौसम शामिल थी। 13 साल के गैप के बाद मंजिल मंजिल फिल्म में उन्होंने अपनी वापसी की। नासिर हुसैन ने अपने मेंटोर शशधर के पुत्र जॉय मुखर्जी के साथ एक फिल्म भी बनाई, जो थी फिर वही दिल।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म में आशा पारेख और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। और फिर वही दिल आया हूँ में फिल्म की लोकेशन और संगीत आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि नासिर हुसैन अपनी फिल्मों की शूटिंग में बहुत बारीकी रखते थे। हर फ्रेम को खूबसूरत बनाने के लिए घंटों मेहनत करते थे। तीसरी मंजिल फिल्म में थ्रिल और म्यूजिक का शानदार मेल पेश किया गया। हालांकि निर्देशन विजय आनंद का था, लेकिन कहानी और निर्माण नासिर हुसैन का था। और फिर वो हसीना जुल्फों वाली, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे गीतों ने इतिहास रच दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि शम्मी कपूर को शुरुआत में आजा आजा गीत थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन बाद में यही गीत सुपरहिट रहा। वो सिर्फ फिल्मकार ही नहीं बल्कि प्रतिभा पहचानने वाले इंसान भी थे। उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया। सबसे बड़ा नाम आमिर खान है, जो कि उनके भांजे हैं। उन्होंने कयामत से कयामत तक में रोमांस की नई लहर पैदा की और रातों रात

1990 के दशक के बाद नासिर हुसैन फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन उनकी बनाई दुनिया आज भी जीवित है। 13 मार्च 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हर पीढ़ी को मुस्कुराना सिखाती हैं। उनकी फिल्मों में कुछ बातें हमेशा दिखाई देती थीं, खूबसूरत संगीत, हल्का फुल्का रोमांस, परिवार और दोस्ती, सफ़र और रोमांस और दिल को छू लेने वाली भावनाएं। उनकी फिल्मों में उदासी भी होती थी, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ लोग वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यादों में हमेशा जवान बने रहते हैं। नासिर हुसैन उन्हीं नामों में से एक है जिन्होंने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी, बल्कि प्यार करने का अंदाज, दोस्ती निभाने का एहसास और संगीत में जीने की वजह दी।

इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में नई यादों के साथ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: वॉइस ऑफ डंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू

0: लगने के क्या लक्षण हैं?
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना।
0: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे एक कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं, उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है, और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें।
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सो मारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
5: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
6: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्व

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ इतना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
4: हाँ
6: दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते

एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: जी फौज में हो ताया जी?
1: हाँ पुत्र।
0: छुट्टी आई हो? जी फौज विच की कर दे हो?
1: हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी।
0: आपके पास फौजी वर्दी है?
1: हाँ।
0: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
1: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
0: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
1: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल,
2: ये
3: मैंने एक नक्शा बनाया है।
2: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, यदि इधर देखो, इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।

0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: अरे नहीं, यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अरे
2: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथ

साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उसमें खास तवज्जो दी गई है। और जहां तक के जो है ना उर्दू का सवाल है, उर्दू के हवाले से अगर
1: उर्दू
0: हम
1: की
0: देखें,
1: बात हम जरूर आपसे करेंगे, अभी हम
0: जी
1: फाजलाती निज़ाम में तालीम को समझ लें, हम फिर
0: जी
1: बाकायदा तौर पे उर्दू की बात करेंगे कि कैसे हमारे उर्दू
0: जी
1: के तालिबे इल्म फ़ायदा उठा सकते हैं। जी नदीम साहब, आप चूंकि एक रेगुलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और बात रिवायती और फाजलाती निज़ाम तालीम के बीच में मुआवजे की हो रही है, आप कैसे देखते हैं, क्या आपके यहाँ तालिबे इल्म आते हैं ऐसे फाजलाती निज़ाम तालीम से 10वीं 12वीं करके फिर आपके यहाँ बीए करने आते हैं?
2: जी हाँ, आजकल तो इस तरह के तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी ये है कि NEP के थ्रू और ये जो हमारे यहाँ CUET वाला सिस्टम है, इसमें
1: जी
2: कोशिश ये की गई है
1: जी
2: हुकूमत हिंद की जानिब से कि वो तलबा भी अच्छे और बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दाखिला ले सकें जो समाज की एक मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे, और दूर दराज इलाकों में रहने वाले, रूरल एरियाज़ में रहने वाले बच्चे जो कहीं ना कहीं उस तरह की सहूलियात को हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसको शहर में रहने वाले बच्चे या प्राइवेट स्कूलिंग करने वाले बच्चे अच्छे तरीके से हासिल कर पा रहे थे, तो उन लोगों के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी। उसी को दूर करने के लिए NEP में इस तरह की चीज़ों को पेश किया गया और उन ज़रूरतों को समझा गया, और उसी की बिना पर CUET जैसी एक एग्ज़ामिनेशन प्रणाली या सिस्टम को लाया गया है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मेरे पास तो दोनों ही तरह के बच्चे आते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे यहाँ ना सिर्फ ये दोनों तरह के बच्चे आते हैं जो रिवायती तरीक़े तदरीस से कामयाब होने के बाद मेरे पास आते हैं या डिस्टेंस सिस्टम से आते हैं फासलाती निज़ाम तालीम को हासिल करने के, बल्कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद भी जाते हैं इस तरह के कोर्सेज़ करने, प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने के लिए, और वो मुझसे उस बारे में जानना भी चाहते हैं। और मेरा ताल्लुक़ दोनों ही तरह के सिस्टम से रहा है, मेरी PhD डिस्टेंस एजुकेशन में रही है और मैं उर्दू पढ़ाता
1: आपने
2: हूँ।
1: बहुत काम किया, हमें
2: जी
1: मालूम है, NIOS में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशन का भी काम किया है, तो आपने ये फ़र्क देखा कि आपके यहाँ दोनों तरह के तालबिल मारे। जैसा मैंने काम किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में, हम ये महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में ये बेहतरीन निज़ाम हमारी हुकूमत ने कायम किया, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफा है एक तरीके से। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट
0: बिल्कुल
1: ओपन स्कूलिंग है जहाँ लाखों बच्चे तालीम हासिल करते हैं। दरअसल किसी भी तालिब इल्म की किसी नामुसाद हालात के बिना पे तालीम छूट गई और वो किसी काम में लग गया, किसी घर में उसके वालिद का इंतकाल हो गया, या किसी को अचानक नौकरी करनी पड़ी, या फिर ऐसे तालिब इल्म जो रेगुलर सिस्टम में नहीं जा सकते। रीज़न ये है कि रेगुलर सिस्टम में एक वक्त मुकर्रर पर दाखिला होता है और वक्त मुकर्रर पर ही इम्तहान होता है। और फाजलाती निज़ाम तालीम में एक अच्छी बात यह है कि आपका दाखिला जैसे 10वीं 12वीं में आप लें तो 5 साल के लिए हो जाता है, ऐसी तरीके से BA में 8 साल के लिए हो जाता है, और आप साल में 2 बार इम्तिहान होता है, वो अपनी सहूलत के हिसाब से इम्तिहान दे
0: जी
1: सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर लियाकत अली साहब, ये तमाम चीज़ें आप भी महसूस करते हैं कि जो फासिलाती निज़ाम तालीम के जो तालिब इल्म हैं वो इस वजह से आते हैं, या फिर एक ग्रुप ऐसा भी है जो ड्रॉप आउट है, जो हमारे रेगुलर सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाता है और फिर उधर आता है, आप क्या महसूस करते
0: जाहिर
1: हैं?
0: सी बात है, ये खला पैदा हो जाती है वो तबका जो तालीम नहीं हासिल कर सकता है। अब देखिए ना, इसमें आपने खुद ही जिक्र किया कि रवायती तालीम में क्या है कि एक एज ग्रुप है, उस एज तक वो दाखिला ले सकता है, लेकिन फासलाती निज़ाम तालीम में क्या है कि इसमें किसी भी उम्र का कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, और किसी भी इलाके से, किसी भी कोने से, मुल्क के किसी भी कोने से वो इससे इस्तेफादा कर सकता है। तो इसमें ये एज ग्रुप जो है ये बैरियर ख़त्म हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस हैं जो जिस पर हम आगे चल के जिक्र करेंगे, बात करेंगे उस पर भी किस तरह से तरसील का जो ज़रिया है। अब फासलाती निज़ाम तालीम के तरसील का जो एक ज़रिया है वो आप देख रहे हैं कि आज जिस माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो सबसे अहम रोल उसने अदा किया है रेडियो ने।
1: जी
0: रेडियो ही के जरिए आए
1: जी जी
0: फासलाती निज़ाम तालीम जो है वो कामयाब हुई है, और यानी कि लाजिम और मलजूम है ये एक दूसरे के साथ
1: जी जी
0: ना। अब रेडियो का सहारा लिए बिना तरसील जो है हम फासलाती निज़ाम की नहीं कर सकते हैं। रेडियो का अहम किरदार इसमें रहा है। अब रेडियो का आप देखें कि रेडियो का जो मकासिद हैं, अब उसमें इतलात
1: जी जी
0: और तालीम और तरसील,
1: जी
0: देखिए कितना हसीन इम्तिजाज है
1: बहुत
0: इसमें,
1: बढ़िया जी
0: और इस तालीम को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना, और रेडियो को अब आज के वक्त में, आज इस अहद में हम बात कर रहे हैं, जिस
1: बिल्कुल
0: ज़माने में ये एक डिजिटलाइज یعنی کہ ہم جس کو عالمی گاؤں کہہ لیں
1: بالکل
0: یا پھر اس کو

0: दूसरे अल्फाज में हम कह लें कि ये एक मीडिया कल्चर में हम जी रहे हैं, आप एआई का ज़माना है, सब चीज़ें हैं, लेकिन रेडियो इस बात के लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि 100 साल के आसपास जो आपने
1: बिल्कुल
0: एक सफ़र इसने तय किया है, और कोई भी ईजाद जो है वो आपने एक तशख्खुस इस तरह से बरकरार रखा उसने कि आज भी उसकी मानवीयत और उसकी अफादियत उसी तरह से है जिसके ज़रिए से हम फासलाती निज़ाम तालीम की तरसील कर सकते
1: और
0: हैं,
1: दिलचस्प
0: इसका
1: बात
0: सहारा ही
1: यह
0: लेते हैं। अभी
1: है
0: आपने जिक्र किया है कि
1: जी
0: बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके अपने अपने चैनल हैं,
1: जी
0: उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, जिसे आप ज्ञानवाणी का जिक्र आप कर रहे थे,
1: कम्युनिटी
0: यूनिवर्सिटीज़
1: रेडियो बहुत चल रहे हैं हर यूनिवर्सिटी
0: बिल्कुल
1: के।
0: हर
1: जी
0: यूनिवर्सिटी का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन
1: जी
0: है।
1: जी
0: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे कि ज्ञानवाणी एक चैनल है
1: बहुत
0: जिसपे
1: जमाने से काम चल
0: सात
1: रहा है।
0: से 8 घंटे तक जो है
1: जी
0: तालीम, जो हमारा सेल्फ लर्निंग
1: जी
0: मटेरियल
1: जी
0: है,
1: जी
0: उसको आसान सहल जबान में, रवां जबान में तालब इल्म को मुखातिब करके वो एक लेक्चर हम उस पर प्ले करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, उससे बहुत सारे तलबा मुस्तफ़ीद होते हैं।
1: उसी तरीके से
0: जी
1: एनआईओएस में मुक्त विद्यावाणी रेडियो चैनल है
0: जी
1: जिससे लाखों की तादाद में बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। जी
0: बिल्कुल
1: तो असगर अली साहब,
0: जी
1: आपने अभी एक पॉइंट की तरफ इशारा किया, चूंकि उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि फासलाती निज़ाम तालीम की वो अहमियत नहीं है जो एक रेगुलर सिस्टम की, और ये हमने महसूस भी किया है, जहाँ भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। मैं बताना चाहता हूँ अपने सामीन को, तालिब इल्मों को, ठीक उसी तरह जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सर्टिफिकेट की वैल्यू, उसी तरह से एनआईयूएस की भी सर्टिफिकेट की वही वैल्यू है जो सीबीएसई की है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की भी और मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की भी वही वैल्यू है जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड की वैल्यू है। इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कोई ज्यादती कहीं करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ ग्रीवेंसेस सेल बने हुए हैं, शिकायत के ऑफिस हैं
0: बिल्कुल
1: हमारे यहाँ भी, इंदिरा गांधी में भी होंगे, हर जगह हैं, तो आप बात कर सकते हैं। देखिए किसी इस बुनियाद पर कि हम आपको नहीं लेंगे, आप एनआईओ से आए हैं या इग्नू से आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नदीम साहब, जो अभी लियाकत अली साहब ने कहा कि एक रेगुलर सिस्टम और फासलाती निज़ाम तालीम में जो मुख्तलिफ तरह के ड्रॉप आउट बच्चे जो अभी हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, इसमें भी फासलाती निज़ाम तालीम बहुत मदद करता है। तो जो ड्रॉप आउट हैं आपके यहाँ, आप महसूस करते हैं, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ से भी, क्या ऐसे भी तालिब इल्म हैं जो उसमें बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं?
2: देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, और फासलाती निज़ाम तालीम का तो मकसद ही यह है कि किसी भी तरह या जिस भी तरह से तालीम दी जाए वो दे दी जाए और लोगों को मिल जाए। हम अगर माजी में जाते हैं हिंदुस्तान से इतर अलग, तो हम ये देखेंगे कि रशिया के अंदर लिटरेसी मिशन चला तो
1: जी
2: फासलाती निज़ाम तालीम के
1: जी
2: तहत
1: जी
2: ही चला, और ये रेडियो ने बहुत बड़ा किरदार उसके अंदर अदा किया है। हम क्यूबा की मिसाल ले सकते हैं,
1: जी
2: वहाँ पर सोशल एजुकेशन दी गई ख़ास तौर पर बालिग लोगों को, तो उसके लिए भी रेडियो का ही सहारा लिया गया। और ड्रॉप आउट की जहाँ तक बात है, तो हमारे पास आज़ादी का इतना लंबा वक्फ़ा गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरी तरह से हम हर बच्चे को, सर्व शिक्षा अभियान हमने चलाया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी चला दिया जो बालिग लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए चलाया, सोशल अवेयरनेस के लिए, और लोग कुछ पढ़ लिख लें, बावजूद उसके अभी भी हम उस तरह की तालीम हर किसी को नहीं दे सकते जिस तरह की तालीम दरकार है हिंदुस्तान के हर बच्चे को। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो फासलाती निज़ाम तालीम से जुड़े, और ये हमारी मोरल ड्यूटी है बीइंग ए टीचर कि हम लोग अगर किसी मजबूरी के तहत बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ पा रहा है जुड़कर हमसे, यानी वो अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, घर की परेशानी है, उसकी दीगर परेशानियाँ हैं, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है, और वो देही इलाकों की लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, तो हम कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करें, तरगीब दें कि वो फासलाती निज़ाम तालीम की जानिब आएँ। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए तो ये एक, मैं बोलूं अगर हिंदी में, तो वरदान है,
1: नेमत है, ये
2: नेमत है, एक
1: नेमत
2: बड़ी नेमत
1: बिल्कुल।
2: है।
1: डॉक्टर असगर अली साहब, आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे दोनों तरह के सिस्टम हैं, फासलाती निज़ाम तालीम आप देख रहे हैं और रेगुलर सिस्टम, तो आप क्या इसमें महसूस करते हैं? इधर से उधर, उधर से इधर लोग आते हैं, या आप किसी को मशवरा देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से आ
0: इस
1: जाइए?
0: तरह का निजाम है मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि अगर कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि जो है ना हम रेगुलर सिस्टम से जुड़े,
3: तो इस तरह का प्रावधान जो है ना, इस तरह

0: का निज़ाम है। रहा सवाल कि, और ये पहले से भी होता रहा और अभी भी जो है ना, ये फर्स्ट ईयर में जो है ना बच्चे जो है ना स्विच ओवर कर सकते हैं अगर जगह खाली है तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो दीगर जो फासिलाती निज़ाम तालीम का जो इदारा है उसमें एक फ़र्क आप ये महसूस करेंगे, जैसे एज के हवाले से अगर आप देखेंगे
1: जी,
0: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है ना सब फ्रेशर हैं, यंग बच्चे मिलेंगे
1: अच्छा,
0: आपको अक्रॉस द कोर्स। मोस्ट ऑफ द बच्चे वो हैं जो जिनको क्या कहते हैं कि रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला, वो बच्चे जो है ना इसमें
1: सीधे ट्वेल्थ
0: आते
1: करके आपके यहाँ फ्रेशर तालिबिल्म आ जाते
0: जी।
1: हैं बीए में।
0: रहा सवाल, एक सवाल आपने किया था कि ये जो नोशन है कि अभी भी जो है ना ये फासिलाती निज़ाम तालीम को हकीर समझा जाता है,
1: जी,
0: तो ये नोशन था या है भी कुछ हद तक
1: अब
0: जो है
1: ऐसा
0: ना,
1: ऐसा खत्म हो रहा है।
0: लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दूर हो गई हैं, जो क्या कहते हैं कि फासिलाती निज़ाम तालीम के बच्चों को एक मतलब महदूद कर देता था, वो जो है ना बिल्कुल उस बैरियर को तोड़ दिया है, वो बैरियर ख़त्म हो गया है,
1: जी
0: वो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बिल्कुल एक आज़ाद माहौल में अपनी तबीयत के हिसाब से अपने च्वाइस के हिसाब से
1: बिल्कुल,
0: सेलेक्ट अपना सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है और अपना गोल भी सेट करना है। तो ये चीज़ें हैं और ये जो ये नोशन भी ख़त्म हो रहा है। तीसरी चीज़ के पहले कोर्सेज वगैरह भी जो है ना, जैसे मैं अपने खासतौर से DU के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ महदूद कोर्सेज थे, ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, रवायती कोर्सेज थे, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, MCom, MA, मैनेजमेंट नहीं था, BLib नहीं था, क्या कहते हैं कि और भी दीगर जो है ना इस तरह के कोर्सेज नहीं थे। वो सारे कोर्सेज जो है ना अब मतलब कि शुरू हो रहे हैं, शुरू हुए हैं, अच्छे खासे कोर्सेज शुरू हुए हैं और उसमें एक बड़ी तादाद है बच्चों की। और कहीं कहीं तो अब ऐसा लगता है कि जो रेगुलर के जो बच्चे हैं उन बच्चों से जो है ना आगे हैं जो है ना ये फासिलात निज़ाम तालीम के बच्चे।
1: क्या बात है नदीम साहब, आप कुछ कहना चाहते थे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो तलबा हैं हमारे यामोजगार हैं फासिलाती निज़ाम से जुड़े हुए, मैं उन्हें इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी तालीम किसी भी तरह से रिवायती तालीम के मेयार के हिसाब से कम नहीं, अपने अंदर खुद एतमादी लेकर आएँ। और जहाँ तक अभी बात हो रही है, हमारे दोनों ही मेहमानों ने बताया, साथियों ने मेरे, कि उम्र वाला एक मामला है, तो वो मामला अभी मेरे सामने ही आया है क्योंकि उम्र की एक हद है डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली एजुकेशन की तरफ से। तो ये जो बाउंडेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ और ये ज़रूरत भी है कि उसे कुछ हद तक कम करना चाहिए, ख़ासतौर पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी।
1: मैं
2: किसी भी उम्र का बच्चा आ सकता है,
1: मैं उधर ही आता हूँ। पहले मैं बुनियादी तौर पर बता दूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहाँ बुनियादी तालीम भी है। इसमें सिस्टम यह है 3-5-8, जिसे ABC लेवल कहते हैं। इसके अलावा 10-12 है, 10-12 जो है नेशनल लेवल पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मीडियम में है। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी वहाँ पर है सारा कोर्स। जैसे हम उर्दू पे ही अब आ जाते हैं एकदम, अगर कोई तालिबे इल्म हमारा 10वीं उर्दू मीडियम में करना चाहता है तो सारे ज़बानों की, सारे सब्जेक्ट की किताबें जो हैं, सॉरी ज़बान नहीं, सारे मजामीन की किताबें जो हैं वो उर्दू में मौजूद हैं। उर्दू में एडमिशन हो जाएगा, उर्दू में ही इम्तहान होता है। उसी तरीके से, अच्छा, यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं है, मतलब 14 साल से आपकी 100 साल की उम्र हो सकती
2: है,
1: ये रेगुलर सिस्टम की तरह नहीं है। दूसरे, आपका दाखिला 5 साल के नहीं हो गया, आप 1 साल में करिए, 2 में करिए, 5 में करिए, और पास किए हुए मजामीन जमा होते रहते हैं। फ़ौरन अगर आप 5 साल में भी नहीं कर पाए तो री एडमिशन मिल जाता है। ये तो हमारे यहाँ 10वीं 12वीं ओपन स्कूल में है। और दूसरे बोर्ड में भी जो तालिबिल अगर किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो उनके पास किए हुए 2 मजामीन NIOS में ट्रांसफ़र करा के और 3 फ़ौरन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, उससे दे के भी सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। ये तो स्कूलिंग की बात हुई। डॉक्टर लियाकत साहब, अब आते हैं हम आपकी तरफ, चूँकि आपके यहाँ ग्रेजुएशन होता है, आपके यहाँ क्या तरीका है?
3: देखिए, इसमें सबसे,
1: और उर्दू के ताल्लुक से भी बात,
3: उर्दू के ताल्लुक से ही हम बात करेंगे इसमें। देखिए, NIOS जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए पैदा करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हायर एजुकेशन है, ट्वेल्थ करने के बाद ही बच्चा दाखिला ले सकता है और ट्वेल्थ जो है NIOS करवा के हमारे पास स्टूडेंट्स को भेज देता है। जो बच्चे ट्वेल्थ नहीं कर सकते हैं वो एज बैरियर की वजह से, जो अभी नदीम साहब ने जिसका जिक्र किया है, तो ये एक हमारे लिए खुशाइंद बात है। दूसरी बात, एक वजाहत में ये करना चाहूँगा कि अभी आपने जो जिसका जिक्र किया था कि ये बहुत सारे ऐसे शक व शुबहत हैं या बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ये हमारे डिस्टेंस या ओपन लर्निंग की जो डिग्री है वो वैलिड होती है कि नहीं होती है, तो इसके लिए हमें बिल्कुल जो है मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैलिड है। और इसमें आप देखिए अभी जो ट्रेंड चला है, अब बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर साहब, देखिए कि अभी इस वक्त में जितने भी तलबा जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना वक्त रवायती तालीम में ज़ाया नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ में अपने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और डिस्टेंस से वो अपनी

0: इसमें हमारे तरफ आ रहे हैं। अब उर्दू की बात करते हैं हम, अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्वयं पे, आप देखिए कि कम से कम 7 या 8 कोर्सेज हमारे उर्दू के चल रहे हैं।
1: जी
0: और मैं आपको ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए कि हमारे यहाँ यूजी लेवल की कम से कम 4 या 5 डिग्रियाँ हैं उर्दू की, बीए
1: जी
0: ऑनर्स है, बीए
1: जी
0: अप्लाइड। आज ये
1: जी
0: देखिए कि
1: जी
0: हमारे यहाँ सबसे पहली फासलाती निज़ाम तालीम के तहत जो है किसी भी रवायती तालीम के जरिए आपको उर्दू में बीए अप्लाइड नहीं मिलेगा,
1: जी
0: ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये पहल की है कि उसने बीए अप्लाइड उर्दू एक प्रोग्राम लॉन्च किया और अच्छी खासी इनरोलमेंट भी हमारी उसमें हो रही है। वो क्या है कि उसमें स्किल बेस्ड ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो तलबा को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका फ्यूचर, उनका
1: जी
0: मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं,
1: रोशन कर सकते
0: रोशन कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उससे हमने कुछ एमओयू किया है, उनसे हमने कुछ कोर्सेज लिए हैं। उसमें हम उर्दू के तलबा को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप भी देते हैं, बच्चे उसे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं।
1: NIS में उर्दू में कोर्सेज बहुत सारे हैं जो उर्दू मीडियम में हैं, वोकेशनल कोर्सेज। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की क्या सूरत हाल है
2: मेरे यहाँ जो है कि
1: फासलाती निज़ाम तालीम के ताल्लुक
2: जी
1: से?
2: जी वो बीए प्रोग्राम है
1: जी
2: और ऑनर्स वगैरह नहीं है। कुछ कोर्सेज हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है ना अप्लाइड उर्दू जो बता रहे थे कि एक न्यू ने लॉन्च किया है, तो उस तरह से कोशिश की जाएगी कि जो है ना कुछ इस तरह के कोर्सेज जो है ना शुरू किए जाएं। लेकिन अभी अभी जो मामला है हमारे यहाँ रवायती कोर्सेज हैं। दूसरी चीज़ मैं अभी एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे उर्दू की बात आती है ना तो आम तौर पे बच्चे जो है ना जबान समझ लेते हैं और थोड़ा जो है ना उसको एक कह लीजिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि अच्छा हमारी मादरी जबान है हमसे कर लेंगे। लेकिन जहाँ ऑनर्स और ग्रेजुएशन और इसकी बात आती है तो फिर मामला बिल्कुल बरक्स हो जाता
1: जी
2: है। वहाँ
1: जी
2: पे शायरी पढ़नी है, वहाँ पे सारे जो भी अदब का जो मतलब नॉवेल पढ़ने हैं, मुख्तसर अफसाने पढ़ने
1: बिल्कुल
2: हैं,
1: बिल्कुल
2: कसीदे पढ़ने हैं, तो जबान से बिल्कुल इसका मामला जो है ना अलग हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने एक चीज़ और महसूस किया है कि जो हमारे स्कूल्स हैं जैसे NIOS हैं या और भी जो रेगुलर स्कूल्स हैं वहाँ वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना हमें उनसे कनेक्ट करके थोड़ा सा जो है ना उससे इंटरेक्ट करके उनसे एक जो है ना कि थोड़ा सा जो है ना कुछ कुछ चीज़ों पे तवज्जो दी जाए कि बच्चों के अंदर कम से कम जो है ना वो लिखने वाली जो वो तहरीरी सलाहियत हो वो पैदा हो जो है ना,
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
2: उसकी उसकी बड़ी कमी महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब आमतौर पे जो है ना आपने इवेल्युएशन किया होगा जो है ना आंसर शीट वगैरह जो है ना तो उसमें बहुत ही खराब सूरत हाल
1: सही
2: रहती है।
1: बात है अजहर अली साहब,
2: एक
1: जो
2: चीज़
1: आप
2: और मैं
1: बात
2: ऐड
1: कर
2: करना चाह
1: जी
2: रहा हूँ सर कि अब जैसे रहा सवाल जैसे बुक के हिसाब से देख किताब के हवाले से उर्दू एज ए मीडियम और उर्दू एज ए डिसिप्लिन, तो उर्दू एज ए डिसिप्लिन में तो क्या कहते हैं अगर एज ए डिसिप्लिन हम अगर उसको एडॉप्ट करते हैं अख्तियार करते हैं तो वहाँ पे तो कमोबेश मटेरियल जो जो मवाद है स्टडी मटेरियल वगैरह है वो सब काफ़ी हैं और उसमें भी कमी है। लेकिन जहाँ बात आती है उर्दू एज ए मीडियम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना जैसे पॉलिटिकल साइंस
1: जी
2: हो
1: जी
2: हिस्ट्री
1: जी
2: हो या और दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे कमी महसूस होती है। हमारे बच्चों को उतनी आसानी नहीं होती है, सोशल मीडिया से भी उतना हेल्प नहीं मिल पाता है जितने और दीगर सब्जेक्ट में बच्चे करते हैं मतलब हेल्प ले लेते हैं सोशल मीडिया से या और दीगर इदारे से या वेबसाइट से या, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है।
1: नहीं, मैं इसी बात का
2: एक
1: आपको जवाब
2: एक
1: देता
2: चीज़
1: हूँ।
2: और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो फासिलाती निज़ाम तालीम है उसमें जो टीचर की ट्रेनिंग है जो फासिलाती निज़ाम तालीम से जुड़े हुए हैं उनकी जो ट्रेनिंग है एक स्पेशलाइज नहीज पे होनी चाहिए।
1: ये अच्छा पॉइंट है,
2: वहाँ वहाँ
1: अच्छा पॉइंट है।
2: पे जो है ना उर्दू में उस तरह से जो है ना एक बेहतर निज़ाम नहीं है। आपने जिक्र किया है कि मौलाना आज़ाद इस पे अच्छा खासा काम कर रहा
1: नहीं,
2: है।
1: वहाँ पर
2: बिल्कुल
1: उर्दू मीडियम में काम हो रहा है। मैं
2: जी
1: एक
2: बिल्कुल
1: चीज़
2: बिल्कुल सही
1: देखिए,
2: कह रहे हैं
1: वक्त हमारा जो है बहुत करीब आ गया प्रोग्राम ख़त्म करने का। एक
2: जी
1: बात कहकर हम प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि एक तो यह है कि
2: जी
1: जो उसका निसाब है फासला निज़ाम तालीम का, चाहे NIOS का हो या इंदिरा गांधी का हो या मानू का हो, इनका खुद सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। तालिबे इल्म को टीचर की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से न सिर्फ زبان کی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو دوسرے مضامین جن کی میڈیم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی بہترین ہے۔ پھر بھی اس کے علاوہ پرسنل کانٹیکٹ پروگرام یعنی ذاتی رابطہ پروگرام چھٹی کے دنوں میں طالب علموں کے لیے ہوتے ہیں، جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا ریڈیو کے ذریعے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوتے ہیں ذاتی رابطہ پروگرام، اور ان کے اسٹڈی سینٹر پہ بھی ہوتے ہیں۔ خیر آپ لوگ یہاں تشریف لائے، ڈاکٹر

0: अली साहब, डॉक्टर असगर अली साहब, डॉक्टर नदीम अहमद और मैं आपका यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे मौजू पे हमने गुफ्तगू की, यकीनन हमारे सामीन को इससे बहुत मुस्तफीद होंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज का ये प्रोग्राम अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।
1: फासिलाती निज़ाम तालीम और उर्दू, इस उनवान के तहत अभी आप ये मुज़ाकरा सुन रहे थे। तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार सैफ़ी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। 4 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से भेंट की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। ये मुलाकातें नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष की बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। श्री शाह ने कहा कि भारत आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भागीदार के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। इसके साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया था। निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति

0: Student Bhavya Ranjan has created history by securing 499 out of 500 marks in the CBSE Class 12 Arts examination and emerging as the All India topper. Bhavya, a resident of Pahadi village in Kodarma district, has brought pride to the entire state with her achievement. She credited her success to her parents, teachers and disciplined study routine and expressed her desire to become an IAS officer and serve the nation. The crucial talks were held between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping in Beijing today. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to have dominated the agenda. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinal. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम है रूबी। अंतिम बार इन्हें 27/2/2026 को देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम में देखा गया था। आयु 17 साल है। शरीर की बनावट गोल चेहरा और रंग सांवला है। सामान्य शरीर है। कद 5 फुट है। रूबी दिनांक 27/2/2026 को बिना बताए घर से देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम से कहीं चली गई हैं और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना सेक्टर 9A गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है गजेंद्र सिंह। अंतिम बार इन्हें 23/2/2026 को वसई गुरुग्राम में देखा गया है। आयु 42 वर्ष है। शरीर की बनावट गोल चेहरा है और रंग सांवला है। हष्टपुष्ट शरीर है। गजेंद्र का कद 5 फुट 5 इंच है। ये दिनांक 23/2/2026 को बिना बताए घर से चले गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना सेक्टर 9A गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है आवेश। इनके पिता का नाम है मोहम्मद सैफी। अंतिम बार इन्हें 16/7/2026 को P32 गली नंबर 2 काली माता मंदिर गीता कॉलोनी दिल्ली में देखा गया है। इनकी आयु 20 वर्ष है। शरीर की बनावट लंबा शरीर है। कद 6 फुट है। इनका पता है P32 गली नंबर 2 काली माता मंदिर रमेश पार्क गीता कॉलोनी नई दिल्ली। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो थाना प्रभारी थाना गीता कॉलोनी नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है खुशी कुमारी। इनके पिता का नाम है रामविलास भगत। अंतिम बार इनको 4/10/2025 झुग्गी नंबर 12 ब्लॉक 12 गीता कॉलोनी नई दिल्ली में देखा गया है। खुशी की आयु 16 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर है। कद 5 फुट है। गाल पर कटे का निशान है। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना गीता कॉलोनी नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं।

0: मृत व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम बार पोस्ता रोड, कबूतर चौक, फुटपाथ, गीता कॉलोनी, दिल्ली में इन्हें मृत पाया गया है। आयु भी ज्ञात नहीं है। शरीर की बनावट पतला शरीर है। इनका कद 5 फुट 5 इंच है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना गीता कॉलोनी, नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है पूनम। इनके पिता का नाम है रामराज। निवासी पाराकला, पोस्ट पाराकला, राय बरेली, उत्तर प्रदेश। हाल का पता है Z140, न्यू पालम विहार, गुरुग्राम। अंतिम बार इन्हें इनके घर पर ही देखा गया है। इनकी आयु 16 वर्ष है। कद 5 फुट है। शरीर की बनावट हष्टपुष्ट शरीर है। रंग सांवला है और चेहरा गोल है। ये अपने घर से बिना बताए चली गई हैं और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बाजघेरा, गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है अंकित नागर। इनके पिता का नाम है विक्रम नागर। निवासी G131, न्यू पालम विहार, सेक्टर 110, गुरुग्राम। अंतिम बार इन्हें G131, न्यू पालम विहार, सेक्टर 110, गुरुग्राम में 20/3/2026 तक देखा गया है। इनकी आयु 32 वर्ष है। कद 5 फुट 8 इंच है। शरीर की बनावट रंग सांवला है और चेहरा लंबा है। शरीर स्वस्थ है। चेहरे का रंग सांवला है। ये बिना बताए अपने घर से चले गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना बाजघेरा, गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है निशा। इनके पिता का नाम है हरिनाथ मिश्रा। अंतिम बार इन्हें 2025 को लक्ष्मी विहार, गुरुग्राम में देखा गया है। निशा की आयु 32 वर्ष है। निशा बिना बताए अपने घर से चली गई हैं और अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, Sector 9A, गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, 9540122521। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में सूचना।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया।

0: क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 4:20 होने को हैं और 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: of publication of this advertisement in the Employment News. And the website is www.mod.gov.in. National Investigation Agency has invited nominations for deputation posts of Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police for all India postings. There are two vacancies for Additional SP in Pay Matrix Level 11 and three vacancies for Deputy SP in Level 10. Eligible officers are required to submit applications through proper channel along with RPAS, vigilance clearance and other supporting documents within 45 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application formats is available on the NIA recruitment portal. The website is www.nia.gov.in. I repeat the website, kindly refer to www.nia.gov.in. National Institute of Social Defence under the Ministry of Social Justice and Empowerment has invited applications for filling up one post of Deputy Director Training, NCDAP, on transfer or deputation basis. The institute is located in Dwarka, New Delhi. The post carries the pre-revised pay scale of 10,000 to 15,200. Eligible candidates are required to submit their applications within 45 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed information regarding eligibility criteria, application procedure and terms of deputation is available on the official website. That is at www.nisd.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन सभी पदों के लिए एक एक पद की रिक्ति उपलब्ध है। पद हैं रीडर, वाक रोग विशेषज्ञ समूह ए, पुनर्वास अधिकारी समूह ए, व्याख्याता शिक्षा समूह ए, व्याख्याता श्रवण वाक रोग विज्ञान समूह ए, व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी, लेखाकार समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समाज कार्य समूह बी, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी, तकनीकी सहायक ऑडियो विजुअल समूह बी, मनोवैज्ञानिक समूह बी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार समूह बी और डेटा एंट्री ऑपरेटर समूह बी। इनमें व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी के दो दो पद उपलब्ध हैं। अहमदाबाद और छतरपुर स्थित CRC में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास आयुक्त कार्यालय के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के दो पद उपलब्ध हैं। इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट www.csez.gov.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है, जिसका पता है www.cwc.gov.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी विमान अनुरक्षण अभियंता के एक पद के लिए आमंत्रित कर रहा है आवेदन। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट को देख सकते हैं igrua.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और ले चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के डेडलाइन सेगमेंट में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, उन छोटे छोटे कामगारों की जिन्हें हम कहते हैं कि वो वाकई में अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार उनको वो मौके नहीं मिलते हैं जिससे कि उनकी प्रतिभा को एक मंच मिले और उनको आर्थिक सशक्तिकरण मिले। लेकिन सरकार की जो अब योजनाएं आई हैं उनसे उन्हें मिल रहा है सशक्तिकरण। किस तरह से मिल रहा है आपको बताएंगे डेडलाइन में। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार जागृति, and to our listeners, namaskar, good afternoon, well, good day everybody. Well, this is Parikrama, and Jagriti already told you there is so much that we'll explore, that we'll unfold and we'll discuss about. There is so much to do. Well, yes, selection of news, then our discussion segment, Dateline India. We will be discussing about MSMEs in great detail in just a few moments, but first let us begin with the headlines, Jagriti, straight away.
1: Bilkul. भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू।
2: इंडिया एंड यूएई सेट टू टेक बायलैटरल टाइज टू नेक्स्ट लेवल ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू अबू धाबी टुमारो।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
2: Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management.
1: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।
2: And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. So listeners, this is our discussion segment, Dateline India. Let's start with it. Well, again, empowering the grassroots economy through rural and semi-urban MSME, such a great topic. So there was a time, Jagriti, when a small shop in a village or somewhere else as well, or tiny workshop in a semi-urban town survived only on hope, on hard work and word of mouth as well.
1: बिल्कुल। और एक कुम्हार जो होता है वो अपने साप्ताहिक बाजार में खरीदारों का इंतजार करता है। शगुन, एक जो दर्जी दिन रात कपड़े सिल रहा है वो भी इंतजार करता है और इस चिंता में रहता है कि क्या उसे समय पर भुगतान मिलेगा।
2: विलियस एंड अ वुमन रनिंग अ होममेड पिकल बिजनेस वंडर्ड यूज्ड टू वंडर इफ अ ड्रीम कुड एवर ग्रो बियॉन्ड हर नेबरहुड एंड पीपल वुड लाइक टू taste it, people would get to taste it basically. Today that story is changing steadily but powerfully. India's MSMEs, micro, small and medium enterprises are becoming the heartbeat of the nation's growth story.
1: बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे उद्यम हैं लोगों के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनसे तस्वीर बदल रही है।

0: और खास बात यह है कि ये उद्यम भारत की जीडीपी में 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 49% का योगदान देते हैं और लगभग 32 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराते हैं। तो आप ये फिगर देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर किस तरह से अपना विस्तार कर रहा है। विदेश भेजे
1: ह्यूज
0: जाने
1: नंबर
0: वाले बिल्कुल और विदेश भेजे जाने वाले जो मसालों के बॉक्सेस होते हैं या फिर कहें कि हाथ से बने जो कपड़े होते हैं या फिर हर छोटे सर्विस सेंटर के पीछे कहीं ना कहीं एक एमएसएमई ही होता है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दे रहा होता है। तो असल में क्या होता है, जब सबसे छोटे उद्यमी को ये महसूस होने लगता है कि उसे भी समर्थन मिल रहा है।
1: Well, yes, and the answer, if we explore it further, it can be seen in thousands of towns, villages, districts. Well, if we take an example here, take a small woman-led millet snacks business in the district of Odisha. So, a few years ago, the owner struggled to get a bank loan even because she had no collateral. Today, through government-backed schemes and digital registration platforms as well, businesses like hers, these millet snacks, they are entering the formal economy. And Jagriti, it's getting easier to access credit and find customers far beyond their local markets.
0: बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो यही असली बदलाव है
1: जी
0: क्योंकि छोटे से छोटा जब भी उद्यम शुरू होता है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर मार्केट की रीच, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते हैं। बिजनेस शुरू हो गया लेकिन रन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा है जो बदलाव है, उद्यम और उद्यमियों को जो सहयोग मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अब 7 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है।
1: वाह
0: लाखों उद्यमियों के लिए ये महज एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि जो पहले कभी उन्हें बहुत दूर लगा करते थे, उन अवसरों का प्रवेश द्वार है ये।
1: एंड अ नेशन कैन नॉट बिकम ट्रूली सेल्फ रिलायंट इफ इट्स स्मॉलेस्ट क्रिएटर्स दे रिमेन इनविजिबल राइट एंड दैट इज प्रिसाइसली वेयर दीज रिफॉर्म्स आर मेकिंग अ डिफरेंस वेल यू वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन अ ग्रेट स्केल द गवर्नमेंट्स फोकस हैज़ बीन वेरी क्लियर टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट्स इकोनॉमी फ्रॉम बॉटम अपवर्ड
0: और इससे भी ज़्यादा उत्साहजनक बात ये है कि जो ट्रांसजेंडर उद्यमी हैं उनके लिए विशेष सहयोग दिया जा रहा है इसमें, जिसमें गारंटी कवरेज में बढ़ोतरी और फीस में छूट शामिल है। इससे एक सशक्त संदेश जाता है कि विकास पर सभी का अधिकार होना चाहिए और सभी का अधिकार अभी है। जिन लोगों को भी अवसर मिलता है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए अधिकार भी मिल रहे हैं।
1: So MSMEs, they are the backbone of our economy now. And what happens when a business has potential but needs investment to grow bigger? Well, this is the question which we also have been discussing so far. And this is where the Self-Reliant India Fund steps in. It is designed to provide equity support to the MSMEs. The fund has already supported hundreds of enterprises with investments worth thousands of crores. So somewhere in Gujarat, a rural textile unit may be scaling up production and hiring more workers.
0: और अगर पूर्वोत्तर के किसी हिस्से में स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय की बात अगर हम करें तो अब वो राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। वो सिर्फ जहां पर लोकल मार्केट है वहीं तक नहीं है, सरकार का सहयोग है या फिर तमाम ऐसे उनको सपोर्ट मिल रहे हैं जिससे कि वो नेशनल लेवल पर भी पहुंच रहे हैं।
1: डिफरेंट
0: और
1: स्टेट्स
0: बिल्कुल
1: यस
0: डिफरेंट स्टेट्स हैं, सेंटर पर अगर जब वो आ जाते हैं तो बाकी स्टेट्स की रीच भी उनके लिए इजी
1: एग्जैक्टली
0: हो जाती है। और ये सफलता की कोई इक्का दुक्का कहानियां नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक सशक्त भारत को आकार दे रहे हैं। क्योंकि भारत केवल क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अमीरों का ही जिसे कहना चाहिए देश नहीं है, यहाँ पर अमीर है, गरीब है, हर तरह का तबका है जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूत बना रहा है। और इसके
1: And
0: बाद
1: they're
0: अगर
1: getting
0: हम
1: great so many chances to do it right now.
0: बिल्कुल, और छोटे छोटे एफर्ट्स जब उन्हें कहीं सपोर्ट मिलता है, जो एफर्ट्स होते हैं, तो वो उनके लिए एक बड़ी सफलता की कहानी भी बन जाते हैं।
1: Well, right. And we customers and consumers, we avail benefits out of it, right?
0: बिल्कुल,
1: So many perks.
0: और हमें कई बार इससे जो वहाँ का लोकल, जैसे अभी आप बात कर रहे थे पिकल की,
1: Pickles.
0: पिकल्स हो गए या कहीं पर मिलेट्स के छोटे छोटे पापड़ हो गए,
1: Snacks.
0: तो वो जो लोकल का टेस्ट होता है वो हम सबको मिल जाता है।
1: True, true.
0: और अगर बात करें बीच में जो कोविड महामारी आई
1: हम्म
0: उसके बाद

0: आधुनिक इतिहास का वो सबसे कठिन दौर था. इसमें चीज़ें काफ़ी बदलें.
1: एंड they changed quite a bit, and many businesses they feared closure, shops they fell silent, orders of course they stopped coming, and yet millions of MSMEs they survived because of timely support through the emergency credit line guarantee scheme.
0: बिल्कुल. और बाद में कुछ रिपोर्ट्स जो आई उनसे पता चला कि लगभग 14,60,000 एमएसएमई खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए बनने से भी बचाया गया. इन आंकड़ों के पीछे असल में बहुत सी वजहें थी. जिसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो रेस्टोरेंट चल रहा था वो एक पारिवारिक व्यवसाय था जिसने कि अपने आप को मुश्किल दौर से बचाया.
1: Well, there was struggle at that time as well. And another long-standing struggle for MSMEs was delayed payments. Every small business owner knows this pain. So you deliver goods on time, you complete the service honestly, and the customer avails the benefits, but payment gets delayed for months. Meanwhile, salaries, they still have to be paid. So raw materials must still be purchased. Electricity bills, they do not wait. Even water bills.
0: बिल्कुल. सारे bills को time पर payment करना ही पड़ता है, पे करना ही पड़ता है. और इसलिए भारत ने और भी मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ इसका जवाब दिया. MSMED एक्ट के तहत खरीदारों के लिए ये ज़रूरी है कि वे माइक्रो और छोटे उद्यमों को 45 दिनों के अंदर पेमेंट कर दें. समाधान और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म व्यवसायों को डिजिटल तरीके से शिकायतें दर्ज करने और पेमेंट से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद भी कर रहे हैं.
1: And India's digital revolution, it is an economic revolution actually. One of the most heartwarming parts of this transformation is the support which is being extended to traditional artisans through the PM Vishwakarma scheme. So let's think of the hands that quietly build India every day. The blacksmith shaping iron tools, the weaver creating intricate fabrics which we get to wear then.
0: बिल्कुल. पत्थर को तराश कर सुंदरता गढ़ने वाले मूर्तिकार जो कि वर्षों तक बिना किसी पहचान या व्यवस्थित सहयोग के ही अपना गुजारा कर रहे थे, पीएम विश्वकर्मा योजना उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, टूल किट के लिए प्रोत्साहन, रियायती ऋण और एक औपचारिक पहचान प्रदान कर रही है. इस योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक कारीगर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.
1: And India is not only preserving tradition, India is modernizing tradition with dignity.
0: बिल्कुल. और पूरे देश में ऐसे लाखों प्रोजेक्ट रोजगार और आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई छोटा बिजनेस सफल होता है तो उसका असर सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उसे कहीं आगे तक पहुंचता है. बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, गांव आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं. और अगर देखा जाए तो क्योंकि गाँव में रोजगार नहीं है इसीलिए वहां से युवा पलायन करते हैं, तो अगर गाँव में खासकर इस तरह के एमएसएमई जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो डेवलप हों, लोग शुरू करें, तो वहां
1: पर स्टे होम विद देयर फैमिली.
0: बिल्कुल. पलायन की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर कि पलायन कर जाते हैं, गांव के गांव आप देखेंगे कि इस समय वहां पर लोग नहीं है, घरों पर ताले लगे हैं, तो ऐसे में वहां सशक्तिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं भी हैं वो भी मजबूत होंगी और हो रही हैं. कहीं ना कहीं जो ये अब योजनाएं शुरू हो रही हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए और इस सभी जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनसे हमारा देश और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है.
1: एंड यू एक्सप्लेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट सच इन ग्रेट डिटेल एंड नॉट ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड. इट्स नॉट ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू अर्बन पॉकेट्स बट ग्रोथ रीचिंग द लास्ट माइल. एंड परहैप्स दिस एंटायर स्टोरी लीव्स अस विद वन पावरफुल रियलाइजेशन. इंडियाज राइज इज नॉट बींग बिल्ट ओनली इन बोर्ड रूम्स और जॉइंट इंडस्ट्रियल पार्क्स. इट इज बिल्ट इन नैरो मार्केट लेन्स, रूरल वर्कशॉप्स, टाइनी स्टोर्स विद बिग ड्रीम्स.
0: बिल्कुल. हर पंजीकृत कारीगर, हर स्वरोजगार करने वाला युवा, हर पहली बार उद्यमी बनने वाला व्यक्ति, हर ग्रामीण उद्यम जो डिजिटल अर्थव्यवस्था में कदम रख रहा है, ये सभी मिलकर भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है.
1: First, we'll talk about Vijayawada. So, Akashwani Vijayawada is celebrating 90 years of service with special cultural programs and public outreach activities, a major highlight being Swar Sandhya, and this features music and traditional Garaga dance performances. The celebrations will conclude with a special walkathon in Vijayawada on 19th of this month. We have more details. Let's listen in.
2: Akashwani Vijayawada.

0: Explaining the celebrations, Akashwani Vijayawada Station's program head, G. Divya, said,
1: "Under the evocative theme, My Companion Akashwani, the station executed an extensive outreach program that bridged generations and celebrated the enduring spirit of radio. The festivities reached a crescendo on May 10th, coinciding with the Mother's Day at the Tummalapalli Kshetraya Kalakshetram. The evening featured a high-caliber musical concert by the renowned Sarvepalli sisters, followed by the vibrant display of Andhra heritage through a traditional Garaga folk dance. The success of the evening was evidenced by a houseful auditorium with every seat occupied by a diverse audience of listeners and art enthusiasts. The resounding success of these programs is a testament to the deep-rooted bond between Akashwani and its listeners."
0: As part of the concluding phase of celebrations, Akashwani Vijayawada will organize a special walkathon in the city on May 19th. The celebrations reflect Akashwani's enduring contribution to public service broadcasting and the preservation of culture over the past 9 decades. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
2: और विजयवाड़ा से आते हैं पुणे की ओर, जहां पर युवाओं में इस समय जो सबसे अधिक समस्या देखी जा रही है, नशीले पदार्थों की इस लत को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान किस तरह से कार्य करेगा, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता माधवी कुलकर्णी की इस रिपोर्ट में।
3: पुणे के युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसी विषय में ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट और ज्ञान प्रबोधिनी, इन दो संस्थाओं ने हाल ही में शहर में एक सर्वेक्षण किया। इसके आधार पर संयम नाम की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता होने के बावजूद वास्तविक रूप से इसके सेवन का स्तर चिंताजनक है। मित्रों के समूह और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संपर्क, साथ ही साथ लापरवाही के कारण नशे की लत का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए पुणे में ड्रग मुक्त प्रभाग अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा,
4: पुणे शहर में हमने ड्रग्स के विरुद्ध और नशे के विरुद्ध बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग स्तर पे हमने मुहिम चला रखी है, जिसमें एक हमने जो नवनियुक्त कॉरपोरेटर्स हैं उनका और पब्लिक का सहभाग लेने की दृष्टि से हमने एक ड्रग मुक्त प्रभाग, ये एक नया उपक्रम हमने शुरू किया है। जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलके पब्लिक की सपोर्ट के साथ हम ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध, ड्रग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो एडिक्टेड लोग हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़े पैमाने पे मुहिम चला रहे हैं। अभी तक हम ज्यादा कंसेंट्रेट सप्लाई चेन पे करते थे, अब हम कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां उनको काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेज रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो युवक है उनको एक उनको अवेयरनेस क्रिएट करना और थोड़ी सी उनके मन में एक डिटरेंस भी पैदा होना कि इस प्रकार के विषय पे जीरो टॉलरेंस है। साथ साथ कॉलेजेस और स्कूल्स के जो परिसर में जो टोबैको सेलिंग सेंटर्स हैं, पान के दुकान हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पे टारगेट की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुणे शहर से हम ड्रग्स को टोटली बाहर कर पाएंगे।
3: नशीले पदार्थों के खिलाफ इस कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस अभियान में समाज की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए पुणे से मैं माधवी कुलकर्णी।
5: Heading to Panaji now, the Goa Konkani Academy has launched a landmark project to ensure the architects of the Konkani language are never forgotten. A report.
6: The Goa Konkani Academy has officially announced the commencement of Konkani Bhasha Sahitya Silpakar course, an ambitious encyclopedia designed to chronicle the lives of those who shaped the region's linguistic and cultural identity. This major initiative seeks to document a wide array of contributors ranging from freedom fighters and poets to theatrists, researchers and digital media influencers. By creating this official record, the Academy aims to introduce future generations to activists and artists who championed the Konkani movement across various dialects and medium. The Academy is now inviting submissions from public to ensure the collection is globally recognized and comprehensive. Contributors must provide personal details, a record of their published works or performances, and mandatory photograph. All entries must be submitted in Devanagari script using Unicode within a 500 word limit. Families of late pioneers are also encouraged to participate to ensure those who dedicated their lives to language are included in this monumental archive. This project project represents a vital step in preserving the enduring legacy of Konkani heritage for years to come. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
2: और अब बात खेल के मैदान की, तो सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां पीवी सिंधु महिला सिंगल्स और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली श्यूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया।
5: In IPL cricket, Punjab Kings will take on Mumbai Indians in Dharamshala this evening at 7:30 PM. And now in some business news, benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. The Sensex gained 790 points to close at 75,399, while the Nifty added 277 points to settle at 23,690. For more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
7: On the 14th of May 1857, during the First War of Independence, Bahadur Shah Zafar set up a national government at Delhi. After the outbreak of the First War of Independence against British rule at Meerut on the 10th of May 1857, when the revolting sepoys of the British Indian Army came to Delhi and implored Bahadur Shah to accept their service, he responded to their appeal and assumed leadership of the uprising as the Emperor of Hindustan.
8: Along with his sons and other members of the royal family, Bahadur Shah went up to Chandni Chowk and addressed the patriotic forces. As the supporters of the uprising regarded him as their legitimate sovereign, the uprising against British rule started in many parts of the country in the name of Bahadur Shah.
7: Bahadur Shah set up a national government at Delhi on the 14th of May 1857, and all Hindu and Muslim officers, Raos and Rajas, were called to attend the court. He also desired cooperation from all and thus sent circulars to the Jagirdars and Amirs calling upon them to join the war against the British. For the next 4 months, Delhi remained as the main center of the First War of Independence.
8: We remember freedom fighter Arun Chandra Guha, who was born on the 14th of May 1892 in Barisal, Bengal. Guha ran Saraswati Library, through which he published his writings to arouse national sentiment. Guha also published a weekly journal titled Swadhinta that was banned in 1930, and four of its editors were convicted for sedition by the British.
7: Arun Chandra Guha joined the Jugantar Party in 1906. He was arrested and detained multiple times for his participation in the activities of this party. He was also arrested during the non-cooperation movement in 1920. After his release, he became a part of the West Bengal Pradesh Congress Committee. Subsequently, Guha joined the All India Congress Committee in 1923, where he continued as a member for 26 years.
8: Arun Chandra Guha was elected to the Constituent Assembly of India from West Bengal. He participated actively in the Constituent Assembly debates. He also served as a member of parliament in the first, second and third Lok Sabha. Guha was an avid writer. Some of his notable works include Aurobindo and Jugantar, Srishti or Sabhyata and Desh Parichaya. We also remember Sudhanshu Bimal Chanda, who hailed from Chittagong. Sudhanshu was an active member of the Anushilan Samiti. He was arrested for his revolutionary activities on the 31st of May 1935 and detained in the Chittagong jail. Put under village domicile at Keshavpur, Jessore in 1935, he died on the 14th of May 1936. We salute freedom fighter Sudhanshu Bimal Chanda.

0: In 1940, when the All India Azad Conference was convened in Delhi, Allah Bakhsh was chosen to preside over the session. When the Quit India movement was launched, he rented a big bungalow at Karachi to help Satyagrahis and also visited the Karachi jail to help them. In September 1942, when the Quit India movement was at its peak, he resigned from the Defence Council and relinquished the titles given by the British in protest.
1: Unfortunately, the brave nationalist Allah Bakhsh Soomro was assassinated on the 14th of May 1943 by one of the Muslim League extremists while he was travelling to his hometown of Shikarpur.
2: और आज प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि है. उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ था. हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वो ही रेडियो में लेकर आए. सुमित्रानंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना तंत्र विकसित किया जो आज भी नवीन प्रयोगों के साथ अग्रसर है. और आज ही महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर की पुण्यतिथि है. वे महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे. एक ओर आचार्य रघुवीर ने कोश की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडार संपन्न किया तो दूसरी ओर विश्व में, विशेषतः एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका संग्रह और संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया.
3: Today we are remembering the King of Blues, B.B. King, the blues guitarist, singer, songwriter and record producer. He introduced a sophisticated picking style of actually soloing based on fluid string bending, shimmering vibrato, staccato picking that influenced many later electric guitar blues players as well.

0: So he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1987 and is one of the most influential blues musicians in history, earning the name, which I started with, the King of Blues.
1: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन की आज जयंती है। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, उड़िया, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। मृणाल सेन ने फिल्मों में निर्देशन की शुरुआत 1956 में बंगाली फिल्म रात भोरे से की। 1958 में उनकी दूसरी फिल्म नील आकाशेर नीचे आई। इस महत्वाकांक्षी फिल्म में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चीनियों के जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाया और उनकी फिल्म 22 श्रावण 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल पर आधारित थी। मृणाल सेन हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रिय रहे। इनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। आइए सुनते हैं।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जागृति और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को
1: नमस्कार
0: नमस्कार। अतुल भाई
1: जी। पायल बहन
0: भाई, रोज की तरह ही आज भी हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर हुए हैं लोक रंजनी का ये प्यारा सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने सभी बहन भाइयों का हम करवाते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे लोकगीतों के साथ मनोरंजन।
1: बिल्कुल, तो सुनवाते हैं इंद्रपाल सिंह की आवाज़ में भाई ये

0: सासू ताने मारे मत ना, मेरे नाम आ जाया भीर, और भात मेरा कौन भरेगा, मेरे बाबर हुए फकीर। तो बहुत ही बढ़िया एक भात का गीत हमने अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाया इंद्रपाल सिंह की आवाज़ में। अतुल भाई
1: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं सुभाष नाथ की आवाज़ में भाई ये प्यारा सा लोकगीत, किस प्रकार से एक महिला अपने पति से जो है बागड़ जाने के लिए जो है इजाज़त मांग रही है।

0: हमारे भाई बहनों ने बहुत ही प्यारा सा एक लोकगीत सुना सुभाष नाथ की आवाज़ में।
1: बिल्कुल। और अब लक्ष्मीचंद और रामकला सैनी की आवाज़ में सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

भाई ने भी हमारे भाई सुनाए थे, लक्ष्मी चंद और रामकला सैनी की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत। तो और अब चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं सविता शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत, और इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता है तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज आपको धर्मेंद्र और
2: अनु गुप्ता का
1: एक बार फिर से नमस्कार। तो अनु, आज खेल तो बहुत सारे हैं, आज शुरुआत किससे की जाए?
2: धर्मेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें शुरुआत बैडमिंटन से करनी चाहिए।
1: तो चलिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर और सुनते हैं ये रिपोर्ट। बाज जैसी पैनी नजर, चीते जैसी चपलता, भेड़िये जैसी चतुराई वाले रैकेट गेम बैडमिंटन का एक बड़ा टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन 2026 इन दिनों चल रहा है। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है जो भारत के लिए अब तक मिला जुला रहा है। दिन की शुरुआत भारत के लिए काफी जोरदार रही, जब मेंस डबल्स की दुनिया की दिग्गज जोड़ी और इस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने मलेशिया के मोहम्मद हाइकल और ब्रायन जर्मी गुटिंग को आसानी से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन आपसी तालमेल और जबरदस्त नेट गेम के जरिए पहला गेम 21-12 से आसानी से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में मलेशियाई जोड़ी ने पूरा दम लगाया और मुकाबले को काफी करीब बनाए रखा, लेकिन आखिरकार ये गेम भी भारतीय जोड़ी ने 21-19 से अपने नाम कर लिया। इस जीत से चिराग और सात्विक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मेन सिंगल्स में सातवीं सीड लक्ष्य सेन के दमदार खेल का जलवा भी विरोधी के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्य ने इस मुकाबले में विरोधी को शुरू से अंत तक संभलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार शिकंजा कसा तो अंत तक उसे ढीला नहीं छोड़ा। इसी का परिणाम था कि विरोधी चीन के जू एक्ससी ने आसानी से 21-12 21-13 के स्कोर पर घुटने टेक दिए। हालांकि अनुभवी किदांबी श्रीकांत दूसरे दौर की बाधा को पार नहीं कर सके। उन्होंने चीनी ताइपे के ली यांगशु के सामने कड़ी चुनौती तो रखी, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट तक चले मैराथन मैच में विश्व में 29वीं वरीयता वाले श्रीकांत को 49वीं विश्व रैंकिंग वाले यांगशु से 16-21, 21-11, 18-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी और राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए। हालांकि महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की विश्व की 41वीं वरीयता प्राप्त एमली शुल्ज को 2 गेम में आसानी से 21-13, 21-15 से हराया। टूर्नामेंट में छठी सीड और विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर मौजूद सिंधु कल अपना अंतिम 8 का मैच खेलेंगी। उधर युवा देविका सिहाग प्री क्वार्टर फाइनल से आगे अपनी चुनौती नहीं ले जा सकी। अंतिम 16 के महिला सिंगल्स मैच में देविका को मेजबान देश की पिटचामोन उपाथनीपुथ ने 23-21, 21-11 से शिकस्त दी। इस मैच में ऐसा लगा कि देविका ने पहले गेम में ही अपनी सारी ताकत झोंक दी। दूसरे गेम में उन्होंने आसानी से हार मान ली। महिला सिंगल्स में ही एक और भारतीय खिलाड़ी मालविका बंसोड अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। उनका मुकाबला टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की यूफी चेन से है, जिनकी विश्व रैंकिंग 4 है। मालविका के लिए प्री क्वार्टर फाइनल का यह मैच कठिन माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि कल शाम के सत्र में मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। अशित सूर्या और अमृता प्रमुथेश, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे के साथ साथ ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को भी शिकस्त मिली थी। ईशा रानी बरुआ अपना महिला सिंगल्स मैच इंडोनेशिया की TR वीरियावान से हार गई थी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यही बात पीवी सिंधु ने साबित की है थाईलैंड ओपन में और ये बात साबित की है IPL में विराट कोहली ने। शतक आया है विराट कोहली का, किस मैच में, आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
2: रायपुर से IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने रन चेज में एक और मास्टर क्लास पेश करते हुए नाबाद 105 रन की धमाकेदार पारी खेली। ये कोहली का IPL करियर का 9वां शतक रहा। इस जीत के बाद RCB के 16 अंक हो गए हैं और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टीम अब अंक तालिका में नंबर 1 पर पहुंच गई है। वहीं KKR की ये हार उनके लिए बड़ा झटका साबित हुई है और अब प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें लगातार जीत की जरूरत होगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रायपुर की रोशनी में भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने शानदार स्विंग और लाइन लेंथ के साथ दबाव बनाया। फिन एलन ने 18 रन की तेज शुरुआत दी लेकिन जल्दी आउट हो गए। कप्तान अजिंक्य रहा ने भी 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 48 रन पर दो विकेट गिरने के बाद केकेआर की पारी को संभाला युवा अंकरेश रघुवंशी ने। उन्होंने बेहद संयम और आक्रामकता के संतुलन के साथ 46 गेंदों पर 71 रन बनाए। रघुवंशी ने कैमरॉन ग्रीन के साथ 68 रन की अहम साझेदारी की और फिर रिंकू सिंह के साथ 76 रन जोड़े। रिंकू सिंह ने अंत में तूफानी अंदाज में नाबाद 49 रन बनाए जिसमें दो शानदार छक्के शामिल रहे। रसिक दार की कसी हुई गेंदबाजी के बावजूद केकेआर ने मजबूत स्कोर खड़ा करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बना दिए। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते उतरी आरसीबी की शुरुआत भी थोड़ी डगमगाई जब चौथे ओवर में कार्तिक त्यागी ने जैकब बेथल को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद विराट कोहली पूरी तरह अलग ही लय में नजर आए। लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद कोहली ने इस मुकाबले में पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 92 रन की शानदार साझेदारी हुई। पडिक्कल ने 39 रन बनाकर बेहतरीन सहयोग दिया। बाद में रजत पतिदर और टिम डेविड के विकेट जरूर गिरे जिसमें मनीष पांडे ने एक जबरदस्त कैच लेकर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर अडिग रहे। अंतिम ओवरों में कोहली ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक की ओर तेजी से बढ़े। कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए जिसमें 11 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल रहे। ये रन चेस की एक यादगार पारी रही। सुनील नारायण ने एक विकेट लेकर 31 रनों की किफायती गेंदबाजी की और कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट 32 रनों के शानदार आंकड़े हासिल किए, लेकिन विराट की पारी के सामने केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण फीका पड़ गया। कोहली ने 19वें ओवर में अपना 9वां आईपीएल शतक पूरा किया और इसके साथ ही उन्होंने रन चेज भी सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। आखिर में जितेश शर्मा ने चौका लगाकर मैच समाप्त किया और आरसीबी ने 5 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर दिया। तो कुल मिलाकर विराट कोहली की सेंचुरी के दम पर आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया। आइए सुनते हैं मैच के बाद विराट कोहली क्या कहते हैं अपने प्रदर्शन के बारे में।
3: Yeah, look, for me, it's a conscious effort to try and contribute to the team's cause, and I know if I bat for long enough in the game, our chances of winning become higher. So the fact that I didn't get many runs in the last two games was, it eats me up in a way that I know I can play well and I'm hitting the ball well, but then when you don't carry on and, you know, you haven't created the impact for the team, it bothers you because that's basically been the goal all these years, trying to improve so that you can be the best version for your team when you play out there and make an impact. So, yeah, century or no century, I think the more important thing is finishing the game, making sure that I was out there till the end to get those 2 points, which, again, puts us at the top of the table.
1: इस जीत से आरसीबी टेबल टॉपर बन गई एक बार फिर से, लेकिन आज एक कड़ी परीक्षा होना है पंजाब किंग्स की, क्योंकि यह टीम शुरुआती चरण में काफी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही थी। क्या जबरदस्त जीत इनको मिल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट के बीच तक पहुंचते पहुंचते ये टीम पटरी से उतरने लगी है। आज बहुत अहम मुकाबला होना है उनका और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उनके लिए जीत बहुत जरूरी है। बता रही हैं अनु गुप्ता इस मैच के बारे में।
2: लगातार 4 हार झेलने के बाद पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अहम आईपीएल 2026 मुकाबले में भारी दबाव के साथ उतर रही है। जब ये दोनों टीमें पिछली बार अप्रैल में आमने सामने हुई थी तब दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स ने 196 रन लक्ष्य 21 गेंदें शेष रहते ही आसानी से हासिल कर लिया था और मुंबई इंडियंस को लगातार चौथी हार का स्वाद चखाया था। उस समय पंजाब टूर्नामेंट में अजेय थी और इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक नजर आ रही थी। हालांकि उसके बाद से उनके अभियान में एक नाटकीय मोड़ आ गया। पंजाब की आक्रामक बल्लेबाजी लाइन अपने शुरुआत में गेंदबाजी और फील्डिंग की बड़ी कमियों को छिपाए रखा था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 210 रनों के विशाल स्कोर सहित बड़े लक्ष्यों का बचाव करने में बार बार मिली नाकामी ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। अब किंग्स पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान से खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है और प्लेऑफ की रेस उसके लिए कठिन होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो, लेकिन यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों आखिरी गेंद पर दिल तोड़ने वाली हार झेलने के बाद अब मुंबई इंडियंस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वे धर्मशाला में पूरी आजादी के साथ खेल सकते हैं। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में अभी तक कुल 35 मैच खेले गए हैं जिसमें पंजाब ने 18 बार जीत दर्ज की और मुंबई

0: ने 17 मुकाबले जीते। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हाल ही में हुए मुकाबले में इस्तेमाल की गई पिच पर गेंद का उछाल असमान था और उसमें काफी सीम मूवमेंट देखने को मिला। इसी वजह से दोनों टीमों ने पूरी तरह से तेज गेंदबाजी पर ही भरोसा किया और स्पिन गेंदबाजी का एक भी ओवर नहीं डाला गया। HPCA स्टेडियम में आज होने वाले मैच के लिए मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश का काफी ज्यादा खतरा है। इस देखते हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कांगड़ा घाटी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मैच के दिन से पहले धर्मशाला में भारी बारिश और तूफान आया था और शाम को मैच के समय भी बारिश होने की 55 से 60% आशंका बनी हुई है। आइए जाने संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। पंजाब किंग्स की तरफ से प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन सिंह विकेट कीपर के तौर पर, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्को जॉनसन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर और अर्शदीप सिंह रहेंगे। मुंबई इंडियंस की टीम की बात की जाए तो रयान रिकेल्टन विकेट कीपर के तौर पर, रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर, तिलक वर्मा, विल जैक, राज अंगद बाबा, कार्बिन वॉश, दीपक चाहर, AM गजनफर, जसप्रीत बुमराह रहने की उम्मीद है।
1: तो अनु, आपने कल के मैच का परिणाम और आज के मैच की संभावनाएं तो बता दी, लेकिन ये बताना भी बेहद जरूरी है कि पॉइंट टेबल में किस टीम की क्या स्थिति है। अभी आज तक अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार RCB टेबल टॉपर है, पहले स्थान पर 12 अंकों के साथ, नेट रन रेट प्लस 1.053। गुजरात टाइटन्स 2 अंक अगर अर्जित कर लेती है तो टॉप पर पहुंच जाएगी, फिलहाल दूसरे स्थान पर, उसके भी 16 अंक हैं, 12 मैच उन्होंने खेले हैं, 16 अंक RCB के भी हैं। और नेट रन रेट की बात करें तो वहां पर गुजरात टाइटन्स दूसरे स्थान पर फिसल जाता है, उसके प्लस 0.551 नेट रन रेट हैं। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है, उसके 12 अंक की बात करें तो 12 मैच के बाद 14 अंक हैं। पंजाब किंग्स के 11 मैच के बाद 13 अंक हैं, वो चौथे स्थान पर है। 11 मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के 12 अंक हैं। इसी तरह राजस्थान रॉयल्स, जो कि टूर्नामेंट की शुरुआत में काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहा था, उसके 11 मैचों के बाद 12 अंक हैं। तो ये टीमें अभी प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे तगड़ी दावेदार टीमों में से शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच में 10 अंक लेकर 7वें स्थान पर, KKR 11 मैच में 9 अंक लेकर 8वें स्थान पर, मुंबई इंडियंस 11 मैच में 6 अंक लेकर 9वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर यानी अंतिम स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, 11 मैच में उसके 6 अंक हैं। तो यह है अभी अंक तालिका की स्थिति। और अब बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गुजरात के गांधीनगर में चल रही है, वहां से भारत के लिए रोज कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ रही है। आज क्या कुछ अच्छी खबर है, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भारत के लिए अच्छी खबर है, जहां एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 71 किलो वजन वर्ग में आज नारायण अजीत ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम समेत कुल 314 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि महिलाओं के 63 किलोग्राम वजन वर्ग से भारत के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी निरुपमा देवी सेराम पदक से चूक गईं। वे चौथे स्थान पर रहीं, उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया और चौथा स्थान हासिल किया। इस मुकाबले में उत्तर कोरिया की वेटलिफ्टर ने पहला स्थान और चीन की 2 वेटलिफ्टर ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुषों के 79 किलोग्राम वजन वर्ग में देवरात भराली आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल भारत की बिंदिया रानी देवी उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकी और महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में कुल 203 किलोग्राम भार उठाकर 5वें स्थान पर रहीं। 3 साल पहले महाद्वीपीय प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता बिंदिया रानी ने स्नैच में 89 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 114 किलोग्राम भार उठाया था। स्नैच में उन्होंने 85 किलोग्राम और 89 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठाए, लेकिन अपने अंतिम प्रयास में 91 किलोग्राम उठाने में नाकाम रहीं। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 114 किलोग्राम से शुरुआत की और फिर 118 किलोग्राम के दो प्रयास में असफल रहीं। इस वर्ग का स्वर्ण उत्तर कोरिया की ग्योंग किम ने कुल 230 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। रजत चीन की तिग्ना वेई को 225 किलोग्राम वजन उठाकर मिला। वियतनाम की थी ताम ओ आना

0: ने कुल 221 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इससे पहले ज्ञानेश्वरी ने भारत के लिए कल 2 पदक जीते थे। स्नैच में उनको रजत मिला था और कुल जो वजन उन्होंने उठाया उसके बाद उनको कांस्य पदक मिला। अपनी सफलता पर ज्ञानेश्वरी ने कहा,
1: मैं ये परफॉर्मेंस को मतलब कि देखा है कि मतलब पिछले साल से मैं इसके लिए मैनिफेस्ट कर रही थी, यहाँ पे एशियन होना है, मुझे खेलना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। उस हिसाब से मैंने अपना जितना भी ट्रेनिंग में किया है, मैं यहाँ पे आके अपना पर्सनल, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: जो कंपटीशन था ज्ञानेश्वरी, वो कैसा था? और आपने तो अपने इसमें 2 मेडल जीते, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ओवरऑल ब्रॉन्ज जीता है, वो दोनों उनके बारे में आप बताएं।
1: जी, मैंने स्नैच में 88 स्नैच किया है और उसके थ्रू ही मुझे सिल्वर मेडल मिला है स्नैच में। और क्लीन एंड जर्क में 106 किया है। सेकंड वाला जो लिफ्ट था मेरा, वो प्रेस आउट दे दिया था तो उसके कारण नो लिफ्ट हुआ था। और ऑल ओवर में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है और मैं इस परफॉर्मेंस से खुश हूँ और आगे और मेहनत करना चाहती हूँ।
2: जी, तो जो कंपटीशन था यहाँ पे, क्योंकि एशियन कंट्रीज के टॉप जो वेटलिफ्टर थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे, कैसा आपको कंपटीशन मिला?
1: कंपटीशन तो बहुत टफ था क्योंकि मैंने ये सब प्लेयर को कई सारे कंपटीशन ओलंपिक में और एशियन गेम्स में, ये सबको मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीवी में या फिर फोन में मैंने देखा है सबको लिफ्ट करते हुए। तो एक साइड से उनके साथ में कम्पीट करना एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा नर्वसनेस भी था, बट मेरे साइड से ये था कि मुझे सिर्फ अपना पर्सनल बेस्ट करना है।
2: तो ऐसे कंडीशन में जब इतने बड़े बड़े वेट लिफ्टर्स को, जिसको आपने टीवी पर देखा था, फोन पर देखा था, अपने सामने देखा, आपके ऊपर कैसा मेंटल प्रेशर था?
1: सर, मेंटल प्रेशर तो नहीं था, मतलब कि मुझे बस अपना परफॉर्मेंस बीट करना था। मुझे बस इतना ही था कि मैंने जो अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस करके आई हूँ वर्ल्ड कप में, या तो मैं उसको मेंटेन करूँ या मैं उससे 1 kg भी इम्प्रूव करती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगा, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन में ही ट्रेनिंग करके ये परफॉर्मेंस किया है। इसीलिए
2: ज्ञानेश्वरी, यहाँ क्या कुछ ऐसा आपको सीखने को मिला जो आपको भविष्य में मदद करेगी?
1: यहाँ मैं बहुत मेरे से एलीट लेवल प्लेयर्स को देख रही हूँ तो मतलब उनसे इंस्पायर्ड भी हो रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज है मेरा आगे जाने का और वो तो मतलब हाई लेवल के है, तो देख के ऐसा लगता है कि हाँ वो इतना स्मूथली लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग बेसिस हो या चाहे किसी भी चीज में हो, तो उनको देख के एक सीखने मिलता है कि हमको भी अच्छा करना चाहिए।
2: यहाँ के ब्रॉन्ज के बाद आगे आपका क्या टारगेट है ज्ञानेश्वरी?
1: सर, आगे का तो टारगेट अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करना चाहूंगी अपने आप।
2: जी, कैसे तैयारी होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की, क्योंकि यहाँ से ज्यादा वहाँ पर कठिन मुकाबले हो सकते हैं?
1: जी, और अपने आप पे ध्यान दूंगी, कहाँ पे क्या कमी है, रिकवरी है या टेक्निक है, वो सब पे फोकस करते हुए मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगी।
2: कितनी मेहनत करेंगी, क्योंकि देश को आपसे ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल चाहिए, उसके लिए क्या कुछ रूटीन रहेगा, क्या कुछ और आप ज्यादा मेहनत करेंगी?
1: सर, वही है कि अपने आप को पूरा झोंक देना ही मेरा काम है, फिर फॉर्म करना, अपना पर्सनल बेस्ट करना, वो मेरे लिए सबसे पहला मेन टारगेट है। क्योंकि अगर मैं चाहूंगी कि मैं इतना उठा लूं, वो चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही हम पकड़ते हैं, तो इसीलिए मैं अपने आप को और प्रैक्टिस में लीन करके अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगी।
0: और अब चलते हैं एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तरफ, जहां पर भारत के लिए पदकों की झड़ी लगी है और खासतौर पर बहुत सारे गोल्ड मेडल आए हैं। बताइए अनु।
3: जी, धर्मेंद्र ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय अंडर 15 मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में दमदार खेल दिखाकर देश का गौरव बढ़ाया। पदकों की कुल संख्या रही 27, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रोंज शामिल हैं। अंडर 15 बालिका वर्ग में अंजी ने 37 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सोनिया ने 40 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तन्वी ने 43 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि हंसिका अत्री ने 46 किलोग्राम वर्ग में शानदार सुनाने ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भूमिका ने 61 किलोग्राम वर्ग और एंजल ने 64 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड

मेडल जीतकर भारत का परचम लहराया। इसके अलावा अक्षिता ने 33 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक प्राप्त किया, जबकि तन्वी ने 52 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यदि हम बालक वर्ग में बात करें तो यश कुमार ने 33 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। मोहम्मद यासर ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं सिल्वर मेडल पर कब्जा किया 37 किलोग्राम भार वर्ग में सस्ता वसंत अशोक कुमार ने, 43 किलोग्राम भार वर्ग में समीर बोहरा ने, 52 किलोग्राम भार वर्ग में सुदर्शन वसुदेव चंदाक ने और 67 किलोग्राम भार वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने हासिल किया। ताशकंद में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने इस शानदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि देश की नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रही है। वहीं यदि रजत पदक की बात की जाए तो लड़कियों के कैटेगरी में जिया ने 35 किलोग्राम भार वर्ग, खुशी राणा ने 49 किलोग्राम भार वर्ग, कनिष्का ने 52 किलोग्राम भार वर्ग, अश्वी ने 67 किलोग्राम भार वर्ग और मानवी ने 70 से ज्यादा किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लड़कों ने 35 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित पोथीना, 40 किलोग्राम भार वर्ग में नितिन, 46 किलोग्राम भार वर्ग में नॉनगोप गांगा मैते ने, 49 किलोग्राम भार वर्ग में प्रशांत, 55 किलोग्राम भार वर्ग में हर्षवर्धन जीना और 64 किलोग्राम भार वर्ग में देव ने, साथ ही 70 से ज्यादा किलोग्राम भार वर्ग में सुशांत जैनी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए।

और अब बात शह और मात के खेल की। 2026 सुपर चेस क्लासिक की शुरुआत आज से रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में होने जा रही है। 23 मई तक दुनिया भर के इस दिमागी खेल के दिग्गज एलिट क्लासिकल फॉर्मेट वाले मुकाबले में अपने अनुभव का कतरा कतरा जीत के लिए झोंक देंगे। यह टूर्नामेंट 2026 ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है। टूर्नामेंट में 10 खिलाड़ियों का राउंड रॉबिन प्रारूप होगा, जिसमें फैबियानो कारुआना, आर प्रज्ञानंद और अलीरेजा फिरोजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इस प्रारूप में 10 खिलाड़ी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। क्लासिकल समय नियंत्रण वाले 2026 सुपर चेस क्लासिक की पुरस्कार राशि $4,75,000 होगी। विजेता को $1,00,000 के साथ साथ 12-13 GCT अंक, उपविजेता को $65,000 और 10 GCT अंक, तीसरे स्थान पर रहने वाले को $50,000 और 8 GCT पॉइंट और चौथे स्थान पर रहने वाले को $35,000 के साथ 7 GCT अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे नीचे रहने वाले खिलाड़ियों का हाथ खाली रहेगा, बल्कि सबको कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे पांचवें स्थान वाले खिलाड़ी को $25,000 और 6 GCT पॉइंट, छठे स्थान वाले को $20,000 और 5 GCT अंक, सातवें स्थान पर रहने वाले को $18,000 और 4 GCT पॉइंट, आठवें नंबर वाले को $15,000 और 3 GCT पॉइंट, नौवें स्थान वाले को $12,000 और 2 GCT पॉइंट, जबकि दसवें यानी अंतिम स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को $10,000 और 1 GCT पॉइंट मिलेगा। हम आपको बता दें कि शतरंज में GCT पॉइंट का मतलब ग्रैंड चेस टूर के अंक हैं। ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन को मापने का जरिया है, ताकि साल के अंत में अंकों के आधार पर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को चुना जा सके। टूर्नामेंट में कुल 9 बाजियां खेली जाएंगी। हर दिन एक राउंड होगा। सभी खिलाड़ी राउंड रॉबिन आधार पर एक दूसरे का सामना करेंगे। क्लासिकल टाइम कंट्रोल वाले हर राउंड के लिए अधिकतम 6 घंटे निर्धारित होंगे। हम आपको ये भी बता देंगे कि पहले 40 चालों के लिए 90 मिनट और फिर शेष खेल के लिए अतिरिक्त 30 मिनट मिलेगा। इसमें इंक्रीमेंट प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा, जहां हर चाल चलने के बाद खिलाड़ी की घड़ी में 30 सेकंड जोड़ दिए जाएंगे। टूर्नामेंट में भारत की तरफ से धुरंधर आर प्रज्ञानंद शिरकत कर रहे हैं। लाइनअप में अमेरिका के फैबियानो कारुआना, जिनकी विश्व रैंकिंग 3, उज्बेकिस्तान के जावोकिर सिंदारोव, जिनकी विश्व रैंकिंग 11, नीदरलैंड के अनीश गिरी, जिनकी विश्व रैंकिंग 9, जर्मनी के विंसेंट कीमर, जिनकी विश्व रैंकिंग 5, फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा, जिनकी विश्व वरीयता 6, सातवीं वरीयता वाले अमेरिका के वेस्ली सो, नीदरलैंड के एक और खिलाड़ी जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, जिनकी विश्व रैंकिंग 14 है, 25वीं विश्व वरीयता वाले फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव और वाइल्ड कार्ड से एंट्री पाने वाले रोमानिया के बोगदान डेनियल डीक शामिल हैं। आर प्रज्ञानंद की विश्व रैंकिंग 12 है। ये टूर्नामेंट 2026 ग्रैंड चेस टूर का दूसरा चरण और पहला क्लासिकल टूर्नामेंट है। और हम आपको बता दें कि आर प्रज्ञानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के पहले दौर में फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा से खेलेंगे, जो ग्रैंड

शतरंज टूर पर इस साल का पहला क्लासिकल टूर्नामेंट होगा। इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद अकेले भारतीय हैं। उन्हें 10 खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में 9 दौर में 5 में सफेद मोहरों से खेलने का मौका मिलेगा।

आइए चलें रेसलिंग यानी कि कुश्ती की तरफ, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला कुश्ती के अंतिम रैंकिंग की घोषणा कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने नंदनी नगर महाविद्यालय गोंडा में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में महिला कुश्ती स्पर्धाओं का समापन किया। महिला कुश्ती वर्ग में 10 निर्धारित भार वर्गों में एथलीटों ने अपनी घरेलू रैंकिंग तय करने के लिए मुकाबला किया। आइए जानें महिला कुश्ती टूर्नामेंट के अंतिम परिणाम। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड अंकुश के नाम हुआ, सिल्वर रचना, ब्रॉन्ज परवीन और ईशिका के नाम। 53 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड निशु ने जीता, वहीं सिल्वर हिमांशी और ब्रॉन्ज तनु और तानिया के नाम हुआ। 55 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड निशा ने जीता, सिल्वर नैना और ब्रॉन्ज तनिष्का और खुशी ने। 57 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड रीना ने जीता है और सिल्वर काजल चौधरी, ब्रॉन्ज शिवानी और हंसिका लांबा ने। 59 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड सीतो के नाम हुआ, सिल्वर सिमरन, ब्रॉन्ज खुशी चौधरी और पूजा गहलोत के नाम। वहीं 62 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड वैष्णवी दिलीप पाटिल के नाम हुआ, सिल्वर अंजलि को मिला और ब्रॉन्ज सारिका मलिक और प्रगति विनोद गायकवाड़ को मिला। 65 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड अंजलि ने जीता, सिल्वर दिशुन और ब्रॉन्ज जानवी और कल्पना के नाम। 68 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड अंशु राजकुमार, सिल्वर भतेरी ने जीता और ब्रॉन्ज कोमल और खुशी के नाम हुआ। 72 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड बिपाशा, सिल्वर रिया कौशिक और ब्रॉन्ज तनु शर्मा और किरण हुड्डा ने जीता। वहीं आखिरी यानी 76 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड इतिशा चौधरी ने जीता, सिल्वर पूजा ने और ब्रॉन्ज मेघना और शिक्षा ने।

0: और बात हॉकी की, फ्रांस के फ्रेडरिक सोएश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है, जो दो बार के ओलंपिक विजेता पीआर श्रीजेश की जगह लेंगे। पूर्व स्टार गोलकीपर श्रीजेश का अनुबंध पिछले साल चेन्नई और मदुरई में एफआईएफ जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने के बाद खत्म हो गया था। हॉकी इंडिया ने उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया। चलते हैं अब एथलेटिक्स की तरफ। 28 मई से 31 मई तक हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रतिभाशाली लॉन्ग जंपर शहनवाज खान को 48 सदस्यीय राष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड टीम में शामिल किया गया। टीम का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने घरेलू प्रतियोगिताओं में एथलीट्स के प्रदर्शन के आधार पर किया है। शहनवाज खान ने हाल ही में 24वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में 8.23 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया था, जो नेशनल अंडर 20 में लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड है। मोहम्मद अशफाक 400 मीटर और रिले, नितिन गुप्ता 5000 मीटर रेस वॉक और पूजा हाई जंप में भाग लेंगी। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में शामिल किए गए अन्य एथलीटों की बात करें तो 50 सदस्यों वाली भारतीय टीम में पुरुष वर्ग में रुद्र सचिन शिंदे 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले, मोहम्मद अशफाक 400 मीटर दौड़ और 4x400 मीटर रिले और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पीयूष राज 400 मीटर 4x400 मीटर रिले मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, वेंकट राम रेड्डी मोगली 800 मीटर दौड़, संदीप यादव विकास कुमार 3000 मीटर दौड़, निखिल सिंह 3000 मीटर स्टीपल चेज, किरण कुंचन 110 मीटर बाधा दौड़। जशन प्रीत सिंह की बात करें और अमित कुमार की बात करें तो 400 मीटर बाधा दौड़ में शामिल होंगे। नितिन गुप्ता तुषार कंवर 5000 मीटर रेस वॉक में शामिल होंगे। बसंत ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र और
1: अनु को इजाजत दीजिए।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल। और देखिए, हमारा जो ये ग्राम संसार कार्यक्रम है अतुल भाई, ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही शोभा की बात है कि हम इस कार्यक्रम को आज तक अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को परोसते आए हैं, सुनवाते आए हैं। और इसकी यही बहुत बड़ी अपने आप में एक शोभा है, और वो भी रेडियो के माध्यम से।
0: बिल्कुल
1: और रेडियो यानी कि आकाशवाणी अपने आप में एक कितना बड़ा प्रचार प्रसार का माध्यम है, जो कि हमारे देश के हर जन को आपस में कहीं ना कहीं जोड़ के रखता है। आपको पता है, आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने 90 गौरवशाली वर्ष अतुल
0: पूरे कर
1: भाई
0: लिए
1: पूरे
0: हैं।
1: कर लिए हैं, और ये 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। वर्ष 1956 में इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया। और भाई, ये दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है, जहां पर आज हम और आप बैठकर लाइव अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को अपना ये प्यारा सा ग्राम संसार कार्यक्रम सुनवा रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखिए रेडियो के माध्यम से ही हमारे इस कार्यक्रम ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जन जन तक पहुंच बनाई है अपनी,
1: बिल्कुल
0: चाहे वो ग्राम संसार रहा हो चाहे कृषि जगत रहा हो।
1: बिल्कुल। और भाई, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और सही कहें तो भाई, रेडियो के एक नेटवर्क से, माध्यम से हमने घर हर घर तक अपनी पहचान बनाई है, आवाज़ पहुंचाई है, और कुछ ना कुछ जानकारियां दिलवाई हैं अपने, जिसका हमारे सभी बहनों भाइयों ने भाई जानकारियों से लाभ उठाया है, और साथ ही साथ मनोरंजन तो करवाया ही है,
0: बिल्कुल, खेत से खलिहान तक की दूरी हमने तय की है अपने
1: तय
0: इस
1: की
0: कार्यक्रम
1: है।
0: में।
1: और भाई, कलाकारों के लिए भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ किया है। कलाकारों ने भी अपनी आवाज़ को, अपनी पहचान को घर घर तक इस कार्यक्रम के माध्यम से, और साथ ही साथ रेडियो के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भाई हर जन तक पहुंचाया है। इसकी एक ऐतिहासिक शुरुआत रही है।
0: बिल्कुल, और देखिए जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है पायल बहन, तो हमारे पास में मैसेज भी काफ़ी आ चुके हैं। और देखिए पहले जो हमारे कलाकार रहेंगे वो रहेंगे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना, और इनके लिए भी SMS हमारे पास में आ गया है। ये SMS हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कडवासरा और उनका पूरा परिवार, दादरी गेट भिवानी से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और उनका पूरा परिवार, पटेल नगर मैलोट से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और उनका पूरा परिवार।
1: और इन्हीं को सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइश आई है, जनकपुरी सहारनपुर से भेजने वाले भाई हैं जॉन डिकेस्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमारे पास आई है राधा स्वामी जी चौधरी वास से, भेज रहे हैं राजू अग्रवाल और इनके परिवार के सदस्य। ये फरमाइश हमें आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले भाई हैं PS नाहवकर और इनके परिवार के सदस्य। जटवाड़ा गाजियाबाद से भी हमें फरमाइश भेजी है शीशपाल अकेला जी ने।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं नितेश कुमार देवांगन उनका पूरा परिवार, और ये फरमाइश हमारे पास में आई है पायल बहन चंडीगढ़ से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा और उनका पूरा परिवार, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और उनका पूरा परिवार, ये SMS हमें मिला है छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से, भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबिये और इनका पूरा परिवार, गांधीनगर गुजरात से हमें SMS भेज रहे हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार।
1: आप हमें किसी भी रागनी में शामिल करें, एकता कॉलोनी रोहतक से हमें ये फरमाइश भेजी है सीताराम कांगड़ा।

0: और इनके परिवार के सदस्यों ने करावल नगर दिल्ली से भी हमें फरमाइश भेजी है। रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी ने ये फरमाइश हमारे पास आई है। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से भेजने वाले भाई हैं रमेश कुमार कंबोज और इनके परिवार के सदस्य। लोहडाडा जिला बागपत से ये फरमाइश हमें भेजी है जगमोहन सिंह प्रजापत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: दुर्गा कॉलोनी हांसी से फरमाइश भेज रहे हैं राजू मेघलानी और इनका पूरा परिवार। गांव चौहलदा बागपत से भी हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं राधेश्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे हैं राजकुमार डूडी और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले हैं कंचे शर्मा, सतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, मास्टर देवेंद्र सिंह, सर्वेश गिरी महाराज, कुमारी तनु और शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ऋषि पाल और कौशिंदर खदाना की आवाज़ में ये राग।
2: अकल भंग हुई।

0: अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे ऋषिपाल और कौशिंदर खदाना की आवाज़ में ये रागनी। और किस्सा था सरवर नीर का, और मौका वो जब भाई सवाल जवाब हो रहे हैं किसके, सौदागर के और रानी
1: अमले
0: अमली
1: के
0: के
1: भटियारी की शरा में।
0: भटियारी की सराह में।
1: बिल्कुल। और देखिए, अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं श्रीनिवास शर्मा। इनके लिए भी हमारे पास में भाई SMS आ गए हैं। ये SMS हमारे पास में आया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, उनका पूरा परिवार। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मेहर अरोड़ा, इनका पूरा परिवार। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रमेश चंद्र चौहान और इनका पूरा परिवार। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी फरमाइश भेज रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा, इनका पूरा परिवार। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामुरिया और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है हरियाणा जिला भिवानी से, गांव बड़दू छेना, और ये फरमाइश हमें भेजी है महिपाल श्योरण और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है कैथल हरियाणा से, भेजने वाले भाई हैं अनिल मोहन, उषा मोहन और मधु नायक ने, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भी इन्होंने हमें फरमाइश भेजी है। ये फरमाइश हमें हमारे पास आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, भेजने वाले भाई हैं मुकेश बत्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है हमारे पास आई है ये फरमाइश पंजाब से, और भेजने वाले भाई हैं हरजिंदर छिंदा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है मुरादगढ़ गाजियाबाद से। भेजने वाले हैं भाई करमबीर सिंह ढिल्लों का पूरा परिवार। उपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी उनका पूरा परिवार। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं दिनेश वर्मा उनका पूरा परिवार। संदीप मक्कड़ पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से फरमाइश भेज रहे हैं। ये फरमाइश हमारे पास में आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। अनारकली बाज़ार जगराओं से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और उनका पूरा परिवार। बेहर वाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आइए हनुमानगढ़ टाउन सुल्तान सिंह तरार और उनके पूरे परिवार की। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। और दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय उनका पूरा परिवार। गाँव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं वेद मिड्डा और इनका पूरा परिवार।

0: मूल शहर राजस्थान से फरमाइश भेजी है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से फरमाइश भेजी है सुरेश ग्रोवर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है कुल्लम रोड हरगोविंद नगर से और भेजने वाले भाई हैं सुरेंद्र सिंधु और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से। भेजने वाले भाई हैं अकरम हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से हमें भेजी है निसार सलमानी और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये फरमाइश भेजी है भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग और परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू और परिवार के सभी सदस्य।
1: तो शुरुआत है सभी की फरमाइश पर श्रीनिवास शर्मा की आवाज़ में ये राग।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे श्रीनिवास शर्मा की आवाज़ में, ये रागनी और किस्सा था भाई रामायण का।
1: बिल्कुल। और जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं बदल सिंह और कल्याण सिंह। इनको सुनने के लिए हमारे पास SMS आ गए हैं। ये SMS आया है टोरेवाल नवा शहर पंजाब से। भेजने वाले भाई हैं गगनदीप थांदी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमें आया है गांव गमंडिया सूरतगढ़ से। भेजने वाले भाई हैं जगदीश डुकिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS आया है गांव खोकरावाली से और भेजने वाले भाई हैं विनोद बरासा और परिवार के सभी सदस्य। ये SMS आया है मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से। भेजने वाले भाई हैं अभिजीत गवणकर राही और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ये फरमाइश हमारे पास में, ये गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार और इनके पूरे परिवार के सदस्यों की फरमाइश हमें मिली है। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से भी फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं अभिजीत गवानकर राही और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले भाई हैं मुकेश शर्मा और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश आदर्श नगर मौलौट पंजाब से राज शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये दतरंगी से हमें फरमाइश भेजी है भगवत वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौड़ और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर बदन सिंह और कल्याण सिंह की आवाज़ में ये रागनी।
2: अरे सुन।

0: वत सुंदर कणी मणीस वे दिव्य अलोकित वन में मृग ने नी।
1: और देखिए पायल बहन, इसी रागनी के लिए हमारे पास में ऐसे में आया था गांव घाना नारसन भिवानी से भेजने वाले थे जगदीश टिंडाली और उनका पूरा परिवार। और ये ऐसे में हमारे पास में आया था भाई गांव रामसा वाला जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले थे ब्रजपाल सिंह और इनके पूरे परिवार की। हमें ये फरमाइश मिली थी और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी गाँव डंडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से भेजने वाले थे पुरुषोत्तम कुमार भद्रवाह इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से भेजने वाले सज्जन कुमार जांगड़ा और इनका पूरा परिवार। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
2: राम राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस

0: जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज MSV हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: An Indian डो
2: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम। तो पायल बहन हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लाते रहते हैं और मनोरंजन भी करवाते रहते हैं। और देखा जाता है कि भैया अभी जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें गेहूँ की जो फसल है उसकी कटाई और गहाई देखिए कर ली है पायल बहन। और ये जो आपके थ्रेसर होते हैं कंबाइन होती है, अब ये यंत्र जो है अब कम से भी कम कुछ भी नहीं तो 8 महीने के लिए कम से कम
0: रख दिए जाएंगे
1: रख
0: भाई,
1: दिए
0: ऑफ
1: जाते
0: सीजन
1: हैं।
0: हो गया है, काम
1: जी
0: पूरा हो गया है, और काम पूरा होने के बाद जो ये यंत्र हैं भाई रखे ही जाते हैं, क्योंकि इनका अब कोई काम आगे आने वाला नहीं है। तो इसलिए भाई ज़रूरत है कि अपने यंत्रों को आप संभाल के रखें, है ना,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अगली बार भी जब आपका जो काम पड़ेगा तो आपको इतनी परेशानी ना हो, पैसा खर्चा ना करना पड़े, लागत ज़्यादा ना लगानी पड़े, और ठीक ठाक इनको रख सकें हमारे किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल। और इसकी और अधिक जानकारी के लिए भाई हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए कुछ विस्तृत जानकारी लेकर के आए हैं कृषि यंत्रों का रख रखाव और कंबाइन और थ्रेसर की ऑफ सीजन सर्विस। तो
0: बिल्कुल
1: जिसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आदर्श कुमार, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो लेते हैं पहले बहन ये जानकारी।
0: नमस्कार किसान भाई बहनों, हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आते हैं, चाहे वो फसलों से संबंधित हो, पशुओं से संबंधित हो, या कृषि यंत्रों की बात करें, या उनके रख रखाव की बात करें, या मौसम के अनुसार फल सब्जियों की बात करें। ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होते हैं। किसान भाई बहनों, फसल की कटाई के बाद अक्सर हम कृषि यंत्रों को एक कोने में रख देते हैं, लेकिन सही देखभाल न होने पर यही यंत्र जल्दी खराब हो जाते हैं और अगली फसल में भारी खर्च का कारण भी बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कटाई के बाद कृषि यंत्रों की सही देखभाल कैसे करें, इनका समुचित उपयोग कैसे करें, और इस विषय के लिए बात करने के लिए हमारे बीच आज आए हुए हैं डॉक्टर आदर्श कुमार जी, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, कृषि यंत्र कौन कौन से होते हैं जो खास तौर पर कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं?
2: देखिए, कृषि यंत्र मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, निलाई गुड़ाई करने, दवाई का छिड़काव करने, उसके बाद कटाई के यंत्र, तो एक बहुत बड़ी रेंज है जो हमारे किसान भाई आजकल इस्तेमाल करते हैं। और आजकल भारत के खेतों में कृषि यंत्रीकरण बढ़ रहा है। आपने पूछा कि कौन कौन से यंत्र हैं, तो जैसे हम लोग बिजाई के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद निराई गुड़ाई के लिए कुछ मानव चालित यंत्र हैं या कुछ इंजन द्वारा चालित यंत्र हैं, आजकल बैटरी के द्वारा चलने वाले यंत्र भी उपलब्ध हैं। उसके बाद हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तब हम स्प्रेयर्स को इस्तेमाल करते हैं या डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो यंत्र भी बहुत ज़्यादा आजकल कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जब हम कटाई की बात करते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत प्रचलित एक बहुत बड़ा उपकरण है जिसको कि हम कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो कटाई भी कर देता है, थ्रेशिंग भी कर देता है, और हमें किसान भाइयों को अनाज जो है डायरेक्टली मिल जाता है। जबकि पहले का ये था कि हम लोग काटते थे फसल को और उसके बाद थ्रेशिंग करते थे। अभी भी थ्रेशर्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो थ्रेशर भी एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशीन भारतीय खेतों पर है। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे किसान हैं वो रीपर का इस्तेमाल भी करते हैं जो कटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया है कि ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, रीपर हो, हैप्पी सीडर हो, या स्प्रे मशीन हो, या अन्य कोई उपकरण, ये हमारे खेती के या किसान भाइयों के सच्चे साथी भी होते हैं, जो समय का भी बड़ा सदुपयोग होता है उनसे। तो इनकी रख रखाव करना बेहद जरूरी क्यों होता
2: बिल्कुल
0: है?
2: बिल्कुल, ये जो मशीनें हैं इनके ऊपर किसान काफी पैसा खर्च करते हैं, तो इससे समय की बचत होती है, लेबर की बचत होती है। और कई बार मान लीजिए हम बोलते हैं कि बारिश आने वाली है या मौसम खराब है, तो हम बहुत जल्दी से इस काम को कर सकते हैं। तो इनका रख रखाव इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मशीनें महंगी हैं और इनको हम साल में कुछ दिन इस्तेमाल कर कर फिर दूसरे सीजन के लिए रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसान भाई इन मशीनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब वो अगले सीजन में जाएंगे और जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो वो तब प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक तरह से आप उससे काम नहीं ले सकते, उनकी दक्षता कम हो जाएगी, उनका आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, और उस समय किसान भाइयों के पास समय की बहुत कमी होती है, तो वही रिपेयर जो है आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और दूसरा, आप

0: इस समय का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए जब आप मशीन को रख रहे हैं, जैसे अभी हमारी गेहूं का फसल खत्म हुई है, तो जब हमारी जो मशीनें हैं उनको हमें भंडारण करना है, उनको
1: जी
0: रखना है, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार उन्हीं मशीनों को आप अच्छी तरह से चला के देख लीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि किसमें क्या कमी है और हमें कहाँ उसकी रिपेयर की आवश्यकता है। इस समय आपके पास समय है, आप रिपेयर जो कराएंगे वो बहुत सस्ते दामों पर हो जाएगी और आप आराम से तसल्ली से ये सारी रिपेयर कराकर उन मशीनों को अगले सीजन के लिए तैयार करके रख सकते हैं। अब जो रख रखाव आपने पूछा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगले सीजन में इनको तैयार कर लेंगे, हमारा व्यय बहुत कम होगा, समय की बचत होगी और इन मशीनों की दक्षता है वो बनी रहेगी, उनकी मतलब अभी एफिशिएंटली उन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, कटाई के बाद कृषि यंत्रों की सफाई भी बहुत जरूरी होती है, वो क्यों जरूरी है?
0: देखिए, कृषि यंत्र हैं, खासकर जो कटाई वाले यंत्र हैं, क्योंकि जब आप कृषि में काम करते हैं तो आप फसल और मिट्टी दोनों से ही डील करते हैं, और जब अगर आपके मशीनों के अंदर मिट्टी रह गई तो उनके अंदर एक वो है कि वो लोग नमी को सोख लेंगे, और जैसे ही वो नमी को सोखेंगे, और सारे यंत्र जो हैं वो धातु से बने हुए, ज्यादातर आयरन के ही बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, और जैसे ही वो नमी को सोख लेते हैं तो वहां जंग लग जाता है, और जैसे ही जंग लगेगा तो वो मशीनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो खराब होने लग जाते
1: जी
0: हैं, तो उस पे आपको फिर वो जो मशीनें आप अगली बार इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, चाहे नट बोल्ट हो या और कोई कटिंग बार्स हो आपकी, तो अगर उनके ऊपर जंग लग गया तो वो उनके अलाइनमेंट या उनका जो अच्छी तरह से चलना वो सारा बंद हो जाता है। तो हमें ये करना है कि हमें उसकी सफाई जो है वो गहन करनी है, क्योंकि हमें ये देखना है कि उसके अंदर से सारा जितना भी फसलों का अवशेष है वो निकल जाए, मिट्टी वगैरह निकल जाए, तभी हम उसका भंडारण करेंगे। और मैंने आपको कहा उसको एक बार चला के देख लें, जहां रिपेयर की आवश्यकता है उसको कर लें, कोई बिजली के कंपोनेंट, इंजन के अंदर जहां जहां भी आपको कुछ कमी लगती है आप उसको ठीक करा लें और उसके बाद ही भंडारण करें। और जब आप रखेंगे तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वो इसको छत के नीचे रखें,
1: जी
0: क्योंकि ये सारी मशीनें महंगी हैं और पानी और धूप के संपर्क में आने पर, कुछ इनके कंपोनेंट्स प्लास्टिक रबड़ के भी बने होते हैं, जब वो धूप के संपर्क में आते हैं तो वो खराब होने का डर हो जाता है,
1: जी
0: और जो बाकी मेटल के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, धातु के बने हुए हैं, उनके ऊपर पानी से नमी के अंदर वो खराब हो जाएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि छत के नीचे रखें या उसको तरपाल से ढक कर
1: तो डॉक्टर, कृषि यंत्रों में ग्रीस और ऑयलिंग का क्या महत्व होता है?
0: रखें। हाँ, कृषि यंत्रों के अंदर बहुत सारी चीजें घूमने वाली हैं,
1: जी
0: तो उसके अंदर आपको जहां भी घूमने वाली चीजें अगर उसके अंदर ऑयलिंग कर सकते हैं तो आप ऑयलिंग करिए, वहां पे निप्पल बने होते हैं उसके अंदर आप ऑयल डाल दीजिए, तो उसके अंदर एक ल्यूब्रिकेशन बना रहेगा और उसके अंदर घर्षण कम रहेगा, तो वो जितनी भी घूमने वाली चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से आपकी काम करेंगी।
1: जी
0: आपने कहा कि जो ल्यूब्रिकेशन और जगह हमें करना है, मान लीजिए आपकी कटर बार है या कहीं कोई भी चीज जो आपकी ऐसे हिलती है, उसके ऊपर आप कुछ ऐसा ऑयल या ग्रीस लगा दें जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे, तो उसके बाद वो अगले सीजन में आपको बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, आपको इनको रिपेयर या बदलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: जी
0: इसलिए ऑयल और ग्रीसिंग का एक बहुत महत्व है सारी ही मशीनों में, ना केवल कृषि में, बल्कि जो भी मशीन पर कंपोनेंट घूमते हैं या जिनके अंदर, जैसे हमारी कटर बार्स हैं उसके अंदर एक मोशन होता है जैसे कि हम लोग अपनी कैंची की तरह करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम ग्रीसिंग कर देंगे तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा और वो बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह काम करेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ही प्रचलित है,
0: हाँ जी,
1: तो उसका रख रखाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमारे किसान भाइयों को ये भी पता चलना चाहिए कि उसकी सही देखभाल कैसे की जाए।
0: देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर एक बहुत बड़ी मशीन है, सबसे बड़ी मशीन है, तो उसके अंदर बहुत सारे इंटेग्रल पार्ट हैं, उसके अंदर सबसे पहले पावर यूनिट है, जो इंजन है जो पावर देता है, उसके बाद आपका कटिंग यूनिट है, कलेक्शन यूनिट है, थ्रेशिंग यूनिट है, फिर बाद में उसके अंदर सीव्स लगी हुई हैं जो हिलती हैं, और बाद में पंखे के द्वारा जो भूसा है बाहर चला जाता है, अनाज आपका टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है, फिर अनाज को हम बाहर खींच लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि जब आपको उसको रखना है, हम उसकी बहुत ज्यादा अंदर तक तो नहीं जा सकते किसान भाई, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें, हवा मार के साफ कर लें कि जो फसल के अवशेष हैं वो हमें सब निकाल देने हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें ये देखना है कि हम जब इंजन की बात करेंगे तो हमें टैंक को फुल करके रखना है डीजल से, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर ना बैठे, क्योंकि अगर मॉइस्चर बैठेगा तो वो दिक्कत करेगा। इसी तरह से जितनी भी हमारी बेल्टें हैं, जितनी भी हमारे पट्टे हैं, उनका जो टेंशन है, उनका जो खिंचाव है वो बराबर होना चाहिए। बैटरी को आप अलग कर लें, अगर आप लंबे समय तक उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहे तो बैटरी को आप अलग करके रख लें, और बैटरी को एक जगह पे रख दें या उसी के अंदर रखें, बट आप उसको डिसकनेक्ट कर दें, और बीच बीच में चार्ज भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज ना हो। जगह अगर हम टायरों को देखते हैं तो टायरों को अगर आप उठा सकें और टायर फ्री रख सकें, अगर वो संभव हो तो करें, अगर वो संभव ना हो तो आप प्रॉपर टायर के अंदर प्रेशर डाल के रखें जिससे कि आपके टायर्स की जो कंडीशन है वो अच्छी रहेगी। इसी तरह से जितने भी आपके कन्वेयर हैं या थ्रेशिंग यूनिट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आप सफाई करके उसको रखें।
1: डॉक्टर साहब, कुछ कृषि संयंत्र

0: ऐसे होते हैं जिनमें जंग लग जाती है, तो उनकी भी एक देखरेख अलग तरीके से की जाती है, कुछ सावधानियां बरती जाती हैं, वो क्या क्या होती है?
1: हाँ, अगर आप इतना कर सकते हैं, अगर आपको जंग रोधक पेंट अगर आप इस्तेमाल करें, जो रेड ऑक्साइड हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक बार रेड ऑक्साइड लगा देंगे और उसके बाद प्रॉपर पेंट कर लें, अगर आप छोटी मशीन है, मैं बड़ी मशीन के लिए नहीं कह रहा, मान लीजिए थ्रेशर है आपके पास, उसका कवर है, उसके नीचे सिलेंडर का कवर है, अगर आप उसके ऊपर रेड ऑक्साइड कर कर और पेंट कर सकते हैं तो उनकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह मैं कहूंगा कि जहां आप नहीं कर सकते और जो वातावरण से ओपन में है कंपोनेंट्स, उनके ऊपर आप ग्रीस या तेल थोड़ा लगा दें, उससे उनका भी बचाव हो जाए।
0: और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, स्प्रेयर जिससे हम छिड़काव करते हैं, उसकी साफ सफाई और देखरेख भी महत्वपूर्ण होती है किसान भाइयों के लिए, तो उसको कैसे रखना है
1: हाँ,
0: ध्यान
1: देखिए
0: में?
1: स्प्रेयर भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, क्योंकि केमिकल का छिड़काव करते हैं और उसके अंदर नोजल है, पाइप्स हैं, पंप है, तो उसका भी रख रखाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो जैसे हमने एक बार स्प्रेयर को इस्तेमाल कर लिया है तो हमें यह है कि उसके अंदर पानी डाल के एक बार उसको चला लें, जैसे उसका सारा केमिकल जितना भी उसके अंदर है उसको अच्छी तरह से धो लें, वो निकल जाएगा, और उसको उसके बाद धूप में रख दें जैसे कि वो सूख जाएगा। और उसके बाद मैं ये कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के कंपोनेंट भी हैं और मेटल के कंपोनेंट भी हैं,
0: जी
1: तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसको धूप से दूर रखें और आप किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ छत हो और जिससे कि उसके कंपोनेंट जो हैं, पाइपें हैं या नोजल वगैरह है, वो खराब ना हो और कहीं पे रस्टिंग ना हो, जंग जैसे वो ना लगे। तो हमें उसकी साफ सफाई करके रखनी है, मतलब उसको एक बार हम पानी से चला लें अच्छी तरह से, फिर सुखा लें और फिर उसके बाद हम उसको रखें।
0: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि कृषि यंत्रों की देखभाल में सरकार या कृषि विभाग की भी कोई भूमिका होती है?
1: रख रखाव में तो इतनी भूमिका है, इस्तेमाल की ट्रेनिंग देते हैं काफी यूनिवर्सिटीज भी, इंस्टीट्यूट भी, सरकारें भी, तो उसके अंदर ये भी बताते हैं कि इनका रख रखाव कैसे करना है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, लेकिन हमने उसके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है, तो जितना हम अच्छी तरह से रख रखाव करेंगे वो उतने ही लंबे समय तक आपको अच्छी सर्विस देंगे, तो इसलिए हमें उसका रख रखाव करना है।
0: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कटाई के उपरांत या और भी बहुत सारे ऐसे कृषि यंत्र होते हैं जिनकी देखभाल बहुत जरूरी है, क्या उन संदेश देना चाहेंगे?
1: हाँ, मैं यही कहूँगा कि आपने देखिए इतनी मेहनत करने के बाद आपने अभी कटाई हुई और इतने सारे आपने यंत्रों का इस्तेमाल किया, अब आपको देखना है कि ये यंत्र आपको लंबे समय तक आपका साथ दें, क्योंकि आपने इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया हो, तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है। हमें साफ सफाई अच्छी तरह से करनी है, उनको रखना अच्छी तरह से है, मतलब मैं यही दोबारा बोलूंगा, क्योंकि आप उनको छत के नीचे रखें या ढक के रखें, तरपाल के नीचे रखें, जो भी उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका भी ध्यान रखना है। मैं और ये भी बोलूंगा कि कई बार क्या होता है कि चूहे घुस जाते हैं, कि मान लीजिए अगर वहाँ दाने पड़े हुए हैं तो कई बार वो तारों को भी काट देते हैं, बड़ी मशीनों का या कहीं भी जहाँ पे भी बिजली की तारें उसके साथ गई हुई हैं, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो उनको आप ध्यान रखिए कि अगर आप साफ रखेंगे तो ना केवल आप इन मशीनों को बचाएंगे बल्कि इन जो और दूसरे जीव जंतु हैं उनसे भी बचाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का अगर किसान भाई ख्याल रखेंगे तो आप लंबे समय तक अच्छी तरह उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते।
0: जी, तो किसान भाई और बहनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि कटाई के बाद कृषि यंत्रों की सही देखभाल न केवल उनकी उम्र बढ़ाती है बल्कि खेती की लागत को भी कम कर देती है। साफ सफाई, समय पर ग्रीसिंग, नियमित जांच और सुरक्षित रख रखाव, ये छोटी छोटी बातें आपके कृषि यंत्रों को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे कृषि यंत्रों का रख रखाव कैसे किया जाए और कंबाइन और थ्रेसर की ऑफ सीजन सर्विस। और इस बातचीत में जो विशेषज्ञ थे वो थे डॉक्टर आदर्श कुमार, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रिकी संभाग और पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही थी प्रतिमा शर्मा। तो भाई, ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को हमने दी और इसका निश्चित तौर पर जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो लाभ ज़रूर उठाएंगे।
3: बिल्कुल, और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं इंद्रपाल शर्मा की आवाज़ में ये रागनी।

0: यूं बोला रईस, भारत का सच्चा सेवक, धरती पुत्र किसान से। बहुत ही सुंदर रागनी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुनी इंद्रपाल शर्मा की आवाज़ में। और निश्चित रूप से देखिए, भारत की तरक्की का रास्ता खेत खलियानों से ही होकर जाता है।
1: बिल्कुल। और देखिए, इसी बात को लेकर भाई एक योजना हमारे सभी जो बहन भाइयों को, जो कि है डिजिटल कृषि मिशन, यानी कि एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की एक अतुल भाई प्रमुख योजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना और किसानों के जीवन को सशक्त बनाना है। यह मिशन 2,817 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत किया गया है।
0: बिल्कुल। और देश के हर किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जा रही है। पायल बहन, इसमें जो किसान की भूमि है, फसल है, मिट्टी है और सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है, एक ही जगह सुरक्षित रहेगी।
1: बिल्कुल। और देखिए, पारदर्शिता और दक्षता तो इसमें है ही, यानी कि सरकारी योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि सब्सिडी, फसल बीमा का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधा किसानों तक पहुंचाया जाता है। और बेहतर निर्णय प्रक्रिया है, सटीक मौसम पूर्वानुमान जो है, मिट्टी की सेहत और बाजार की कीमतों की जानकारी से किसानों को सही फसल चुनने में मदद मिलेगी।
0: बिल्कुल। और देखिए, यही है कि जो योजना और कृषि सेवाओं से जुड़ी आप अधिक जानकारी के लिए और जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: अधिक से अधिक इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो वेबसाइट है, आप उसे सर्च कर सकते हैं गूगल पर और वहां पर आप जाकर पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहते हैं पायल बहन, हम तो अपने सभी किसान बहन भाइयों से कि देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और भाई गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने खेत पर जाएं तो भाई अपने साथ पानी और सर पर चादर लेकर के जरूर जाएं।
1: बिल्कुल, गर्मियां ज़्यादा होती जा रही हैं, ऐसे
0: बिल्कुल
1: में अपने स्वास्थ्य का ख्याल भरपूर रखें।
0: बिल्कुल। और भाई अपने साथ अपने पशुओं का भी रखें, पशुओं को भाई ताज़ा पानी
1: पानी
0: पिलाएं
1: पिलाएं।
0: और शुद्ध चारा खिलाएं।
1: बिल्कुल। और छाया में हो सके तो ज़्यादातर बांधें, उन्हें धूप में ना रहने दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धूप में ना रखें और छायादार वृक्ष के नीचे बांधें। और देखिए, अब घड़ी की सुई भी पायल बहन इशारा कर रही है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने की। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 हो चुके हैं, आप सुनिए कार्यक्रम गज़ल। गज़ल के इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। यूं बेरुखी से जब तुमने हमें देखा, सांसें रुक गई, दिन ठहर गया, समय गुजरता गया, लेकिन वो प्यार अब भी बाकी है। तमन्ना है कि एक बार फिर देखूं और फिर

दर्द में डूबे जिंदगी को सुकून मिल जाए, घर तेरा दीदार हो जाए। मालूम है हमें कि इस दर्द की वजह तुम हो, लेकिन दिल मानता कहाँ है।

अभी आप सुन रहे थे गज़ल का कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस चरण के अंतर्गत दिल्ली में 7 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16.99 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में जोरबाग से मीठापुर तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर जसोला, अपोलो, लाजपत नगर, NSIC ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा और आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 35 यात्रियों की क्षमता वाली 2 हाइड्रोजन फ्यूल बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें GPS ट्रैकिंग और CCTV की सुविधाएं होंगी। ये बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेंगी। DMRC के अनुसार ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब यात्री रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच सुगम और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर, लिफ्ट, मूविंग वॉक, CCTV और पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। कल से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के ईंधन, आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री की 7 अपीलों से प्रेरित है।
2: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
2: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और

0: ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर लिया गया है। श्री सूद ने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के साथ सीधा संवाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के सभी 28 शिक्षा जोन में कुल 11 ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। अगला ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। श्री चहल ने बताया कि कल से एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस सेवा शुरू होगी, जिसे सोमवार से 14 अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट दी जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए लोगों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और यातायात कम करने के लिए नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में श्री वाही आज मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज डॉक्टर बीआर आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संधु ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो एक शैक्षणिक यात्रा के समापन और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जन सरोकारों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और तकनीक के माध्यम से विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। श्रीमती गुप्ता ने छात्रों से करुणामय बने रहने का अनुरोध किया।
2: 14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ संपन्न हो, लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाला। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है। इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कंपैशनेट भी रहिए।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार किसानों से दूध खरीद लागत में करीब 6% वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। पिछले कुछ महीनों में खरीद लागत में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश

0: और दस्तावेजों के इन दवाओं की अवैध सप्लाई और वितरण कर रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं संपत्ति ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी बरामद की है। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रानी बाग इलाके में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रानी बाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। बाहरी जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने देश भर में पिछले 24 घंटों में 14 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए 5ों आरोपियों को आज दिल्ली के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इस अभियान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5 भी राजधानी के कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 8:15। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत, जिसे लेकर आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ, चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसे स्वरों से सजाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने, और गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म साथी से, और इस गीत को लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने, और ये जो कलाकार हैं गायक कलाकार इसमें हैं अनुराधा पौंडवाल। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं एक और गीत, फिल्म आराधना से। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा पूरा तुम्हें करना होगा, करोगी ना?
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है दिल से। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी। गीत रचना है गुलजार की और संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है जहर, गायक कलाकार हैं उदित नारायण और संगीत दिया है रूप कुमार राठौड़ ने।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आगे आइए सुनते हैं एक और फील, एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म यमला पगला दीवाना से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और निंद कौर, गीत रचना है आनंद बख्शी की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म यमला पगला दीवाना से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म यहूदी से। गीत के बोल हैं, ये मेरा दीवानापन है। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: यहूदी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म ज्वार भाटा से। ये 1973 प्रदर्शित फिल्म है और इसके जो गीत रचना है वो बहार फिल्म्स की, और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।
1: समझो और समझाओ थोड़ी में।

गीतमाल का फिल्म संगीत में आप बने हुए हैं चेतन के साथ और सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यानी कि कार्यक्रम की जो अंतिम प्रस्तुति है वो हम सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है दो रास्ते और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, सुंदर, अपने समय का बहुत ही मशहूर गीत दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ गीतमालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था

0: निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का

0: गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological

0: ताइवान के तई अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 से मुतालिक पेपर लीक के मामले में मुबैना खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में दो मजीद मुशतबा अफराद को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 14 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। एजेंसी ने बताया कि दो मुशतबा अफराद की पहचान अहलिया नगर के धनंजय लोखंडे और पुणे की मनीषा वाघमारे के तौर पर हुई है। CBI ने बताया कि इस सिलसिले में कल 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए तमाम 5 मुलजमीन को दिल्ली में आज एक अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पूछताछ की गरज से 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम का आगाज़ करेगी। ये मुहिम वज़ीर आज़म की अपील के मुताबिक शुरू की जा रही है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि मुहिम के तहत लाजमी खिदमात के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्राम होम करेंगे।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हमने दिल्ली सरकार का अपना ऑफिशियल टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेज काम करेंगे।
0: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के ज़ुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमूई खेल में अपनी काबिले ज़िक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। एशिया के चंद बेहतरीन वेटलिफ्टरों से मुकाबला आरई करते हुए अजीत ने गैर मामूली मजबूती का मुजाहरा किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का 3रा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर VD सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाक़ात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हमनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस खोले जाने पर जोर दिया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: Countrywide. नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
3: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल 2nd वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाला है केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है और इसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज है 2 क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है और ये बेस ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है, इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो और इसका जो स्ट्रैटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
2: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-in-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
3: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ERG ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगे।
2: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
3: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है, हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
2: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
3: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICAR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है, उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप तो नुकसान भी कम होगा इसका।
2: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
3: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाया गया है, इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया।

0: 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है, अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए। और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ERC डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू हम भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है, और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है। वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीश, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं। वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए, और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं। और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है, जो किसान, उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों

0: पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे।
1: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए, और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
0: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
1: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे। फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
0: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: change. This will differ for every nutrient of interest.
1: Dr. Feroz, just coming back to ICAR, the Indian Council of Agricultural Research, who are actually producing these biofortified crops. So how is it that you are ensuring that diet and lifestyle diseases are reduced? What's the role of sugar? Are you looking to reduce its impact? How are you going about doing it at your level?
2: Yeah, basically, as Dr. Priyanka has mentioned, now we have low GI rice. So very recently, now we have developed low GI maize as well. So low GI essentially means it takes more time for digestion in the human gut. So the availability of the sugar to the blood will be slowly done rather than rapidly enhancing the level of sugars. So we have several breeding methods to develop high yielding, low GI rice or low GI maize, or for that matter, low GI other crops as well. So we have definitely some genes which are known for that. And so we'll try to transfer those genes from the donor to our required varieties. And therefore, we will reduce, or rather, I would say, will increase the resistant starch part of it so that the GI or the glycemic index is reduced as compared to the higher ones, which is available in current varieties.
1: Well, taking a cue from what the Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said, food being the medicine with the right approach. It's time for us to thank both our experts, Dr. Priyanka Bansal with ICMR and Dr. Feroz Hussain with IARI, for giving us such an in-depth understanding of the Sehat Mission, where strengthening of public health is through prevention and awareness, launched in this joint initiative by ICMR and ICAR. Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
5: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबुधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज

बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुआवजे की स्थिति की जानकारी हर 3 घंटे में देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समर्ग दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल, कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हो चुके हैं। गुलदस्ता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ज्योति जिब्बू की गज़लें।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन, कलाकार हैं नारायण झा, आप सुनेंगे राग जोग। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आपने सुना गायन कलाकार नारायण झा। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप

0: ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA 5 years ahead of schedule. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana,

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। और जब बात आती है आपकी फरमाइश का, तो आपके नाम लेना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। हमारे पास सबसे पहले नाम आया हमारे पास कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सेठी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराय। धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमारे पास आया है अगला मैसेज, गगनदीप थांडी, तृप्ता थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी। इन्होंने हमें गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से ये मैसेज किया है और आपके साथ फिल्म संगीत की फरमाइश भी है हमारे पास। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं पहला गाना आपकी फरमाइश से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपके साथ आज मैं हूं पूजा भारती। और हमारे पास अगला मैसेज आया है एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्य खड़से और वैष्णवी खड़से, और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचा दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है नवी हसन जी का। नवी हसन किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कीजिए लिख रहे हैं, मारहा दरवाज़ा एटा से। नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशब अब्बासी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। अगला मैसेज हम ले रहे हैं हमारे श्रोता का, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जिनका मैसेज ओपन होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये हमेशा ही होता है ऐसे। फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ मजनू कटीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, धन्यवाद आपका मैसेज हम तक तो पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, पसंद भी लिख रहे हैं बीच शहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे और अंजलि करवा, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुँचाई है। कुछ ऐसे गीत भी है जो हमारे पास नहीं है, जो हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की है आपके फिल्म संगीत को ढूंढने की। कुछ ऐसे गीत हैं जो यहाँ पे प्ले नहीं हो सकते, वैसे भी गीत यहाँ पे मुझे मिले हैं, लेकिन जो अच्छे गीत हैं जो आप भी सुन सकते हैं और यहाँ सभी लोग सुन सकते हैं, ऐसे गीत को हमने शामिल किया है। अगला मैसेज लेना चाहेंगे छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सामले पाटिल, राजीव राजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक मैसेज पहुँचाने के लिए। अगला गीत आप लोगों की फरमाइश का ये रहा।

फिल्म संगीत आपकी फरमाइश, पूजा भारती मैं हूँ आपके साथ, और अगला मैसेज लेना चाहेंगे सतीश अनेजा जी का, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ। सतीश अनेजा जी लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से, इनके साथ है विमला अनेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, राजकुमार डूडी जी का आया है हमारे पास मैसेज।

गांव फरान से हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, धन्यवाद आपका मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ स्वर्ण सिंह गिल जी का आया है, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूल सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, इन्होंने गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से ये मैसेज हम तक तो पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे पास आया है अगला मैसेज, फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर, मलकापुर से आया है नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर, और आपके इस मैसेज और इस फिल्म के संगीत से हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने जो गीत हम तक तो पहुंचाई है बहुत ही खूबसूरत संगीत है। अगला मैसेज लेना चाहेंगे पहाड़गंज मुल्तानी धाड़ा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक मैसेज कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है हमारे श्रोता का दोस्त मोहम्मद कोहत पाकिस्तान से लिख रहे हैं, प्लीज़ फिल्म आरजू के ये गीत मैं आ रहा हूँ वापस मेरे इंतज़ार करना सुनवा दें। हम ज़रूर ढूंढेंगे लेकिन ये कौन सा गाना है आरजू में शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसे ढूंढने की, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल अगला मैसेज लेना चाहेंगे, हमारे पास अगला मैसेज आया है मेहर अरोरा जी का, मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा जी लिख रहे हैं पदमपुर ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से, और फिल्म संगीत की फरमाइश भी हम तक तो पहुंचाई है आपने, बहुत खूबसूरत गीत आपने हम तक तो पहुंचाई है, फिलहाल आप लोगों की ही पसंद से सुनते हैं ये गीत।

संगीता, आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। हमारे पास अगला मैसेज आया है शास्त्री नगर बीच शहर से, आशा सपकाल, किसान सपकाल, सोनिया सपकाल, साइरा सपकाल और विशाल सपकाल का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक तो मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम वसीम, समीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुआत बिहार से, शेख जफर हसन और नरगिस जफर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक तो मैसेज पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है, नमस्कार पूजा बहन जी, प्रोग्राम को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इस प्रोग्राम में आपने फिल्म संगीत की फरमाइश हम तक तो पहुँचाई है और लिखने वाला हमारे श्रोता चंडीगढ़ सिटी सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और आपका सॉन्ग हमारे पास है, हम इसे ज़रूर प्ले करेंगे। शायद हमने प्ले कर दिया, अगर आपने सुना हो तो ध्यान से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता लिख रहे हैं, शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है रमेश कुमार जी का, पटेल नगर मलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया और गुड्डू लिख रहे हैं, धन्यवाद। साथ ही साथ अगला मैसेज आया है हमारे पास नारायण खर्चे जी का, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, आराध्य खर्चे, वैष्णवी खर्चे, और आपका धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे पास अगला मैसेज आया है आर कुमार जी का, वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा लिख रहे हैं, धन्यवाद। साथ ही साथ मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का, अनिल वर्मा जी का, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचाई है। फिलहाल सुनते हैं आप लोगों की ही पसंद से ये गीत।

फिल्म संगीत आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं और अगला मैसेज हम लेना चाहेंगे गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से, राज पैलेस मनोहर भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे मोहम्मद सईद अब्बासी जी का। मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अब्बासी अबान अब्बासी लिख रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। राम राम जी प्लीज़ एनी सॉन्ग, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। राजेश वर्मा जी का मैसेज आया है जो हम मैसेज हमने ले लिया है और अगला मैसेज लेना चाहेंगे हमारे श्रोता का। फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम करवासरा, सचिन करवासरा, सतीश करवासरा और योगेश करवासरा, साथ ही साथ युद्धव करवासरा भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज हम तक करने के लिए।

मैसेज हमारे पास आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी लिख रहे हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में से किसी भी सदाबहार गीत को सुनवा दिए। लिस्ट बहुत लंबी है और मैसेज का समय भी बहुत लेट का है, यानी कि आपसे पहले इतने लोगों ने मैसेज किया है कि आप तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक कोशिश रहेगी कि आपके पसंद के गीत को हम शामिल कर सकें। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नमित आहूजा जी मैसेज कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। मोहम्मद कुमार लिख रहे हैं, इंद्रप्रस्थ आकाशवाणी पर आपका प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज हो, आपको भी नमस्कार। गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक अली, मुजफ्फर अली लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हाजी मजहर जी का आया है, अस्तुपुरा ज़िला मऊ से, मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ छोटेलाल अंसारी जी का मैसेज आया है, तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लिख रहे हैं इन्होंने पंजू सराय संभल से, छोटेलाल अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ पीएस नोहांकर जी का मैसेज हम तक पहुंचा है, नोहांग नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से लिख रहे हैं पीएस नोहांकर, निर्मला नोहांकर, विशाल नोहांकर, मलकापुर से लिख रहे हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोरहेकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला मैसेज लेने से पहले आइए सुनते हैं आपकी पसंद से ये गीत।

छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अरसद फूल वाले, कापस हिड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया अमान नसरीन, आसमा परी, राबिया मंचा, आशु अहमद फूल वाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से, शमीम अहमद राय, राइन अखलाक अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली। धन्यवाद आपका, फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने हम तक तो पहुंचाई है, आपका शुक्रिया। अगला मैसेज लेना चाहेंगे टीडी मल्होत्रा जी का, जिनके मैसेज को हमने ले लिया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका शु से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ राम जिंगल जी का आया है, गाँव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से, प्रताप जिनागर, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, संगीत की फरमाइश भी है और बहुत लेट फरमाइश जब आती है तो बड़ा दुख होता है कि खूबसूरत संगीत नहीं, हमने उसे प्ले नहीं किया। आदर्श नगर मलाउत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और मैंडी शर्मा लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ प्रकाश वर्मा जी का मैसेज आया है, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका। अगला मैसेज लेना चाहेंगे फिल्म संगीत की फरमाइश के साथ, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव लिख रहे हैं, फिल्म संगीत की फरमाइश भी आपने पहुँचाई है, धन्यवाद आपका। आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन, परिवार के सभी सदस्य लिख रहे हैं, कहाँ से, पटियाला रोड, गंज डोंडवारा से, धन्यवाद आपका। साथ ही साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है हमारे श्रोता का, जिनका नाम ले लेना चाहेंगे, इनका नाम ओपन नहीं हो रहा हमारे पास फिलहाल, आइए सुनते हैं आप लोगों की पसंद से ये गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। समाचारों के बाद 12:10 पर इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। जय हिंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है, इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 12:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। श्रोताओं, सुरों का सफरनामा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं एक बेहतरीन कलाकार, या यूं कहें उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अपने कलाकारी से हमारे जीवन को खुशनुमा बनाया। जी हाँ, और इसी के बदौलत आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने भजनों से रातों रात स्टार बन गई, एक ऐसी गायिका बन गई जिनको लोग भजन की गायिका कहने लग गए। साथ ही साथ एक बेहतरीन चित्रकार भी थी वो, जिन्होंने 60 साल से भी अधिक समय तक संगीत सेवा से हम लोगों को खुश किया, हमारे दिल को खुश किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गायिका उषा मंगेशकर के बारे में।

एक ऐसे घर में जन्मी जहाँ संगीत, विरासत और अनुशासन दोनों ही था। उषा मंगेशकर ने न केवल संगीत रचनाओं को सुना, बल्कि उनके बीच के मौन को भी सुनती रही। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो अपने समय के एक उत्कृष्ट शास्त्रीय संगीत गायक थे और अभिनेता भी थे, जब उनका देहांत हुआ तब वे ये नहीं जान पाए कि क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी बच्ची थी। उनका जीवन गुरुओं

के साथ, भाई बहनों के साथ और अपने स्वयं की झिझक को ध्यान में रखते हुए जल्दीबाजी के बजाय धैर्य से प्रतिक्रिया देने के लिए आकारित हुआ था, क्योंकि उनके जीवन में यही था। उन्हें सबका सुनना था और अपने आप को संयम में रखना था। समय, वक्त कहते हैं कि इंसान को कब किस मोड़ पर ले आए पता नहीं, और ऐसा ही कुछ हुआ था उषा मंगेशकर के साथ।

उषा मंगेशकर ने इस गीत में भी अपनी आवाज़ दी और उस गीत को बहुत ही सराहा गया था। उषा मंगेशकर ने बॉलीवुड फिल्म में सुबह का तारा में मेरी बड़ी भाभी आई से डेब्यू किया था। उषा मंगेशकर ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर 1935 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई लो बजट फिल्मों में गाना गाया था, लेकिन उनके काम की पहचान 1975 में आई उनकी फिल्म जय संतोषी माँ से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने मैं तो आरती उतारूं गाना गाया। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस गाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी या यूं कहें कि स्ट्रगल की कहानी। जानेंगे कौन सी कहानी है इस खूबसूरत से गीत के बाद।

उषा मंगेशकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उषा मंगेशकर, जब कहा जाता है ना कि इंसान की किस्मत कुछ अलग लिखी होती है, उनमें से एक थी उषा मंगेशकर। जब उनकी फिल्म रिलीज़ हुई और इस गीत को बहुत सराहाया गया, तब उनके पास, कहते हैं, ये फिल्म कैसे आई, एक कहानी है इसके पीछे। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो इसने इतिहास तो रच दिया था, लेकिन कम बजट की फिल्म थी ये। कम बजट के होने के कारण इनके निर्माता कवि प्रदीप द्वारा रचित प्रसिद्ध भजनों को गाने के लिए तत्कालीन गायकों की फीस नहीं हो पा रही थी। वो देने से

चूक रहे थे, इसलिए उनकी जगह उन्होंने उषा मंगेशकर को लिया, जहाँ पर उन्होंने खुद को साबित किया, यानी कि पैसे ना मिलने पर भी अपनी आवाज़, अपनी पहचान को वो अलग रखना चाहती थी और अपनी आवाज़ को एक नई पहचान देने के लिए इससे बढ़िया मौका उनके पास कुछ नहीं था। तो इस लो बजट में इन्होंने काम किया और फिर जब ये हिट हो गई तब उनने बहुत नाम कमाया, कई अवार्ड्स भी हासिल किए। उनकी बहनें लता और आशा भोसले ने युगल गीतों में बिल्कुल अलग हैं, जिन्होंने स्वर्ण युग के प्रमुख पुरुष पार्श्व गायकों के साथ कई यादगार गीत गाए। उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद अमन अली खान से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनकी आवाज़ कुछ कुछ लता जैसी थी, लता से मिलती जुलती शक्ल भी थी। रानी रूपमती में फिल्म का गीत आँखों में सुरमा डाल, जब इसे आप सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसमें इन्होंने अपनी बहन के साथ ये गीत गाया।

खूबसूरत गीत की आवाज़। जी हाँ, खूबसूरत गीत, आवाज़ भी खूबसूरत, क्योंकि आपने ये गौर किया होगा, ये आवाज़ बिल्कुल मिलती जुलती लता मंगेशकर की, बहने एक पर एक आवाज़, खूबसूरत आवाज़ और इतनी मिलती जुलती आवाज़। बहन होने का फ़ायदा हुआ तो कई जगह इन्हें नुकसान भी हुआ था, क्योंकि कई जगह

निगाहों पर जब पहले आए हुए गायिका जब बहुत ऊंचाई को छू लेती हैं, तब उन्हें हर कोई पूछता है, और यही हुआ इनके साथ। उनके कई गानों में मशहूर युगल गीत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उनके गायन में युगल गीत शामिल हैं, जिसमें से अधिकतर उनकी बहनों के साथ ही इन्होंने गाए हैं। उसमें से अधिकांश नृत्य प्रस्तुतियां हैं। जी हाँ, ऐसे गीत जिसमें नृत्य करना आसान था, उनकी सबसे मशहूर हिंदी फिल्म युगल गीत फिल्म आज़ाद का था, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गीत गाया था। वही गीत जिसे आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, अपलम चपलम चपलाई रे। आइए सुनते हैं इस गीत को।

उनकी एक मशहूर युगल गीत वो अलबेले पंछी हैं, जिन्होंने आशा के साथ देवदास फिल्म में गाया। तुमको पिया दिल दिया लता मंगेशकर के साथ एक और युगल गीत था, जो फिल्म की सबसे चर्चित गीत थी, आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इस गीत में दोनों बहनों ने बराबर भूमिका निभाई। फिर आया समय 1966 का, जब मन्ना डे के साथ फिल्म प्यार किए जा का गाना ओ मेरी मैना, जो कि हास्य गीत है, उसमें उन्होंने तीसरी महिला मुख्य कलाकार के लिए गाया था। उसमें दो और महिला मुख्य कलाकार थी, जिसमें लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज़ दी थी। इस गाने में उनकी आवाज़ की गुणवत्ता, उसमें बदलाव साफ देखा जा सकता है। इस तरह के जोशीले गाने में उनकी और लता की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।

कहना, हर मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अयो अयो अयो अयो हो ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, हर मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना।

मन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर दूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

और उल्लेखनीय युगल गीत रफू चक्कर, जो कि 1975 में आई थी, उस फिल्म का छुक छुक चक चक था, जिसे ऋषि कपूर और पेंटल ने महिलाओं के वेश में फिल्माया था। यह अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं है कि उषा की आवाज़ किसकी थी। एक बार फिर उन्होंने अपनी नई आवाज़ का प्रदर्शन किया था। आवाज़ को किस तरीके से बदलना है, किस तरीके से उसे कहाँ पर फिट करना है, ये एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन गायक, गायिका ही समझ सकते हैं, जो उषा मंगेशकर के अंदर भरपूर था।

लता मंगेशकर को बहुत कम ही पूछा जाता था, क्योंकि उनसे आगे काम करने के लिए काफ़ी पहले आ चुके थे कई लोग, जिनमें उनकी दोनों बहनें भी शामिल थीं। तो जब भी गीत की बात आती थी तो उषा मंगेशकर को हमेशा एक दूसरे रोल के लिए ही पूछा जाता था, उसके लिए वो गीत गाती थी। हालांकि ये क्या कहा जा सकता है कि जब लीड रोल के लिए उनकी वॉइस को नहीं लिया जाता, तब उन्होंने सेकेंड रोल के लिए अपने आप को हर जगह साबित किया और हर जगह वो जाती रहीं, और फिर उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में गाने करने स्वीकार कर दिए थे। उन्हीं फिल्मों में उनकी भूमिका सीमित हो गई थी। कभी कभार उन्हें ए ग्रेड फिल्मों में सहायक गाने गाने का मौका मिलता था। एक और एकल गीत

0: जिसमें उनकी आवाज़ की मासूमियत झलकती है। फिल्म थी पंचायत, 1958 में आई थी ये फिल्म। चाची अकड़ गई, ये गाना भी बच्चों पर फिल्माया गया था। साथ ही साथ उषा मंगेशकर एकल प्रस्तुति भी दी, हालांकि उनके गीत की संख्या उस हद तक नहीं पहुंची थी जिस हद तक इनकी आवाज़ थी। फिर भी जो भी गीत गाए वो सारे के सारे यादगार थे। उदाहरण के लिए लीजिए उनका पहला फिल्म, हिंदी फिल्म की वो गीत सुबह का तारा फिल्म था, 1954 में आई थी ये फिल्म। और उस फिल्म का एक गीत जो बच्चे पे ही फिल्माया गया था, वो गाना था भाभी आई भाभी आई। आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: भाभी आई

मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरे बेचारी, भाभी का दिल था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा।

उनकी आवाज़ केवल भजनों तक ही सीमित नहीं थी। फिल्में नशे मैं हूँ 1958 में आई, इसका गीत ये न थी हमारी किस्मत मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है जिसे उन्होंने बेहद खूबसूरती से गाया। संगीत निर्देशक चितगुप्त ने उन्हें कई वर्षों तक कुछ गाने दिए, मुख्य रूप से बी ग्रेड और पौराणिक फिल्मों के लिए। इसमें से एक मनमोहक गीत है जिम्बो कम्स टू टाउन, 1960 का ठंडी हवाओं काली घटाएं, बनारसी ठग 1962 में आई का लगे नहीं मोरारजिया एक और बेहतरीन एकल गीत है, हालांकि इसे चाहे आप जो कहें, घूंघात 1960 में आई थी, लता लता के साथ इन्होंने क्लासिक गीत गाए। भूतनाथ 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब सुन में भाव की गहराई को समझा जा सकता है, उन्हें दिल लगी।

1966 में जो आई थी, ये आजकल के लड़के में मुख्य भूमिका जो जिस अभिनेत्री यानी माला सिन्हा ने निभाया था, उनके गीत को गाने का अवसर मिला। लेकिन ऐसे अवसर उन्हें बहुत कम या यदाकदा ही कहें तो मिलता था।

तुलनात्मक रूप से उनके मराठी गाने, चाहे फिल्मी हो या गैर फिल्मी, बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने बंगाली, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और नेपाली जैसे अन्य भाषाओं में गीत गाए। देवी संतोषी माँ के आशीर्वाद से ये भजन उनके पीछे की आवाज़ उम्र को मात देकर शाश्वत बनी रही। और उषा मंगेशकर ने अगर बहुत कुछ पाया वो थी उनके आवाज़, उनके खूबसूरत गले की निशानी। जी हाँ, और उषा मंगेशकर का कोई मलाल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शर्तों पर गीत गाए, अपने शर्तों पर उन गीतों को गाया जिसे वो गाना चाहती थी। बस इतना ही आज शुरू के सफरनामा में, बस इतना ही। मुझे पूजा भारती को आज इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यार लाइव न्यूज 24x7 से एक बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आइए श्रोताओं सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनसे हर 3 घंटे में मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस

0: relevant officials to immediately conduct a survey on the spot. In IPL cricket, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala yesterday. Chasing 201 for victory, Mumbai Indians overhauled the target with 6 wickets in hand and one ball to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7। आई श्रोताओं, आपको बता दें अगले आप कौन कौन से लाइव शोज सुन सकते हैं, यानी कि फिल्म गीत से भरा गीत का कार्यक्रम 1:10 होने को है। अब वक्त है गीत सुनहरे गोल्डन एरा की फिल्म संगीत, साथ ही साथ 2:10 पर आप सुनेंगे गीत बहार फिल्म म्यूज़िक कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। गीतों के उन लम्हों के साथ साथ उन शब्दों को भी पिरो लिया है जिससे गीत और समय और माहौल सारा कुछ खुशनुमा हो जाए। वो आवाज़, वो सुर, वो शब्द जो गीतों में पिरोया गया, जो पुराने गीतों में मिलते हैं, वो और कहाँ।

सरस्वती चंद्र फिल्म से इस गीत को आपने सुना, बेहद खूबसूरत गीत और यूं कहें तो बेहतरीन गीत। उषा मंगेशकर की आवाज़ में वो जादू था जिसे वो हर जगह बिखेर सकती थी, लेकिन उन्होंने गीत ऐसा गाया जो लता मंगेशकर ने उसके बाद उसे फिर से गाया। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

जब मोहब्बत होती है तब जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी सबसे अहमियत रखती है। और ये लाइनें हम अगर बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कोई उसे खूबसूरत तरीके से लिख दे और कोई उससे भी खूबसूरत तरीके से गा दे तो फिर ये लाइन यूं बन गई।

और फिर खुश रहने की बात जब आती है, और जब अपने दिल की बात हम कहते हैं, कहीं कहीं तो कह देते हैं, और कहीं कहीं दिल की बात बोलने में हम शर्मा जाते हैं। ये कहीं कहीं ही होता है, सब जगह नहीं। जी हाँ, कई ऐसे गीत बने हैं जिसमें अपनी दिल की बात खुलेआम कहा गया है, और कहीं कहीं दिल की बात बोलने में जो शर्म है, जो हया है, वो शब्दों के इस तरीके से पिरोया गया है शब्दों में, बेहतरीन लगने लगा।

मोहब्बत में तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, और जब मोहब्बत को मोहब्बत ही कह दे कि तुम्हारी मोहब्बत क्या क्या मिसाल दो, तो ऐसे गीत को क्या कह सकते हैं जहाँ हर शब्द में मोहब्बत ही है।

फिर क्या है जब इतना प्यार और मोहब्बत में और ना मिले, तो फिर दिल चाहता है कि निगाहें मिला ही लो।

ये कहा जा सकता है कि आशा भोसले का बेहतरीन से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस गीत में था। ये गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था। कहते हैं कि जब यादें अंगड़ाई लेती है तब कुछ भी कर लो कहीं मन नहीं लगता, और याद आने से दूर वाले भी परेशान होते हैं जिनका दिल से दिल की तार जिनकी जुड़ी होती है। यादों का एक सिलसिला इस गीत के साथ शुरू करते हैं।

या दिल ने फिर याद किया। तो फिर जब दिल याद करता है तो ये जिया शांत कहाँ रहता है? जी हाँ, दिल फिर झूमने लग जाता है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

और जब प्यार को ये समा मिल जाए जहाँ सिर्फ प्यार हो, तो फिर मोहब्बत कैसे नहीं होगी। गीतों में मोहब्बत के हर एक बोल में उसकी झलक मिलना कोई आम बात नहीं है, वो कोई खास ही है जो मोहब्बत का दीवाना और मोहब्बत में ही डूब जाना जानता है।

0: मोहब्बत के इस राह में चलते चलते हम लोग भी उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर मोहब्बत की इन राहों को रोकना ही पड़ेगा। जी हाँ, वक्त हो चला है कार्यक्रम को ख़त्म करने का। मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। आपके लिए आखिरी रंगवा, नमस्कार।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।
2: एक बात बताइए।
3: क्या
2: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
3: सपनों में देखा होगा।
2: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूँ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। वहीं IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, न्यूज रेड बाय RS रघु।

0: और इसी गीत के साथ आज का ये गीत बहार फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the global south. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is

बहुत ही खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह के स्वर में। और ये जो गुलूकार थे यानी कि जो रचना थी ये है सुरेंद्र मलिक गुमनाम की, और संगीत दिया था जगजीत सिंह ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गज़ल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के स्वर में।

एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गज़ल गीत। और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति फिल्म नाम से, कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: जगजीत सिंह की इसी गजल के साथ में ये आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

0: 和我的爹，嗡那嘛西哇呀。
1: इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

0: और इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं अमृता वर्षिणी अम्मू का गायन।

0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमरूदा वर्षिणी अम्मू की स्वर प्रस्तुति। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026, सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओ, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा अश्वथासन और तितली क्रिया। 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, आप सुनेंगे मधुप मुद्गल का गायन, राग होगा रामकली। सुबह 7:10 पर संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्षितिज माथुर के भजन। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे।

8:45 पर सुबह 86 साल संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित हरीश तिवारी के का गायन। राग होगा असावरी तोड़ी। 9:15 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत आप सुनेंगे एक वार्ता जिसका विषय होगा महात्मा गांधी के महिलाओं की शिक्षा पर विचार। वार्ताकार होंगे रीमा यादव। 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक। और 10:10 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद आप सुन सकेंगे।

दिन में 11:10 पर कार्यक्रम होगा सब रस। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में आप सुनेंगे प्रतीक चौधरी का सितार वादन। समय रहेगा 11:30। दिन में 12:10 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन महिला कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर शक्ति कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से।

0: दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, जिसमें आज की कलाकार होंगी माधुरी दीक्षित। उर्दू मजलिस कार्यक्रम का समय रहेगा 3:30। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। 5 बजने को है, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों

0: मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की समय सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में कल रात पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of engagement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegations of BRIC countries who called on Mr. Modi in New Delhi yesterday, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the global south. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: A high-level meeting was held at the residence of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan to review preparations for the upcoming National Eligibility

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10:20। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है अश्वथासन और तितली क्रिया। प्रस्तुत करता है योगाचार्य सुनील गौतम।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी,

बदन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी 1 आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगे।

है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था अश्वथासन और तितली क्रिया। प्रस्तुतकर्ता थे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:20 और 18 सेकंड। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। पहले प्रस्तुत है देशगान, जिसके बोल हैं प्यारी जन्मभूमि।

0: अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। अब
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं मधुप मुद्गल का गायन, राग है रामकली।